कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत कातकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी की गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न है। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ ही देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी, और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मात्र भक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

दोस्तों प्रार्थना करो न केवल इसलिए कि आपको कुछ जरूरत है, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ भी आपके पास है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं।

एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लें।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ।

मैं दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
0: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और ब्राइट कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: यह है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए,
0: कहिए कहिए ना।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी तनुषा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड बातें इधर की उधर की। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी मक्खी से, जिसे हम आम तौर पर देखते ही हाथ हिलाकर भगा देते हैं। हां जी, मैं बात कर रही हूं हनी बी की, एक छोटी सी मधुमक्खी। लेकिन जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जान, इतना छोटा सा दिमाग, और फिर भी पूरी की पूरी कॉलोनी को कैसे पता होता है कि कब क्या करना है, कौन खाना ढूंढेगा, कौन छत्ता संभालेगा, कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, कौन खतरे की खबर देगा, और सबसे बड़ी बात, ये सब डिसाइड कौन करता है? क्या कॉलोनी में कोई एक बड़ी सी मक्खी होती है जो रानी मक्खी होती है, जो सबको इंस्ट्रक्शंस देती है? सुनो भाई, तुम उधर जाओ, तुम फूलों से रस लेकर आओ, तुम गेट पे खड़े रहो, और तुम, हाँ तुम, इतना शहद मत खा जाना कि बाकी सबके लिए कुछ बचे ही ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता दोस्तों। हनी बी कॉलोनी में कोई एक बॉस नहीं होता, कोई सीईओ नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता, कोई चेयरमैन नहीं होता, और कोई डेली मीटिंग्स तो बिल्कुल नहीं होती। सबसे बड़ी बात, कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होता जहां हर सुबह मॉर्निंग मैसेज आए, गुड मॉर्निंग टीम, लेट्स कोऑर्डिनेट। फिर भी ये छोटी छोटी मधुमक्खियां मिलकर एक ऐसी दुनिया चलाती हैं जो हैरान कर देने वाली है। साइंटिस्ट्स जब हनी बी के दिमाग और उनकी कॉलोनीज का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आ रही है। पूरे ग्रुप को चलाने के लिए हमेशा एक सेंट्रल बॉस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हजारों छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा और बहुत समझदार फैसला बना देते हैं। मतलब एक हनीबी को पूरी कॉलोनी का प्लान पता नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि आज पूरी कॉलोनी कितना खाना जमा करेगी, उसे ये भी नहीं पता होता कि अगले हफ्ते मौसम कैसा होगा, उसे सिर्फ अपना छोटा सा काम पता होता है, फूल ढूंढो, रस लेकर आओ, खतरा दिखे तो सिग्नल दो, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ, बस इतना ही। लेकिन जब हजारों हनी बीज एक साथ छोटे छोटे काम करती हैं, तो पूरी कॉलोनी एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह बिहेव करने लगती है, और यही बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक हनी बी अकेली शायद बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन पूरी कॉलोनी एक अलग ही दुनिया है। सोचिए, एक हनी बी को कहीं दूर एक ऐसी जगह मिलती है जहां बहुत सारे फूल खिलते हैं, वो अकेली वहां बैठकर ये नहीं सोचती, मैं तो यहाँ सीईओ हूं, अब पूरी कॉलोनी को यहीं शिफ्ट करवाऊंगी। वो हाइव में वापस आती है, अपने तरीके से दूसरी बीस को बताती है कि खाना कहाँ है। दूसरी बीस उस इंफॉर्मेशन को समझती है, किसी ने ऑर्डर नहीं किया, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने अनाउंसमेंट्स नहीं की, किसी ने वोटिंग नहीं करवाई, बस छोटे छोटे इंडिविजुअल डिसीजंस, और उन सब डिसीजंस से एक बड़ा कलेक्टिव डिसीजन बन गया। अब जरा इसका कनेक्शन हमारी जिंदगी से देखते हैं। हम इंसानों को लगता है कि हर बड़े काम के लिए एक लीडर चाहिए, एक बॉस, एक जीनियस, एक ऐसा आदमी या औरत जो सब कुछ जानता हो, ऑल वाइज हो। लेकिन प्रकृति बार बार हमें कुछ और ही दिखाती है। कभी कभी पूरी समझदारी एक इंसान के पास नहीं होती, वो अलग अलग लोगों के पास थोड़ी थोड़ी होती है। किसी को एक चीज का एक्सपीरियंस है, किसी को दूसरी चीज का, कोई प्रॉब्लम को दूर से देख रहा है, और कोई उस प्रॉब्लम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और जब सबकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती है, तब एक बेहतर फैसला सामने आता है, बिल्कुल बीस की तरह। कितनी अजीब बात है, हम अक्सर कहते हैं कि एक आदमी सबसे इंटेलिजेंट है,
लेकिन बीज हमें सिखाती हैं कि कभी कभी इंटेलिजेंस किसी एक दिमाग में नहीं बल्कि पूरे कलेक्टिव ग्रुप के बीच होती है। और यही वजह है कि बी कॉलोनी को समझने वाले साइंटिस्ट्स के लिए ये दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है। एक और चीज है जो बी से सीखने लायक है, हर काम इम्पोर्टेंट होता है। बी कॉलोनी में कोई एक बी पूरा काम नहीं करती, कोई फूड कलेक्ट करती है, कोई हाइव की सफाई करती है, कोई छोटी बीज का ध्यान रखती है, कोई कॉलोनी को डेंजर से बचाती है। हर बी का अपना रोल है और कॉलोनी तभी चलती है जब ये सब रूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब इसको अपनी जिंदगी में देखिए, हम अक्सर सिर्फ उस इंसान को याद रखते हैं जो स्टेज पर खड़ा होता है, जिसे अवार्ड मिलता है, जिसका नाम न्यूज़पेपर्स में आता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है ये अक्सर कोई देखता ही नहीं। एक टीचर जिसने कभी किसी बच्चे को एक बार कहा था, बेटा तुम कर सकते हो। एक माँ जिसने अपने बच्चे के सपने के लिए अपने सभी सपने छोड़ दिए। एक दोस्त जिसने मुश्किल वक्त में सिर्फ एक फोन कर दिया। एक एम्प्लॉई जो चुपचाप रात तक काम करता रहा। एक ड्राइवर जो सुबह सबसे पहले पहुंच गया। एक हेल्पर जिसका नाम किसी को याद नहीं। ये सब लोग शायद स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे ऐसे ही हजारों कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिल्कुल एक हनी बी की कॉलोनी की तरह। हर बी अपना छोटा सा हिस्सा देती है और मिलकर एक बहुत बड़ा घर बना देती है। और सोचिए, अगर एक बी कहे मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, तो कॉलोनी का क्या होगा। लेकिन हर बी ये नहीं सोचती, वो बस अपना काम करती रहती है। एक छोटा सा काम, फिर दूसरी भी अपना काम करती है, फिर तीसरी, और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ भाई, एक आदमी के करने से क्या होगा। लेकिन हर बड़ा बदलाव कभी ना कभी एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा एफर्ट, एक छोटा सा काइंडनेस का एक्ट, एक छोटी सी किसी की मदद, और फिर उसके बाद एक और और एक और धीरे धीरे कुछ बड़ा बनने लगता है। बीस की दुनिया हमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखाती है, बदलते वक्त के साथ बदलना। फूल हमेशा एक जगह नहीं खिलते, मौसम बदलता है, खतरे बदलते हैं, खाने के सोर्सेस बदलते हैं, तो कॉलोनी को भी अपना तरीका बदलना पड़ता है। अगर बीज सोचने लगे कि हमें तो हमेशा से यही करना था, तो शायद कॉलोनी देर तक सर्वाइव ही ना करे। लेकिन वो एनवायरमेंट को देखती हैं, इन्फॉर्मेशन लेती हैं और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदल देती हैं। और यहाँ हम इंसान कभी कभी बीज से बहुत पीछे रह जाते हैं। हम कहते हैं लेकिन हम तो हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, पर दुनिया बदल गई है, सिचुएशंस बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, तो हम कभी कभी क्यों नहीं बदलते। बदलना हार नहीं होता, बदलना सीखना होता है। बी कॉलोनी का एक और सिंपल लेसन है,

हमें कभी कभी 20 से सीखना चाहिए। हर चीज का पूरा जवाब अभी जरूरी नहीं, बस अगला सही कदम चाहिए। फिर देखिए, फिर सीखिए, फिर जरूरत हो तो थोड़ा डायरेक्शन भी बदलिए। जिंदगी भी एक कॉलोनी की तरह है, छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती हैं। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक डिसीजन, एक गलती, एक माफी, एक छोटा सा मौका। कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन सी छोटी चीज कल कितनी बड़ी बन जाएगी। और शायद इसीलिए बीज हमें सिर्फ टीम वर्क नहीं सिखाती, वो हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाती है कि दुनिया सिर्फ हमारे अराउंड नहीं घूमती, कि हम सब किसी ना किसी बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है, एक किस्सा है। तो अगली बार जब आप कोई हनी भी देखें, तो उसे सिर्फ एक छोटी सी मक्खी समझकर भगा मत दीजिएगा। थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा, थोड़ा रुक कर देखिएगा, शायद वो आपको कुछ सिखाने आई है। शायद वो कह रही हो कि हर चीज का बॉस होना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब खुद के पास होना जरूरी नहीं, बस इंफॉर्मेशन शेयर करो, अपना काम ईमानदारी से करो और दूसरों की काम की इज्जत करो। और जब वक्त बदले तो अपना रास्ता बदलने से मत डरो, क्योंकि एक छोटी सी हनी भी अपने छोटे से दिमाग के साथ हमें एक बहुत बड़ी सी बात समझा रही है। कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम वो नहीं होता जहां एक इंसान सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम वो होता है जहां हर कोई ये देखता है, हर कोई सुनता है और हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है पूरी ईमानदारी से। और दोस्तों, यही है आज की बातें इधर की उधर की, जहां बात शुरू हुई एक छोटी सी हनीबी से और पहुंच जाती है हमारी जिंदगी तक। कभी कभी जवाब बहुत दूर नहीं होता, कभी कभी वो आपके आसपास ही उड़ रहा होता है, बस उसे देखने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और अजीब, इंटरेस्टिंग और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, क्यूरियस रहिए, और हाँ, अगर कोई हनी भी आपके आसपास गुनगुना रही हो तो उसे थोड़ा स्पेस जरूर दीजिए। क्या पता वो अपनी कॉलोनी की कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रही हो, और सबसे अच्छी बात, उस मीटिंग में शायद कोई भी लेट नहीं होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: दोस्तों कहते हैं ना कि हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है। ए ऊपर वाले, अब हिचकियों में कुछ तो फर्क करो। अब कैसे पता करूं कौन सी वाली याद कर रही है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अजीब, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा दिमाग को गुदगुदाने वाले एपिसोड में। बातें इधर की उधर की, और आज का टॉपिक थोड़ा अजीब है हमेशा की तरह। अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल इंसान हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक छोटा सा रियलिटी चेक जरूर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके दिमाग की एक ऐसी आदत की जिसकी वजह से आपको कभी दीवार पर चेहरा दिखाई देता है, कभी बादलों में हाथी, कभी रोटी में गणेश जी, कभी कॉफी के फोम में कोई आंखों वाला आदमी, और कभी कभी तो बाथरूम की टाइल्स में भी ऐसा लगता है जैसे आपको कोई घूर रहा है। आपको भी ऐसा होता है ना? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त अपने आसपास देखिए, किसी वॉल को ध्यान से देखिए, किसी कर्टन को देखिए, किसी विंडो के बाहर देखिए, किसी चीज के पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और अब सोचिए क्या आपको कहीं कोई फेस दिख रहा है? दो आंखें, नाक, शायद एक छोटा सा मुंह, और अगर हाँ तो मुबारक हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आपको कोई भूत नहीं दिख रहा, आप पागल नहीं हो रहे, और ना ही दीवार के पीछे कोई सीक्रेट सोसाइटी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं पैराडोलिया। नाम बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन इसका काम बहुत सिंपल है। पैराडोलिया का मतलब है जब हमारा दिमाग रैंडम शेप्स, पैटर्न्स या ऑब्जेक्ट्स में कोई पहचानी हुई सी चीज देखने लगता है। सबसे कॉमन चेहरे। दिमाग को फेसेस बहुत पसंद है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इतने ज्यादा पसंद हैं, इतने ज्यादा आइडेंटिफाइबल हैं कि अगर कोई दो डॉट्स और एक कर्व भी दिख जाए कहीं तो वो तुरंत अनाउंस कर देता है, अरे ये तो फेस है। एक कार का फ्रंट देखिए, दो हेडलाइट्स, बीच में ग्रिल, और सडनली कार आपको गुस्से में घूरती हुई लगने लगती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ कार्स क्यूट क्यों लगती हैं और कुछ कार्स ऐसी क्यों लगती हैं जैसे आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आई हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उनके फ्रंट में फेस देख लेता है। दो हेडलाइट्स आंखें बन जाती हैं, ग्रिल मुंह बन जाता है, और बम्पर बस एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देता है। और फिर हम कहते हैं यार ये कार तो बड़ी क्यूट है। कार बेचारी सोच रही होगी मैडम मैं तो एक मशीन हूं, लेकिन हमारा दिमाग मानता ही नहीं। अब जरा बचपन याद कीजिए। क्या आपने कभी बादलों को देखा है और कहते ही कहा है कि अरे ये तो एलिफेंट जैसा लग रहा है, या ये तो बिल्कुल रैबिट है, या फिर ये वाला क्लाउड तो इंडिया के मैप जैसा लग रहा है, और फिर 5 मिनट बाद अरे रुको अब तो ये क्लाउड कुछ भी नहीं लग रहा। यही है पैराडोलिया। बादल वही था, लेकिन आपका दिमाग, आपका अमेजिंग दिमाग कहानियां बना रहा था। और यही तो हमारे दिमाग की सबसे इंटरेस्टिंग आदतों में से एक है। हमारा ब्रेन रैंडम चीजों में पैटर्न्स ढूंढता रहता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स पहचानना सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी एक तरह से बेसिक नीड है। सोचिए हजारों साल पहले एक जंगल में कोई इंसान चल रहा है, उसे बुशेस में कुछ मूवमेंट सा दिखता है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, अरे शायद हवा से पत्ते हिल रहे हैं। दूसरी, हो सकता है कि कोई डेंजरस सा जानवर हो। अब अगर आपने पहली पॉसिबिलिटी चूज की और सामने सच में शेर निकला तो कहानी खत्म। लेकिन अगर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी चूज की तो आप भाग सकते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग नेचुरली अलर्ट रहता है।
वो छोटी सी इंफॉर्मेशन से भी मीनिंग्स निकालने की कोशिश करता है, कभी कभी जरूरत से बहुत ज्यादा। मतलब दिमाग कहता है बेटर सेफ देन सॉरी, और फिर कर्टन हिलता है, देखो कोई है, कपड़े चेयर पर पड़े हैं, अरे कोई आदमी बैठा है। रात को किचन में बॉटल गिरती है, बस आज तो सब कुछ पैरानॉर्मल है घर में। सुबह पता चलता है बिल्ली थी, और बिल्ली भी आपको ऐसे देख रही हो जैसे मैं तो रोज यहीं रहती हूँ, तुम्हें अब पता चला है। पैराडोलिया का एक और मजेदार एग्जाम्पल है दोस्तों, खाने में फेसेस देखना। टोस्ट पर भी किसी का फेस दिख गया, पैनकेक पर किसी की आंखें दिख गई, पिज्जा की टॉपिंग्स में, कॉफी के फोम में, और सबसे डेंजरस रोटी या पराठे पर। अगर रोटी पर हल्का सा शेप बन गया तो तुरंत फैमिली ग्रुप में फोटो, जय श्री गणेश, जय माता दी, भगवान का आशीर्वाद। और मम्मी किचन से चिल्लाती हैं, अरे वो आशीर्वाद नहीं है, जल गया है। लेकिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, दिमाग को पैटर्न मिल गया, कहानियां शुरू। और यही पैराडोलिया का कमाल है, हम सिर्फ चेहरे नहीं देखते, हम मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। एक रैंडम शेप, एक रैंडम आवाज, एक रैंडम इवेंट, और फिर हम उसमें कहानी ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि नेटफ्लिक्स वाले भी हमसे स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने कभी किसी भीड़ में दूर से खड़े हुए किसी अपने को देखा है? आपको लगा अरे ये तो मेरा दोस्त है, आप हाथ हिलाते हैं, बहुत जोर से हाथ हिलाते हैं, और हाथ हिलाते हुए पास पहुंच जाते हैं, और सामने से कोई बिल्कुल अनजान आदमी, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आपके दिमाग में बस अब इज्जत गई, और उसके दिमाग में ये कौन है भाई। आप तुरंत फोन निकाल लेते हैं, एक्चुअली मैं किसी और को वेव कर रहा था। नहीं भाई, आप किसी और को वेव नहीं कर रहे थे, आपका दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था, उसने डिस्टेंस से एक फेमिलियर सा फेस पैटर्न पकड़ लिया, और बस आपने अपनी सोशल रेपुटेशन दांव पर लगा दी। लेकिन पैराडोलिया सिर्फ मजाक नहीं है, इसका एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन हमारे इमोशन से भी है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग सामने की इमेज नहीं देखता, वो हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और एक्सपेक्टेशंस को साथ लेकर चलता है। आप उदास हैं तो एक खाली सड़क भी ज्यादा उदास लग सकती है, आप रोमांटिक मूड में हैं तो सनसेट भी सडनली सिनेमैटिक हो जाता है, आप किसी को मिस कर रहे हैं तो भीड़ में हर दूसरा इंसान एक ही सेकंड के लिए बट उसी इंसान जैसा लगता है, और फिर दिल कहता है शायद वो था, दिमाग कहता है नहीं बेटा नहीं, दिल कहता है एक बार और देख लेते हैं, दिमाग कहता है चलो ठीक है। हम इंसान बहुत अजीब हैं, हम रियलिटी को सिर्फ देखते नहीं, हम उसका मतलब भी बनाते हैं, और कभी कभी हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, आपको सबसे अजीब जगह कहां फेस दिखा है आज तक? दीवार पर, बादल में, कॉफी में, किसी बिल्डिंग के विंडो पैटर्न में, या फिर किसी आलू में? हां जी, आलू भी कभी कभी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। किसी आलू का शेप थोड़ा अनयूजुअल क्या हुआ, गाइस लुक एट दिस, और उसकी फोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल, लैक्स ऑफ लाइक्स, आलू फेमस, और आपका टैलेंट अभी भी पेंडिंग। हम सब अपनी लाइफ में पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है,
कुछ लोग कहते हैं जब भी मैं ये नंबर देखता हूँ कुछ अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं जब भी मैं बहुत हंस लेता हूँ तो मुझे रोना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और कुछ लोग हर चीज में साइंस ढूंढने लगते हैं। कभी कभी वो पैटर्न सच होता है, नो डाउट, कभी कभी सिर्फ कोइंसिडेंस, और कभी हमारा दिमाग दो रैंडम डॉट्स को आंखें बना देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी वॉल पर कोई फेस देखें तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि शायद दुनिया आपको कोई सीक्रेट मैसेज नहीं दे रही, शायद आपका दिमाग बस ये कह रहा है कि रिलैक्स, मैं बोरिंग नहीं हूं, मैं हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। और ऑनेस्टली हमारे दिमाग की ये आदत बुरी भी नहीं है, इसी वजह से तो हम इमेजिनेशन करते हैं, इसी वजह से तो हम स्टोरीज बना लेते हैं, और इसी वजह से आर्टिस्ट्स को ब्लैंक कैनवस में भी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, इसी वजह से राइटर्स एक छोटी सी बात से पूरी कहानी बना देते हैं, एक फोटोग्राफर एक ऑर्डिनरी वॉल में ब्यूटी देख लेता है, एक बच्चा बादल में ड्रैगन देख लेता है, और एक कवि बारिश की एक बूंद में पूरा समुंदर ढूंढ लेता है। शायद पैराडोलिया हमें एक और चीज सिखाता है, दुनिया में सिर्फ वो नहीं है जो सामने है, दुनिया वो भी है जो हम उसमें देखते हैं या देखना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा बैलेंस जरूरी है। हर रैंडम चीज को साइन समझना बिल्कुल ठीक नहीं है, हर शैडो को भूत समझना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर कोइंसिडेंस को डेस्टिनी समझना भी जरूरी नहीं है, और हर आलू को गणेश जी समझना ये तो बिल्कुल आपकी श्रद्धा और इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगली बार जब आपको बादल में कोई जानवर

दिखे या दीवार पर कोई चेहरा दिखे या कॉफी के फोम में कोई आदमी दिख जाए तो उसे तुरंत इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए और फिर अपने दिमाग को शुक्रिया कहिए, क्योंकि उसने एक रैंडम पैटर्न को एक छोटी सी कहानी बना दिया है। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां एक छोटी सी बात कभी दीवार पर बना चेहरा बन जाती है, कभी बादल में हाथी, कभी कॉफी में अजनबी, और कभी एक सिंपल सी साइंटिफिक फिनोमिनन, जिंदगी को देखने का एक नया तरीका। तो अब जाइए जल्दी और अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पता आपको कोई फेस दिख जाए। और हाँ, अगर वो फेस आपको आंख मारता हुआ भी लगे तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, वो आपका दिमाग है, मैं नहीं। मिलते हैं फिर एक और अजीब, अनोखी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, देखते रहिए, सोचते रहिए, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को थोड़ा सरप्राइज करते रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की बोली, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूंगी। लड़का बोला, पर मैं दुखी कहां हूं? लड़की बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त आरजे तनुषा आपके साथ आज की सुकून भरी मॉर्निंग में। आज की बात फिर से थोड़ी सी अजीब लगेगी, थोड़ी सी फनी लगेगी, और अगर आपने इसे सीरियसली ले लिया तो शायद आज के बाद अब अपना मुंह खोलने से पहले दो बार तो जरूर सोचेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे मक्खियों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का हमारा ज्ञान किसी बड़े फिलोसोफर से नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं, बल्कि मक्खियों से आ रहा है। और एक मेक्सिकन कहावत कहती है, फ्लाइज डू नॉट एंटर अ क्लोज्ड माउथ, मतलब बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती। अब आप सोच रहे होंगे, आरजे तनुषा को सुबह सुबह हो क्या गया है? इतने सारे टॉपिक्स हैं दुनिया में, प्यार है, पैसा है, पॉलिटिक्स है, चाय है, समोसे हैं, और मैडम पहुंच गई मक्खियों पर। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी कहावत के अंदर जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। जी हाँ, और वो लेसन है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बोलने से पहले सोचनी चाहिए और कुछ बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए मुंह है। आजकल तो सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले जमाने में आदमी गुस्से में कुछ भी बोल देता था तो बात मैक्सिमम घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचती थी, और आज एक बार व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फेसबुक पर कुछ लिख दिया, आर्काइव, और अगर किसी ने पुरानी कोई बात ट्वीट हुई भी ढूंढ ली तो बस आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की एक थ्रेड बन जाती है। बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी चुप ही बैठे रहें। नहीं, क्योंकि अगर हम सब चुप हो गए तो फिर रेडियो का क्या होगा और मेरी नौकरी का क्या होगा? मैं तो आपसे कहूंगी कि बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, बस इतनी सी इल्तिजा है कि थोड़ा सा सोच कर। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलने से पहले सोचते हैं और दूसरे वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, अरे मैंने ये क्यों बोल दिया, और फिर तीसरी कैटेगरी के वो होते हैं जो बोलने के बाद भी कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आपको पता है, मैं तो मजाक कर रहा था इंसानियत का सबसे पुराना इमरजेंसी एग्जिट है। आप कुछ भी बोल दो, किसी का दिल दुखा दो, किसी की बेइज्जती कर दो, किसी का राज बता दो, और सामने वाला गुस्से में आ जाए तो तुरंत, अरे बाबा मजाक था। नहीं भाई, मजाक वो होता है जिसमें दोनों लोग हंसें। सिर्फ आप हंस रहे हो और सामने वाला घर जाकर रो रहा है तो वो मजाक नहीं है, वो आपकी सोशल स्किल्स का पोस्टमार्टम है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन असली समझदारी शायद ये है कि आपको इतना तो पता हो कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर कमेंट का जवाब देना भी जरूरी नहीं है, हर ओपिनियन को डिफेंड करना भी जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बात पे अपना ओपिनियन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया ने हम सबको एक अजीब सी आदत लगा दी है, किसी सेलिब्रिटी ने शादी की, हमारा ओपिनियन सामने, किसी ने डिवोर्स लिया, ले झट एक और ओपिनियन, किसी ने बेबी पैदा किया, बॉय गर्ल के ओपिनियंस, किसी ने बेबी का नाम क्या रखा, बिग फैट ओपिनियन, किसी ने क्या खाया, ओपिनियन, किसी ने क्या नहीं खाया उस पर भी ओपिनियन, किसी ने ब्रेकअप किया ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन, और अगर दो लोग चुपचाप खुश हैं तो हमारा ओपिनियन समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। भाई हर जगह घुसना जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों को जिंदगी जीने दो, दूसरों को जिंदगी उनकी तरह जीने दो, दूसरों की जिंदगी को दूसरों की ही जिंदगी रहने देना भी एक कला है। और इसीलिए साइलेंस यानी खामोशी बहुत पावरफुल चीज है। खामोशी का मतलब हमेशा वीकनेस नहीं होता, कभी कभी खामोशी का मतलब होता है मैं समझ गया हूं लेकिन मैं इस डिस्कशन को अपनी मेंटल पीस के लायक नहीं समझता। वाह क्या बात है, आपको कोई प्रोवोक करे और आप चुप रहें तो सामने वाले को एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है। उसने डायलॉग मारा लेकिन आपने रिएक्शन नहीं दिया, उसने दूसरा डायलॉग मारा और आप फिर भी चुप रहे, तीसरा डायलॉग और आप चाय पी रहे हो मजे से, चौथा डायलॉग आप बिस्किट खा रहे हो, 5 मिनट बाद सामने वाला खुद ही सोचेगा मैं अकेला ही पागल हूं क्या, और आप कहेंगे जी बस आर्ग्यूमेंट खत्म, बात खत्म। तो दोस्तों कभी कभी साइलेंस इज द मोस्ट एलिगेंट रिप्लाई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोटिस किया है कि हम दूसरों की बात सुनने के लिए कितने इंपेशेंट हो जाते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है और हमारे दिमाग में ऑलरेडी जवाब तैयार होते हैं, एक नहीं 3-4। वो कह रहा है मेरी प्रॉब्लम ये है और हम सोच रहे हैं अच्छा अब मैं बताऊंगा मेरी प्रॉब्लम क्या है। वो अपना दुख बांट रहा है और हम अपनी कहानी लेकर बैठ गए, वो अपनी सक्सेस बता रहा है और हम अपनी ही सक्सेस का ट्रेलर चला रहे हैं। वो कह रहा है मैं कल जयपुर गया था और हम तुरंत अरे जयपुर मैं तो एक बार उदयपुर गया था, और फिर कॉन्वर्जेशन जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से मुंबई, मुंबई से लंदन, लंदन से आपके कजिन के फ्रेंड के ब्रदर तक पहुंच ही जाती है। कॉन्वर्जेशन नहीं, इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये। इसलिए कभी कभी बस सुन लीजिए, जी हाँ किसी को एडवाइस नहीं चाहिए होती कभी कभी, किसी को सॉल्यूशंस भी नहीं चाहिए होते, किसी को बस ये चाहिए होता है कि आप कोई उसकी बात बिना बीच में काटे और बिना अपनी कहानी लाए थोड़ी देर के लिए सुन लें, बस थोड़ी देर। और शायद इसीलिए बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती का एक मतलब ये भी है, जब जरूरत हो तो अपनी बात रोक कर दूसरे की बात सुनिए। लेकिन अब एक और सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलती हम कब करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं या जब हम बहुत खुश होते हैं? मेरा मानना है जब हम इमोशनल होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो बाद में वापस नहीं आते, और खुशी में कभी कभी ऐसे सीक्रेट्स बता जाते हैं जो हमें नहीं बताने चाहिए थे। अरे किसी को बताना मत, और फिर वो बात 2 घंटे में पूरे मोहल्ले की प्रॉपर्टी बन जाती है। आपने भी सुना होगा मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूं। दोस्तों अगर कोई आपसे ये सेंटेंस बोले तो समझ जाइए कि आपको एक सीक्रेट नहीं एक जिम्मेदारी दी जा रही है, और अगर वो सीक्रेट आपके आगे किसी को भी आप बता रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं बस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा था। जी नहीं, हर इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए नहीं होती, कुछ बातें सच में प्राइवेट होती हैं, सीक्रेट होती हैं, पर्सनल होती हैं, और कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि आपको पता है नॉलेज और परमिशन दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आपको किसी के बारे में कुछ पता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया को बता देना है। यहीं पर आज की हमारी कहावत फिर से काम आती है, बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती, और आज के डिजिटल जमाने में शायद इसका एक मॉडर्न वर्जन होना चाहिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, और डबल थिंक बिफोर यू पोस्ट, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात शायद इंसान सुनता है, लेकिन इंटरनेट पे लिखी हुई बात इंटरनेट कभी नहीं भूलता ना भूलने देता है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में किसी को एक लंबा सा मैसेज भेजने का मन बना रहे हैं, रुकिए, लिखिए, पढ़िए और फिर से पढ़िए, फिर फोन साइड में रखिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक पे जाइए, और अगर फिर भी आपका भेजने का मन हो तो पहले किसी ट्रस्टेड दोस्त को भेजिए, और अगर वो भी कहे कि भाई मत भेज, तो समझ जाइए यूनिवर्स आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज की बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चुप रहकर सब कुछ सह लें, बिल्कुल नहीं। जहां इनजस्टिस हो वहां बोलना जरूरी है, जहां किसी के साथ गलत हो रहा हो वहां आवाज उठाना भी जरूरी है, जहां किसी को आपकी जरूरत हो वहां खामोशी नहीं साथ देना जरूरी है, लेकिन जहां सिर्फ ईगो की लड़ाई है ना, सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है, वहां साइलेंस। जहां गॉसिप हो वहां साइलेंस, जहां सामने वाला सिर्फ रिएक्शन चाहता हो वहां साइलेंस, और जहां आपको पता हो कि आपके वर्ड्स किसी का दिल तोड़ देंगे लेकिन आप सिर्फ गुस्से में बोल रहे हैं, वहां प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि वर्ड्स की एक अजीब सी आदत होती है, हम उन्हें बोल देते हैं और फिर चाहे हम कितनी बार भी सॉरी कहें, वर्ड्स अपना निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए शायद जिंदगी में एक छोटा सा रूल होना चाहिए, स्पीक लेस लिसन मोर, थिंक फर्स्ट एंड व्हेन यू स्पीक मेक योर वर्ड्स वर्थ हियरिंग। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन करे किसी आर्गुमेंट में अपना लास्ट वर्ड देने का, तो याद रखिए आपको हर बार लास्ट वर्ड की जरूरत नहीं है, कभी कभी लास्ट वर्ड साइलेंस का भी होता है। और हाँ, आज से अगर कोई आपसे कहे फ्लाइज डू नॉट एंटर अ क्लोज्ड माउथ, तो आप भी उनसे कहना बिल्कुल। लेकिन भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज मैंने भेज दिया उसमें मक्खी नहीं, मैंने खुद को ही फंसा लिया। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की में बस इतना ही। अपना मुंह बंद रखना हर वक्त जरूरी नहीं, लेकिन अपनी जुबान को अपना मालिक बनने देना ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हुनर सीख लिया। मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नई कहावत, एक नई अजीब सी बात के साथ। और हाँ, तब तक मक्खियां दूर रखिए, और हाँ, वर्ड्स को संभाल के रखिए। नमस्कार।

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है,

मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक और बात बताता हूं, इधर उधर की लेकिन बहुत ही जोश भर देने वाली। जापान ने पहली बार सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। स्वीडन में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान ने अपने दो एथलीट याहिको मिशिमा और इशिजो कानाकुरी को भेजा था, लेकिन उनके लिए जापान से स्वीडन तक का सफर आसान नहीं था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 18 दिन लगे। वो सबसे पहले पानी के जहाज से रूस पहुंचे, इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा का रेल यात्रा सफर उन्होंने किया, लिहाजा दोनों ही खिलाड़ियों को तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता के दिन शिजो कानाकुरी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब जोर लगाकर मैराथन की शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश हो गए। मैराथन देख रहे कुछ स्थानीय लोग उन्हें अपने घर ले गए, जहां अगली सुबह उन्हें होश आया। शिजो अपने प्रदर्शन से बहुत दुखी थे। दुख से डूबे हुए वो बगैर स्टॉकहोम के ओलंपिक अधिकारियों को बताए जापान वापस लौट गए, इसलिए एसोसिएशन ने उनके नाम के आगे मिसिंग यानी कि गुमशुदा लिख दिया। स्वीडन नेशनल ओलंपिक खेलों की किताबों में वो कई सालों तक गुमशुदा रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने साल 1920 और 1924 में जो ओलंपिक्स गेम आयोजित किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। साल 1967 में स्वीडिश नेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने शिजो कानाकुरी से स्टॉकहोम वापस आकर अपनी अधूरी मैराथन पूरी करने का आग्रह किया। है ना आश्चर्यजनक बात दोस्तों, कौन याद रखता है इतने सालों तक कि उन्होंने अपनी मैराथन पूरी नहीं की थी, वो मिसिंग थे। 75 साल के उम्र में वो वापस आए और अपनी अधूरी रेस पूरी की। मैराथन पूरी करने का समय था 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकेंड्स। ये इतिहास की सबसे लंबी मैराथन दौड़ थी दोस्तों। है ना आश्चर्यजनक बात, लेकिन मैराथन दौड़ को पूरा करने का जोश लगातार कायम रहा खिलाड़ी के अंदर भी, और जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित किया था उन अधिकारियों में भी। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

आइए दोस्तों, आपको आज बताते हैं मोहताज अजयजा जी के बारे में। जब चारों तरफ अपनों की लाशें बिखरी हों, अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ खानदान का कोई बुजुर्ग मलबे के नीचे से बचा लेने के लिए पुकार रहा हो और संज्ञा शून्य नन्नी भांजी या भतीजी एक सवाल अपनी हिचकी में दबाए आपके हाथों में दम तोड़ देती हो कि मैंने तो दुनिया अभी देखी ही नहीं थी, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी दोस्तों? इससे ज्यादा त्रासद मंजर कोई दूसरा नहीं हो सकता, मगर युद्धग्रस्त इलाकों के बाशिंदों की नियति ऐसे दृश्यों से उनकी मुठभेड़ कराती ही रहती है। गजब यह है कि इस कोहराम के बीच भी लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे हालात में एक पत्रकार किस साहस से अपने फर्ज को अंजाम देता है, फिलिस्तीनी पत्रकार मोहताज अजयजा इसकी मिसाल हैं। शांत इलाकों के नौजवान जिस उम्र में रोमानी दुनिया के हसीन ख्वाब बुना करते हैं, मोहताज ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिलिस्तीन की जमींदोज हुई बस्तियों और बमबारी के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरों से एक तारीखी दस्तावेज तैयार किया है। इस काम के लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही है और अब प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने 2024 की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में उनको शुमार किया है। गाजा पट्टी के दीर अल बलाह शरणार्थी शिविर में नवंबर 1999 में मोहताज पैदा हुए। जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ तनाव ही पसरा पाया। सुकून और बेफिक्री से शायद फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों का कम ही साबका पड़ता है। मोहताज जब 6 साल के थे, अपनी बस्ती की सड़कों पर उन्होंने इजरायली टैंकों को दौड़ते देखा। जब वो 8 साल के हुए तो गाजा पट्टी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए फिलिस्तीन के हमास और फतेह गुटों के लड़ाकों को एक दूसरे का खून बहाते देखा, और उसके बाद तो हर दूसरे साल इजरायल हमास बकायदी से लड़ते भिड़ते ही रहे। इन भिड़ंतों ने ही वहां के बच्चों के भीतर खौफ को खत्म कर दिया। इंसान होने की सिफत बस इतनी ही बची रही कि तनाव और हिंसा के बीच भी इन इलाकों के शिक्षकों ने अपना धर्म निभाना नहीं छोड़ा और ना ही डॉक्टरों ने इलाज करने की अपनी सेवा को छोड़ा। इसके कारण मोहताज जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दाखिला लिया। यहां पढ़ते हुए मोहताज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी से जुड़ गए, ताकि रेड क्रॉस के जरिए वो बेबस लोगों की कुछ मदद कर सकें। साल 2018 की बात है। गाजा इजराइल सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते देखते लड़ाई में बदल दिया गया। मोहताज तब 19 साल के रहे होंगे। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बैनर तले राहत कार्य करते समय एक इजरायली स्नाइपर ने उनकी जांग को गोलियों से जख्मी कर दिया। मोहताज का जख्म कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन हिंसा जारी रही। इस दारुण अनुभव को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं और इस तरह उनके अंदर एक पत्रकार पैदा हुआ। साल 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद मोहताज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी से जुड़ गए। बहुत ही जल्द उनका नया ठिकाना एक अमेरिकी संगठन बना, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की खातिर संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करता था। मोहताज बहुत खुश थे। उन्हें इस संगठन में फोटो और वीडियो प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। वो अपने गाजा के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिरकार वो उनका घर है। वहां की जिंदगी के विविध रूपों और दुश्वारियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया, मगर दुर्योग से वो वहशी सुबह जल्द ही आ गई, जिसके प्रतिशोध ने गाजा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल पर अपने बर्बर हमले से हमास ने असंख्य दुखों को न्योता दे दिया। हमास ने जब इसराइल पर रॉकेट दागे, तब मोहताज को यह लग रहा था कि इस बार जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। कुछ घंटों बाद ही इजरायली हमले शुरू हो गए, भयानक वेग और बर्बरता को समेटे हुए। मोहताज के कैमरे ने उनको फिल्माना शुरू किया।
आम फिलिस्तीनी की पीड़ा, बेबसी और युद्ध की विडंबना उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। मगर 12 अक्टूबर को उन्होंने जो वीडियो और तस्वीरें डाली वो लाखों लोगों को मर्माहत कर गईं। इसराइल के हवाई हमले में उनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। अगले 107 दिनों तक वो इसी तरह हकीकत तफसील के साथ दुनिया के सामने लाते रहे। मगर इसराइली हमले की आलोचना करते हुए भी मोटाज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके किसी संदेश से नफरत की बूंद आए। मगर इसराइली फौज को यह सब नागवार गुजर रहा था। मोटाज को अलग अलग नंबरों से धमकियां मिलने लगी। घर पर बमबारी का खतरा बढ़ने लगा। अक्टूबर से गाजा में 120 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में मोटाज के लिए एक एक दिन जब भारी पड़ने लगा तो उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों छोटे भाइयों और माता पिता के साथ उन्होंने गाजा से निकल जाने की इजाजत मांगी। मगर 23 जनवरी को गाजा छोड़ते हुए वो काफी गमगीन और कुछ शर्मिंदा भी थे, क्योंकि उन्हें जो सहूलियत मिली वो उनके देश के तमाम लोगों को हासिल नहीं है। मोटाज अब दोहा में रह रहे हैं। उन्हें जब भी मनोचिकित्सकों से मिलने की सलाह दी जाती है वो यही कहते हैं, अभी युद्ध विराम हुआ कहां है। वो इस युद्ध के खिलाफ दोहा से भी सक्रिय हैं। मोटाज की बहादुरी ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल है। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है, कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था। कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया। सामने रेलवे स्टेशन था, यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी। देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की, उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है। वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा। देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है।

आइए दोस्तों एक और काम की बात बताता हूं। एक मंत्र है, एक जुगाड़ है, एक योजना है, एक युक्ति है, अपना लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम सभी अपनी जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाना चाहते हैं ना, हर वक्त हर चीज में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अपने आप आएंगी। अब देखिए कितना आसान तरीका है ना ये। तो जिंदगी में ज्यादा पाने का आसान तरीका है धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना। आदत डालिए दोस्तों, जिससे भी मिलिए, जहां पर भी मौका मिले, शुक्रिया अदा करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। शुक्रिया करते चलिए, जिंदगी में ज्यादा ज्यादा ज्यादा पाते चलिए।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कुछ कहती हैं सब्जियाँ,
2: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेंगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
3: आज हम सब्जी खेलेंगे।
4: हाँ, सब्जी खेलेंगे।
5: चन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
6: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
7: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
8: मैं करेला बनूंगा।
9: तुम टमाटर बनोगे।

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
1: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
1: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
2: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
1: अच्छा।
2: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
1: ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
2: अच्छा, बड़ा समझती हो।
3: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
4: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
5: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
4: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
3: आलू
6: आलू
1: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
6: आलू के फायदे तो बताओ।
4: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
7: मुझे भी चाहिए शक्ति।
8: मुझे भी शक्ति।
9: मुझे चाहिए।
10: मुझे चाहिए।
11: मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम
3: भाई बहन हैं।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची, तू चोट लेगी।
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है। होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है। बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूंगी।
0: ये हुई ना बात। शाबाश बेटी।
5: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं। इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
7: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
5: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
8: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
9: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
5: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
8: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
10: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
8: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
11: माँ, ये चिट्ठी।
8: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
9: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
11: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
9: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
11: अच्छा,
9: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
11: अच्छा,
9: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
11: हाँ
9: ठीक है। बहुत अच्छे।
5: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की माँ, जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खीजे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
9: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
12: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
5: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला, जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है। वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
12: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
9: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
12: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
5: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
9: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
12: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
5: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
12: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
9: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
12: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई
8: बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
9: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?

0: अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
2: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त।
5: पुराने जमाने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा,
6: तुम्हारे पास कोई गवाह है?
5: आदमी ने कहा,
6: नहीं। बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं।
5: दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला,
7: हुजूर, ये शख्स बहुत कसमें खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
5: काजी ने जब उस आदमी को इस तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया,
7: हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी, ये बहुत परेशान था, इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जिंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए।
5: काजी ने पूछा,
6: तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे?
7: एक दरख्त के नीचे।
6: जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है?
5: काजी

0: दूसरे शख्स से पूछा,
1: तुम क्या कहते हो, क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है?
2: ये झूठ बकता है, मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ, मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं।
0: काजी ने उसकी बात सुनकर कहा,
1: अच्छा तुम अभी यहीं बैठो।
0: फिर दावा करने वाले शख्स से कहा,
1: तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
0: काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा,
3: काजी साहब मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
0: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
1: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
0: मुद्दई ने काजी की मुहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
1: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
0: उसने जवाब दिया,
1: अभी नहीं।
0: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
3: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
0: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
3: हुजूर दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
1: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
0: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
1: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
0: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
2: काजी साहब मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
0: काजी ने जवाब दिया,
1: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज ना देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: पैसों के अत्याचार तो बढ़ते ही जाएंगे, आपको शांत करना पड़ेगा
1: जरूर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बात छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच खाना बंद। अब यह जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार
0: नहीं।
1: अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
0: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
0: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
0: अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, हट जाओ।
3: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
0: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
3: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ जादो नाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
0: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
2: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
3: ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
4: लेकिन जादव भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
3: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी, हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
4: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
3: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग यू, हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
4: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
1: हटो पीछे, नहीं मोंटी ये ले।
0: क्यों मार
3: रहे हो? कायर इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
2: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो, देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं, देखो देखो इसे।
1: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। चलो इसके साथियों को भी ले चलो। जा तो ना, चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
2: हम
1: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं,

0: लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों तैयार हो जाओ।
1: तैयार।
0: इससे पहले कि वो इधर आए हम उन पर हमला कर देंगे।

0: इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन ल्यू को सब प्यार से रानी गाइडन ल्यू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
1: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स न देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
2: अब तो हद हो गई है, ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
3: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
4: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
3: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
4: रानी रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
2: नहीं नहीं
5: रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
4: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
6: नहीं, नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: बच्चों, इस तरह रानी गाइडन ल्यू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन ल्यू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
1: सिपाहियों, यस सर, पकड़ लो इसको,
7: यस सर,
1: पकड़ लेना पाए,
7: ठीक है,
1: पकड़ो, इधर चल, चल, चल, पकड़ो सिपाहियों,
2: छोड़ो, छोड़ो मुझे, कायरों की तहे क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
8: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
8: सिपाहियों, जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो, बहुत परेशान किया है हमको।
2: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
8: अच्छा,
2: छोड़ दो।
8: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ जाओ, डाल दो इसको कालकोठरी में।
0: इस तरह रानी गाइडन ल्यू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया, तो गाइडन ल्यू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियो को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियो को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियो ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियो भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
7: अरे रामू काका।
9: नमस्ते टीचर जी।
7: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
9: बस ठीक हूँ।
7: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
9: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
7: अरे
9: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
7: अरे
9: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
7: कैसी बातें करते हो रामू काका। इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
9: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
7: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का 5वीं पास होना जरूरी है, और तुम्हारी बेटी तो 5वीं पास कर चुकी है
9: जी।
7: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
9: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा? खाना पीना, कपड़े, किताबें।
7: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
9: क्या?
7: हाँ,
9: मुफ्त में दिया जाएगा।
7: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
9: अच्छा हाँ। तो क्या टीचर जी, मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
7: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
9: अच्छा धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
7: अरे कल क्यों, आज।
9: अच्छा टीचर जी, आज ही करवाता हूँ।
7: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: आज तो बहुत मजा आया,
1: जम्मू चलो
0: खेलेंगे।
2: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
0: अरे सहेली किसकी है
3: भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
4: पर हमको तो नहीं आता था।
0: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई।
3: अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती। क्यों?
2: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
3: अच्छा चलो चलो घर चले।
5: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
6: धीरे धीरे मेरा दीपक।
7: अरे भाई हरीश, सभी आ गए बस में?
5: देखता हूँ उस्ताद, शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
3: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
5: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
3: आओ चलो चलो चलो आओ, इधर बैठो।
5: आराम से चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब, अब चलाओ गाड़ी।
7: हाँ जी अभी लो।
5: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
3: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना।
2: भाई पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
0: अरे बुद्धू, गाने के साथ साथ बजानी है।
2: अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
0: चलो पिंकी शुरू हो जाओ।
3: बजे समय

0: पिंकी बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग लग गई थी बैटरी पर। हां बैटरी पर ये देखो आग। हां अमित अमित चलो चलो जल्दी राकेश हमें सब और पूनम कहां है? हां देखो आग तो बढ़ती ही जा रही है। अरे
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको। उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है।
3: हैं
2: आग
3: किसे कहते हैं?
2: मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी। हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो। मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे तो आग बढ़ती जा रही है। अरे मुझे पकड़ाओ। अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो।
1: पकड़ो इसे कंडक्टर भैया, पकड़ो।
2: अरे मुझे पकड़ाओ। अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो, जल्दी करो। अरे ये पिंकी देखो, अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है। अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
2: अरे मुझे पकड़ाओ। अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ जल्दी से। बाहर आओ पहले, देखो तुम्हारे आग लगी है, जल्दी आओ।
1: बच्चे के कपड़ों में आग लगी हुई है।
2: अरे दमकल को बुलाओ ना
4: जल्दी, अरे फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
2: अरे दमकल को बुलाओ ना भाई,
4: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
0: भयंकर आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी 6 बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम में साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने 5 बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरता पूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को ये पुरस्कार प्रदान किया। वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश हमारे समाज की शान हैं।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं। और जैसा कि आपने बताया, इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है, फिर उस संक्रमित मच्छर

0: शरीर में आ जाती है फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती है?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है, इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे। जी
0: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्यकर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति है वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी
1: चाहिए। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब,
3: फाइलेरिया की
0: बताइए।
1: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु जीवाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा, जी जी, जी।

0: रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
1: बस सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी जी,
2: तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी बताइए।
1: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
0: जी
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हूँ से आरजे राकेश
5: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
3: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो छे। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओ अने तीना समाधान नी वातियो लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रहूं छे। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपणो चर्चानो विषय रहे पोली हाउस अने संरक्षित खेती नी वातियो। जेवी रीते किसान भाईओ तमु कहता रेल मा मोटर मा अने जाता होहे तो एक आपड़ा खेतरुना बराबर एक मोटो ओडो रे अने तीना मा ऊपर लीला रंगनु टाटलु दे देलु रे, तीने पोली हाउस अने एत्रे ग्रीन हाउस करीन केसे अने तीना मा जो फसल उगाड़ी जाए इने संरक्षित खेती कीसे। पाली हाउस अने संरक्षित खेती हाने कैसे ये बधी वातियो जाणवा हारू आज मारा सहयोगी कमता डामोर जी विकासखंड रामा मा नर्सरी पर उपस्थित छे अने ता पर श्री मन्नु सोबे तहना प्रभारी त्या बदी वात्यो आज आपुन विस्तार पूर्वक बताड़े है। जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती का अपनाना मुख्यतः कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि जहां कोई संरक्षित खेती करना चाहता है तो वहां वातावरण की क्या परिस्थितियां हैं, किन किन बागवानी फसलों की संरक्षित खेती करना चाहते हैं, संरक्षित खेती अपनाने वाले व्यक्ति के पास कितने संसाधन हैं, यदि संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं हैं तो वास्तव में कितनी कारगर है, यदि कोई संरक्षित खेती करता है तो ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों आदि को बेचने के लिए कौन से बाजार की आसानी से उपलब्धता होती है। हमारे देश में जितनी भी कृषि नीतियां बनी हैं वे मुख्यतः ग्रामीण परिस्थितियों के अनुकूल ही बनी है और शहरों में खाद्य आपूर्ति पूर्णतः ग्रामीण उत्पादन पर ही निर्भर करती है। इसमें अब काफी सुधार की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति के लिए ग्रामीण इलाकों से उन फसलों की आयात तो बिल्कुल ठीक व उचित है जो ज्यादा समय तक खराब न हो, परंतु वे खाद्य पदार्थ जो जल्दी ही खराब हो सकते हैं उनके लिए यदि शहरी क्षेत्रों को ही उनके उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाए तो जल्दी खराब होने वाले कृषि आधारित पदार्थ जैसे ताजे फल, सब्जियां, फूल इत्यादि बहुत ही कम समय में उपभोक्ता के पास पहुंच जाएंगे। इससे उपभोक्ता को न सिर्फ ताजी खाद्य सामग्री ही मिलेगी बल्कि उत्पादों के दाम भी कम हो जाएंगे तथा तुड़ाई के उपरांत होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
6: उद्यानिकी विभाग के श्री चौबे साहब जो कि रामा विकास खंड में पदस्थ हैं, और आइए जानते हैं सर जी से कि सजे हमारे किसान भाइयों को संरक्षित खेती के बारे में बताइए।
7: नमस्ते सभी किसान भाइयों, आज मैं मनु चौबे उद्यानिकी विभाग रामा में प्रभारी वरिष्ठ उद्यान अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। मैं संरक्षित खेती के ऊपर आज चर्चा करना चाहूँगा। तो संरक्षित खेती क्या होती है? संरक्षित खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको अपन बाहरी वातावरण, धूप, छाव, पानी इन सबसे प्रोटेक्ट करके सुरक्षित करके अपन अच्छा उत्पादन ले, इस तरह से जो खेती की जाती है उसको संरक्षित खेती के अंतर्गत माना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से शेडनेट हाउस और पोली हाउस इंक्लूडिंग है, इनके अंदर जो खेती होती है वो संरक्षित खेती के अंदर गिना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बाहरी वातावरण के से फसल को जो नुकसान होता है कीट पतंगों से, धूप से, छांव से ज्यादा, या आपका बर्फबारी से, धुंध से, इन सबसे अपन फसल को बचा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। शेडनेट हाउस एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंतर्गत आप हमारे उद्यानिकी विभाग से अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर में किसान को अनुदान पर ये स्कीम का लाभ दिया जाता है। इसमें अपन बात करें 4000 स्क्वायर मीटर की तो इसकी लागत आती है 28,40,000 की, और उस पर शासन की तरफ से अनुदान मिलता है 14,20,000 रुपये। अर्थात 14,20,000 किसान को भरना रहेगा और 14,20,000 उसको अनुदान मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो किसान जो नेट हाउस लगाते हैं और प्रथम बार जो उसमें खीरा जो उद्यान की फसलों की खेती करते हैं जिसको अपन अंडर कल्टीवेशन बोलते हैं, उसमें भी शासन की तरफ से 50% का अनुदान दे रहता है। इसके अगर आगे हम बात करना चाहेंगे कि शेड नेट हाउस या पोली हाउस जो लगाते हैं जो संरक्षित खेती की अपन बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं?
6: हाँ सर,
7: तो इसमें मुख्य रूप से खीरा है, शिमला मिर्ची है, जो कलर शिमला आती वो है, चेरी टमाटर है, और अन्य फसल भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं जो कि स्व परागित होती है
6: जी।
7: दूसरा अपन बात कर ली जाए कि शेडनेट हाउस और बाहर की जो खेती होती है उसमें अंतर क्या है। देखो, शेडनेट हाउस की जो खेती होती है इसके अंदर आपको उत्पादन में, गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में बहुत अंतर मिलता है।
6: सर एक बात ये बताओ कि इसमें क्या जैसे समय नहीं है, बेमौसम भी सब्जी खेती हो जाती है?
7: हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बात करी है संरक्षित खेती, मतलब बाहरी जो वातावरण है उसको अपन मेंटेन करके अपन खेती करना ही संरक्षित खेती होती है। तो चूंकि बे सीजन जैसे अब ठंड है तो ठंड में बाहर जो फसल अपन लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपर रूप से हो नहीं पाएगी, तो उसको अपन अंदर करेंगे शेड नेट या पोली हाउस के अंदर, तो वो अच्छी तरह से अपना उत्पादन भी दे पाएगी, अपनी वृद्धि विकास भी कर पाएगी, जिससे अपने को कहीं ना कहीं रूप से अच्छा बेनिफिट मिले
6: जी।
7: तो जनरली अपने झाबुआ जिले की बात करें या रामा विकास खंड की बात करें, तो हमने पिछले वर्षों में एक दो वर्षों में लगभग 10 हमारे यहाँ शेड नेट हाउस लगे हैं, और इस वित्तीय वर्ष में भी हमारे यहाँ पर लगभग 4 से 5 किसानों के नाम आए जो भी अभी शेड नेट हाउस का काम उनमें भी चालू होने वाला है
6: जी।
7: क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फसल लेने वाली, तो जैसे अमन अपने यहाँ पर अधिकांश जो किसान है जो शेड नेट हाउस वाले हैं वो खीरा की फसल को ज्यादा लगाते हैं। इसका कारण ये है कि खीरा क्या होता है, कम समय में जल्दी आ जाता है और जल्दी उत्पादन भी आपका मिल जाता है, और किसान को क्या तुरंत उसका रिटर्न
6: प्राप्त हो जाता है।
7: क्योंकि खीरा जो है, खीरा एक सलाद की फसल है, जनरली साल भर इसका उत्पादन होता रहता है और सलाद के रूप में उपयोग होती रहती है, तो इससे ज्यादातर लोग अपनी जो चाइना वाली जो खीरा होती है
6: जी जी
7: वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि उत्पादन का, तो उत्पादन जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रामा विकास खंड में जो अच्छे किसान है जिन्होंने लगाए हैं अभी 2 साल से खेती कर रहे हैं, तो आधे एकड़ में लगभग 150 से 200 क्विंटल खीरा का उत्पादन हुआ है
6: जी जी।
7: और उसमें लगभग उन्होंने जो अगर एवरेज रेट बात करें, अगर वैसे तो उन्होंने अच्छी रेट भी बेची, कोई 35-36 रुपए तक भी बिका है, लेकिन अपन एवरेज भी बात करेंगे तो 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग उनका 3 लाख का उनका लगभग 2.5 से 4-3 महीने के अंतर्गत उनको उत्पादन आय मिली है
6: जी।
7: और इसमें लगभग आधे एकड़ में बीज है, दवाई, खाद, इनका लगभग अपन खर्चा माने तो लगभग 50 से 75 हजार रुपए का खर्चा एवरेज कैलकुलेट होता है
6: जी।
7: तो इस प्रकार अपन बात करें उत्पादन और खर्च को के दृष्टिकोण में अगर शुद्ध लाभ की, तो इसमें 3 महीने के आसपास लगभग किसान को 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है।
6: सर ये बताइए कि अगर संरक्षित खेती के लिए अगर नेट शेट अगर किसान भाई लगाना चाहता है तो उसको कहाँ किस प्रकार से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है?
7: हाँ, देखो हमारे उद्यानिकी विभाग में कोई सी भी योजना होती है उसको लाभ लेने का या उस किसान को लाभ लेना है तो उसके लिए हमारे उद्यानिकी विभाग में उसको पंजीयन कराना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, जिसके नाम से जमीन है उसको आपका बैंक की पासबुक चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिए, खाता नकल चाहिए, और मोबाइल नंबर के माध्यम से, अगर ये एसटी वर्ग के किसान है तो उनको जाति प्रमाण पत्र उसका अनिवार्य होता है।
8: जी जी,
7: इन चीजों के माध्यम से उद्यानिकी विभाग में एक बार पंजीयन कराना पड़ता है,
8: ऑनलाइन होता है।
7: हाँ, ऑनलाइन होता है। उसके लिए अगर कोई किसान अगर करना चाहता है तो हमारे रामा विकास खंड में मैं स्वयं करता हूँ, निःशुल्क पंजीयन है, कोई पैसा भी उसमें नहीं चार्ज करते हूँ। तो इस तरह से अपन पंजीयन करा के, हाँ। एक बार पंजीयन कराने के बाद किसान के आईडी पासवर्ड हमारे डिपार्टमेंट के बन जाते हैं, तो उसमें जो भी इच्छित योजनाएं लेना चाहता है आदमी, वो सभी योजनाओं को अपन यहाँ से ऐड करते चलते हैं।
8: हाँ।
7: और उसका फायदा किसान को मिलता जाता है।
6: सर ये बताइए कि इसमें जैसे खीरा है, मिर्ची है और भी अन्य सब्जियां करी जा सकती है, तो उसमें क्या जो अनुदान मिलता है वो किसी विशेष सब्जी के ऊपर मिलता है या अलग?
7: देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जो खेती की जाती है सेडनेट हाउस के अंतर्गत, उसके अंदर प्रथम बार जो किसान खेती करता है
8: जी जी,
7: इसको अपन हमारे विभाग से अंडर कल्टीवेशन के टारगेट आते हैं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती के लिए
8: जी जी,
7: तो उसके अंतर्गत सब्जी की अनिवार्यता है
8: जी जी।
7: जैसे आप अभी खीरा की बात करें तो खीरा हमारे वेजिटेबल के अंतर्गत आता है।
8: हाँ।
7: तो उसमें अगर प्रथम बार जो खेती करोगे तो उसमें आपको 50% का अनुदान दे रहता है
8: जी जी।
7: जैसे मान लो उदाहरण के रूप में आधे एकड़ की बात करेंगे तो 2,80,000 रुपए के आपको बिल देने पड़ेंगे।
8: हाँ।
7: आपके खीरा मल्चिंग तार हुक जो भी अपने डालते हैं लगते हुए में उन चीजों के, तो उसमें हम 1,40,000 रुपए का आपको अनुदान देते हैं किसान को।
6: तो सर इसमें एक तो संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस में अगर होता है तो एक तो उसमें धूप से बचाया जा सकता है और दूसरा उसमें किसान भाई को क्या क्या और फायदे मिलते हैं?
7: देखो संरक्षित खेती में फायदे तो इसका जैसा नाम ही संरक्षित है तो क्या, हाँ। है संरक्षित करने का मतलब सुरक्षित या संरक्षित,
8: हाँ।
7: मतलब सुरक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य
8: है।
7: देखो किसान भले एक आधा एकड़ की बात कर रहे हैं, ओपन ले आप कितनी भी करेगी, एक तो ओपन में करने से क्या होगा, एक तो नुकसान उसका ये हो रहा है कि उसमें बाहरी जो कीट आते हैं बीमारी आती है, ज्यादा अटैक आता है। और अंदर की बात करें तो इसमें सुरक्षित रहता है, कोई कीट बीमारी नहीं लगती उसमें। दूसरी बात, अगर आपका अनुकूल वातावरण नहीं रहा, ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा ठंड हो गई, बारिश हो गई, तो बाहर की फसल

0: मतलब अंदर की खेती में आपको लगभग डबल उत्पादन मिलता है।
1: जी जी
2: तो सर इसमें खीरा की खेती के अलावा मिर्ची की अगर खेती करना हो तो किसान भाई इनको इसके अंदर इसका रोग कहाँ से कैसे तैयार करेगा और उसमें कैसे लगाएगा?
0: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो शुरू में जब किसान शेडनेट हाउस लगाता है तो फर्स्ट प्राथमिकता उसकी रहती है कि जो पैसा उसने लगाया है उसका उसको बेनिफिट मिल गया है। तो शुरू के एक दो साल तीन साल तो क्या किसान जनरली खीरा की ही खेती करता है, तो उसको क्या है कम समय में कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसका जो लगता है जो इन्वेस्टमेंट वो करता है उसका फायदा वो बराबर कर लेता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है किसान, अब क्या होता है जैसे शेडेड हाउस की बात करें अपन, तो फसल को लगाने का जो तरीका है या सिस्टम जो है उसका, वो किसान के एक दो साल खेती करता है तो उसको पूरा समझ में आ जाता है कि मैं किस समय में फसल लूं, कौन सा समय चयन करूं ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा उसका रिटर्न मिले।
1: जी जी।
0: अब क्या होता है कि देखो दो अपन लगातार दो से तीन साल तक अगर खीरा की खेती करते हैं
1: जी जी,
0: तो क्या होता है कि फसल के अंदर भी क्या होता है उस नेट हाउस के अंदर भी क्या ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है, छाया बनी रहती है, तो उसमें कुछ जमीन की जो नेमेटोड्स है वो पनप जाते हैं।
1: जी जी।
0: जिसके कारण होता ये है कि उसमें छोटे छोटे जीव पनप जाते हैं, तो वो क्या फसल को जो उत्पादन मिलना चाहिए अपने का वो उत्पादन अपने को नहीं मिल पाता। तो किसान इसमें क्या क्रॉप रोटेशन कर सकता है। इसमें क्या होता है जनरली जो अच्छे किसान है या जिन्होंने जो काफी अनुभव कर प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो वो क्या करते हैं इस पे कि इसमें गेंदा की खेती को प्रेफर करते हैं। जो आपका गेंदा हजारी
1: गेंदा,
0: तो वो क्या होता है कि गेंदा एक ऐसी फसल है
1: जी जी,
0: जो जमीन के जो नेमेटोड्स रहते हैं जो हानिकारक कीट
1: रहते हैं
0: उनको क्या करते हैं जमीन से वो खींच लेते हैं और उसकी जड़ों से एक ऐसा रसायन निकलता है जो नेमेटोड को आकर्षित
1: करता है
0: और उसकी जड़ के अंदर वो नेमेटोड आ जाते हैं। तो साल अगर एक साल दो साल में एक बार गेंदा की खेती भी अगर किसान करते हैं नेटवर्क, तो उनको जो जमीन के अंदर से जो पनपने वाले हानिकारक
1: कीट
0: है उसको सुरक्षा
1: मिल जाती है।
0: और दूसरा क्या होता है जैसे जनरली बारिश में, जैसे अभी बात करें कि जनरली जो खेती करते हैं खीरा की, वो जनरली मार्च अप्रैल या मई तक वो उनका लास्ट रहता है, क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है थोड़ा सा वो बारिश भी होती है, वो समय खीरा के अंदर क्या है तो डाउनी मिल्ड्यू है या रोड ज्यादा संभावना बनी रहती है। तो किसान जुलाई के आसपास या जून एंड तक उसमें गेंदा की खेती को प्रिपेयर करते हैं।
1: जी जी।
0: तो वो आपका वापस
2: सर इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते जैसे अपने ने मिर्ची लगाई तो साइड से उसको कुछ अपने जो कीट रहते हैं जो फसलों में फायदेमंद होते हैं, तो उसको अगर फसल को सुरक्षित रखने के लिए अपन गेंदा भी साइड से लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल अच्छी प्रश्न पूछा है, तो वो मैं भी बताने जा रहा था। तो देखो गेंदा भी बहुत सारे किसान लगाते हैं। दूसरा क्या है इसमें क्रॉप रोटेशन करने के लिए सनई जो होती है जो ग्रीन हरी खाद के लिए जो उपयोग किया जाता है उसकी भी खेती किसान बारिश में कर लेता है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट मिल जाए और फसल का रोटेशन भी हो जाए। दूसरी तरफ जो अच्छे किसान थोड़ा इसमें पारंगत हो गए हैं, एक दो सालों का तीन सालों का अनुभव कर लिया है
1: जी जी,
0: वो शिमला मिर्च कलर जो कलर अपनी पिकाडो शिमला आती है वो है पिकाडो जो पीली जाड़ी मिर्च आती है
1: जी जी,
0: उनकी भी खेती करते हैं और बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर अपन बात करें तो एक दो हमने नेट हाउस का हमने भी विजिट करा है
1: सर।
0: तो उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कलर शिमला लगाई थी आधे एकड़ में, उन्होंने लगभग 2500 के आसपास पौधे लगाए थे उन्होंने
1: जी जी,
0: तो उसमें उनका बहुत अच्छा उत्पादन मिला है और उसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग 200 से 250 रुपए दिल्ली के मार्केट में वो शिमला गई थी उनकी
1: जी जी,
0: जो कलर वाली शिमला
1: थी जी जी,
0: तो लगभग उस किसान से हमारी चर्चा भी हुई थी तो 7 लाख के आसपास उनको शुद्ध मुनाफा
1: हुआ था।
0: और इसके अतिरिक्त
1: जी
0: जो एक और नया कंसेप्ट अभी हमने चर्चा और चली, क्योंकि हमारे किसान अभी क्या एक आध साल हुआ तो थोड़ा उनको एक आध साल लगेगा उसको समझने में कि कैसे अपन उसको हाईटेक और किया जा सकता
1: जी जी।
0: अभी जो चेरी टमाटर आता है चेरी टमाटर आता है तो छोटा टमाटर होता है चेरी मतलब
1: जी जी।
0: तो उसका क्या है जो महानगर है उनमें उनकी बहुत डिमांड ज्यादा है
1: जी जी।
0: क्योंकि अच्छी जो वीआईपी होटल्स रहती है जो स्टूडेंट रहते हैं उसमें उसको सलाद या पर्पज से उपयोग किया जाता है
1: जी सर,
0: तो वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से अपन खीरा तो है ही है खीरा के अतिरिक्त शिमला मिर्च हो गई
1: जी,
0: आपका कलर शिमला जो होती वो हो गई
1: जी,
0: आपका गेंदा हो गया
1: जी,
0: चेरी टमाटर हो गया
1: जी,
0: और नॉर्मल टमाटर भी उसके अंतर्गत कर सकते हैं
1: जी जी।
0: बस उसको क्या रहता है कि ऐसी फसलों को अपन प्रेफर करते हैं उसमें या ऐसी वेरायटी उसके अंदर लगाई जाती है
1: जी,
0: जो स्वपरागित हो
1: जी,
0: क्योंकि इसमें क्या रहता है कि ये पूरा क्या नेट हाउस या पोली हाउस चारों तरफ से पैक रहता है
1: जी,
0: और इसमें क्या होता है लगभग 10 फीट

0: ऊंचाई तक इंसेक्ट नेट लगी रहती है
1: जी,
0: तो कोई भी कीट पतंगे अंदर नहीं आ सकते ना अंदर के बाहर जा सकते
1: जी।
0: तो क्या होता है अगर अपन ऐसी फसल लगा देंगे जो क्रॉस पोलिनेटेड है, पर परागित है, तो ऐसी स्थिति में परागण नहीं हो पाएगा और जो किसान को जो उत्पादन या उसका फल मिलना है वो उतना नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें स्वपरागित जो स्वपरागित फसलें हैं या जो अपने आप सेल्फ पोलिनेट होती है वैसी फसलों को इसमें लगाने के लिए प्रिफर किया जाता है, चयनित किया जाता है ताकि उसमें ज्यादा ज्यादा परागण हो सके, फ्लावरिंग ज्यादा हो, फ्रूटिंग ज्यादा हो, तो किसान को उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा
1: जी।
0: तो अंत में मैं आपके माध्यम से झाबुआ जिले के और विकासखंड रामा के सभी किसानों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अच्छे किसान है, जो थोड़ा अपने आप को और अच्छे तरीके से
1: करना
0: चाहते हैं, अपने कुछ नवाचार को ऐड करना चाहते हैं
1: जी,
0: तो आप पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ हिस्से में एक बीघा, आप आधा एकड़, एक एकड़ जो अपनी क्षमता हो, जो अपनी आप उस पर रिस्क बेयरिंग कर सकते हो, इतना पैसा लगाने में सक्षम हो, तो आप संरक्षित खेती या नेट हाउस पोली हाउस की तरफ आइए, जिससे आपको कम समय में कम क्षेत्रफल में ज्यादा
1: से ज्यादा
0: उत्पादन मिले और ज्यादा ज्यादा आपको आय होगी, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: હું છે આરજે રાકેશ
3: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
2: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अक्सर हम किसी व्यक्ति को उसकी एक ही पहचान से जानते हैं। कोई सैनिक होता है, कोई इंजीनियर, कोई लेखक और कोई संगीतकार। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे विलक्षण शख्सियत से मिलवाती है जिनके जीवन में ये सभी रंग एक साथ समाये होते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक बहुआयामी और प्रेरणादायक हस्ती मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन, आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी, प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित अधिकारी, विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर और सिस्टम एक्सपर्ट और एकॉर्डियन के कुशल वादक, अनेक पुस्तकों के लेखक और सबसे बढ़कर हिंदी सिनेमा के सदाबहार सितारे देवानंद के ऐसे अनन्य प्रशंसक जिन्होंने उनके जीवन और सिनेमा को सहेजने के लिए दो अद्भुत ग्रंथों की रचना की। इनकी पुस्तक देवानंद बैंड वैगन देवानंद जी की सृजन यात्रा में साथ चलने वाले कलाकारों और सहयोगियों की कहानी है, जबकि देवानंद एनसाइक्लोपीडिया उनकी संपूर्ण सिनेमाई संसार का एक दुर्लभ और प्रमाणिक दस्तावेज है। लेकिन दोस्तों, आज की बातचीत केवल उपलब्धियों की नहीं होगी, हम जानेंगे कि एक वायु योद्धा के भीतर संगीत कैसे जन्म लेता है, एक तकनीकी विशेषज्ञ लेखक कैसे बनता है, और एकॉर्डियन की धुनों में ऐसा कौन सा जादू बसता है, और आखिर देवानंद की मुस्कान ने कैसे एक व्यक्ति को जीवन भर के शोध और लेखन के लिए प्रेरित किया। तो आइए बिना किसी देर के बड़ी आत्मीय स्वागत के साथ आमंत्रित करते हैं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ग्रुप कैप्टन माइक राणा जी का। माइक सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू आलोक जी, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल ऑडियंस। योर टाइम, अटेंशन एंड एनकरेजमेंट मीन अ ग्रेट डील। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड होप यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस एज मच एज वी एंजॉय शेयरिंग इट विद यू। थैंक यू।
1: तो माइक सर, मैंने जैसे अभी अभी अर्ज किया, आपकी एक नहीं अनेक पहचान है, अनेक रूप है। एयरफोर्स ऑफिसर, आईटीएन, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और म्यूजिशियन और ऑथर। अब ये बताइए मुझे कि आप अपने आप को किस इस रूप में किससे साथ सबसे ज्यादा आप जुड़ाव महसूस करते हैं, कौन सा रूप आपको बहुत प्यारा लगता है, आपके दिल के बहुत करीब है?
2: ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है। बट एज एन ऑथर, बिकॉज एन ऑथर डेमोन्स्ट्रेट्स ऑल दैट ही गेन्स इन हिज लाइफ, वेदर इन द आईएएफ और कॉर्पोरेट लाइफ, सो मैं आपको अपने आप को एक ऑथर ही कम समझूंगा।
1: तो आपको अपना लेखक का रूप सबसे ज्यादा अजीज है। वाह, क्या हाँ। बात है। और आपने यार प्रोलिफिक ऑथर, जितना आप, खैर अभी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो हमारे श्रोताओं को पता लगाएगा आपके बारे में कितने रूप हैं आपके। तो अब थोड़ा सा सर पीछे चलते हैं, एयरफोर्स की ये जो शानदार सेवा आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप जुड़े? क्या बचपन में ही यूनिफॉर्म पहनने का सपना था, या अचानक जिंदगी को आपको इस मुकाम पर लेकर आई, क्या हुआ, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे?
2: जी जरूर जरूर। My father served as a captain in the Indian Army during the Second World War. काफी पुरानी बात है। More than his military rank, it was his honesty and integrity that left a very deep impression on me. He never lectured us about these virtues. He lived by them every day. And in doing so, shaped the foundation of my character. And when I entered the engineering college, I became aware of how dishonesty and deception had become prevalent in everybody's life. Mm-hmm. This contrasts with the values I had been raised with. It was impossible to ignore. I was longing for a profession where discipline, honor, and integrity formed the very basis of service. Driven by that conviction, I applied to join the Indian Air Force during the final year of my degree. Mm-hmm. I was selected, marking the beginning of a journey guided by principles my father had installed in me from childhood.
1: That is great, sir. Generally तो IITians को बड़े बड़े corporates में या बड़ी बड़ी MNCs में job उस जमाने में मिलते थे, तो आपने ये सोचा कि मैं Air Force join करूंगा?
2: हाँ, बिल्कुल
1: बिल्कुल क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में very few people from IIT they join forces. I don't know, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोग join नहीं करते हैं.
2: हाँ, बहुत ही कम परसेंटेज होती है, लेकिन जो भी ज्वाइन करते हैं उनको फायदा मिलता है कि आईआईटी में जो सीखा और एयरफोर्स में जो सीखा दोनों को मिला के अपनी जिंदगी बिताने का टाइम मिलता है.
1: तो सर, आपका एयरफोर्स का इतना लंबा भी है और डिस्टिंग्विश कैरियर भी रहा है, तो कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मिशन जो आपको आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं, बहुत मजा आता है याद करके उसको?
2: हाँ, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान आई वाज असाइंड टू एस्कॉर्ट 30 SAM-2 missiles फ्रॉम बैरकपुर टू दिल्ली इन अ ट्रेन. It was a mission that needed constant vigilance. And the journey lasted 4 days and 4 nights with the possibility of Pakistani air attacks on us. So our convoy was escorted throughout by Indian Air Force fighter aircraft. They provided us with aerial cover from Barakpur to Delhi. And more than once, air raid sirens were sounded at night, warning of possible attacks from the sky. So we remained on full alert every moment with no sleep until the convoy reached Delhi safely. And completing this mission without any incident, and this remains as one of the most memorable experiences of my life. And there were about 35 people along with me.
1: ग्रेट. ये तो बहुत ही पूरी रात, दो तीन रात जितनी भी आपकी वहां गुजरी होंगी ट्रेन में, वो बहुत ही एंजाइटी भी रही होगी और अटैक नहीं हो जाए ये भी रहा होगा.
2: तो ऊपर से हवाई जहाज का खतरा था ना.
1: सही बात है. ओके ओके. तो आप थोड़ा सा, आपने उसके बाद में एक कॉर्पोरेट दुनिया में भी एंट्री ले ली. तो ये डिसिप्लिन और डिफेंस से बिजनेस और टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी आप काफी माहिर हैं जैसा मुझे पता लगा है. तो ये जो शिफ्ट थी आपकी फ्रॉम डिफेंस टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसके बारे में ब्रीफ में कुछ बताइए हमारे को, कैसा लगा आपको इसकी कॉर्पोरेट्स की दुनिया?
2: बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा. इट वॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज आई एनकाउंटर्ड after leaving the Air Force. It was not technology, it is not competition or hard work. It was deception. I found that short-term business interests overshadowed the engineering principles and ethical decision-making. For someone whose professional life had been shaped by integrity and accountability, this was very disheartening and frustrating. So this experience ultimately led me to write a book, Deception.
1: Okay.
2: Deception. The book is intended to prepare people transitioning from armed forces to corporate life by helping them recognize the challenges and preparing them to navigate without compromising their moral values.
1: Okay. तो डिसेप्शन का बैकग्राउंड ये है आपका इस बुक का? ओके
2: और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन कभी बाद में मिलेंगे, टाइम तो बताएंगे।
1: क्योंकि जनरली जो डिफेंस से लोग आते हैं वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं या सिक्योरिटी में चले जाते हैं, जनरली हमारे बैंक्स में भी बहुत आते हैं। तो इस तरह से आपने तो, लेकिन उसमें काफी टेक्निकली बहुत आप साउंड है, तो आपने उस पर काफी काम किया। तो ऐसा करते हैं, आपकी इस ट्रांजिशन के नाम पे रुक के एक हम अच्छा सा गाना सुनते हैं, क्योंकि आपका जो जिंदगी बदली है एक AFS ऑफिसर से और एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की तरफ, इस पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को थोड़ा सा आगे और म्यूजिकली आगे आगे लेके चलते हैं।
2: जी हजूर।

0: वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाडिया भील, और मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी माइक राणा जी से। हाँ तो माइक सर, इतनी व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ के बीच म्यूजिक आपकी जिंदगी में कैसे आया, इससे किस तरह से एंट्री मारी, मुझे तो ये बताइए आप।
1: ये बड़ी लंबी कहानी है जी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब मेरे फादर वहां थे, He brought home an accordion, Italian. Settimio Soprani was the name. Settimio Soprani.
0: Soprani, okay.
1: So my interest in music began during my engineering days. How? Mm-hmm. Because when a friend explained the relationship between musical notes and frequencies through a sonometer experiment which we used to do. Oh, in that experiment, in that experiment, a small rider is placed on a vibrating string. Mm-hmm. It is thrown off when the frequency of the string resonates with that of the tuning fork.
0: Okay. Okay.
1: So the science behind the music fascinated me. It mm-hmm. helped me finish the experiment in seconds mm-hmm. because I could straight away get to the resonating frequency, while the others took more than 30 minutes to carry it out. Mm-hmm. So, inspired by this connection between physics and melody, mm-hmm. I taught myself to play the accordion. What began as curiosity grew into a lifelong passion.
0: सर बहुत फैसिनेटिंग है, ये बड़ा मजा आ गया आपकी बात सुन के। आप मतलब जो प्रयोगशाला के अंदर जो वो हुआ उससे आपकी जिंदगी में आपके म्यूजिक आ गया एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो अब ये बताइए कि अकॉर्डियन जो है वो एक अनोखा वाद्य यंत्र है, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोग हिंदुस्तान में उसको बजाते भी नहीं। आपने बताया कि इटालियन ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया, तो इससे रिश्ता कैसे जुड़ा, फिर आप इससे आप अकॉर्डियन तक कैसे पहुंच गए?
1: हाँ जी, पहले सबसे पहले मैं वो गाना बताना चाहता हूँ जिसके जिसके बेसिस पे मैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट करता था। वो गाना था 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल।
0: जी बहुत।
1: वो गाना, उस गाने को हम फ्रीक्वेंसी पे मैच करते थे। खैर, द अकॉर्डियन इज टू बी प्लेड विद टू हैंड्स, बोथ द हैंड्स, मच लाइक ए पियानो। द राइट हैंड प्लेज द मेलोडी व्हाइल द लेफ्ट हैंड प्लेज द अकॉम्पनीमेंट व्हिच यूजेस कॉर्ड्स। इन इंडिया हाउएवर मेनी पीपल प्ले द अकॉर्डियन लाइक अ हारमोनियम, रिलाइंग एंटायरली ऑन द राइट हैंड साइड एंड सेल्डम using the left hand side.
0: Okay.
1: So I made a conscious effort to master the left hand technique. It adds depth and fullness to the music, making the performance far more melodious. The left hand plays chords. Chords, you know, it's a combination of three notes that harmonize with the melody played by the right hand.
0: Okay.
1: This interplay between melody and harmony is what gives the accordion its distinctive sound.
0: ओके तो ये जो वो तो ये क्या, मैं ऑफ द कफ सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे कि ये पियानो का और क्या हारमोनियम का एक तरह से मिक्स है या दोनों का एक वो है, कॉम्बिनेशन है, इज इट सो?
1: बस आप समझ सकते हैं कि राइट साइड पे आप हारमोनियम बजा रहे हैं और लेफ्ट साइड पे अकॉर्डियन बजा रहे हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रॉपर अकॉर्डियन बन जाता है। So, जब आप बजाते हैं अकॉर्डियन तो आपको लेफ्ट साइड का भी ध्यान रखना पड़ता है और राइट साइड का तो करना ही करना है, और फिर अकॉर्डियन को खींचना पड़ता है, खींचने के लिए जो आपको बैलेंस करना पड़ता है अपनी बॉडी का, वो भी काफी मुश्किल रहता है।
0: क्योंकि जो कुछ हमने राज कपूर को बजाते देखा है बचपन में या फिल्मों में देखा है, उसमें ये इसमें फिजिकल एफर्ट भी काफी लगता है उसको
1: करने के लिए।

0: हाँ इतने, और जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ती जा रही है मुझे थोड़ा उठाने में भी तकलीफ हो रही है। इसकी इसका वेट मेरा ख्याल 8-9 किलो के बराबर होता है।
1: हाँ होगा सर, होगा होगा, क्योंकि मैंने आपके थोड़े से वीडियो भी देखे, मुझे बड़ा वो लगता है कि आप खड़े खड़े सब कुछ बजाते हैं। अरे वाह। तो अच्छा, वाई सो मैनी पीपल इंडिया डू नॉट प्ले अकॉर्डियन? मेरे ख्याल में पहले तो फिल्मों में बजाया करते थे, अब नहीं दिखाई देते कुछ?
0: देखिए पहले फिल्मों में म्यूजिक डिफरेंट टाइप होता था। पहले म्यूजिक वाज इट यूज टू गो विद द स्टोरी, इट वाज यूज टू गो विद द इमोशंस, तो म्यूजिक भी डिफरेंट होता था। तो उसमें अकॉर्डियन का जो रोल है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से आता था, क्योंकि जो सारा बेस है गाने का वो लेफ्ट राइट से आता था, राइट साइड में तो सिर्फ गाना ही गाना बजता है। तो मैं आपको बताता हूं कि 2-3 गाने जो बहुत अच्छे मुझे
1: हाँ
0: अच्छे
1: मैं
0: लगते
1: वो
0: हैं।
1: बिल्कुल बताइए बताइए।
0: तो एक तो गाना है याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, पतिता पिक्चर का गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है।
1: जी
0: उसके बाद आपने अभी बोला था राज कपूर, हर दिल जो
1: हाँ,
0: प्यार करेगा, उनका
1: प्यार
0: गाना।
1: करे गाना गाया। हाँ जी
0: हाँ,
1: हाँ,
0: तो उसी उसी दिशा में जाते हुए एक गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, मेरा
1: इसको
0: नाम
1: सुना था
0: जोकर
1: मैंने।
0: पिक्चर का था।
1: मेरा जी,
0: ये बहुत सीरियस सा गाना है, और ये नॉट ओनली इंडियन सॉन्ग है, ये बाहर के कंट्रीज में बहुत जगह ये गाना बजता है। इसको बोलते
1: अच्छा
0: हैं वॉल्ट्स, वॉल्ट्स होता है ये।
1: वॉल्ट्स है क्या ये, जो
0: हाँ
1: अपना
0: ये,
1: डांस
0: हाँ
1: होता है,
0: वेनिस, हाँ हाँ
1: बॉलरूम
0: वेन,
1: डांस
0: हाँ
1: जो होता है? हाँ
0: करेक्ट, वेनिस वॉल्ट्स इसको बोलते हैं। तो जीना
1: ओके,
0: यहाँ मरना यहाँ, वही गाना है।
1: अच्छा,
0: और
1: हाँ
0: मेरे जो
1: ये
0: सारे गाने हैं वो यूट्यूब की मेरी चैनल है टैप द आर्ट्स पीपल कैटलॉग, उस पे सुन सकते हैं।
1: ओके
0: उसका
1: ओके,
0: लिंक मैं भेज दूंगा आपको।
1: जी, बहुत बढ़िया।
0: और
1: तो
0: आई
1: ये
0: रिकमेंड, जो जो जिन लोगों को म्यूजिक में शौक है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, मजा आ जाएगा। और ये वॉर्ड्स की जो धुन है वो पहले पिक्चरों में, जूली में भी आती थी, और 2-3 पिक्चरों में इस तरह के गाने हैं, मुझे याद है। तो वाह, ये
0: नहीं, गाने
1: वॉर्ड्स
0: तो
1: और
0: अनगिनत हैं,
1: हाँ
0: गाने तो अनगिनत हैं। मैं अगर मैं बहुत टाइम हो तो मैं सारे गाने आपको लिस्ट करके बता दूं।
1: चलिए कोई बात नहीं, अपने में समय सीमा है। तो अब तो ये हो गया कि म्यूजिक आपके लिए हॉबी भी है, और मेरे का हॉबी से ज्यादा तो पैशन हो गया है, या एक मेडिटेशन हो गया आपके लिए?
0: बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। म्यूजिक एक्चुअली प्योरली इट इज ए हॉबी फॉर मी, लेकिन ऐसा है कि आई ऑर्गेनाइज म्यूजिकल इवेंट्स, और मैंने कई इवेंट्स किए हैं, तो इट सीजेस टू बी ए हॉबी, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ ए पैशन। अनलेस आई इमर्स माई सेल्फ कंप्लीटली इन एवरी डिटेल, माई एसोसिएट्स फाइंड देमसेल्व ड्रॉन इन टू द सेम कमिटमेंट, हमारी को सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए पूरा पैशन लगा के करना पड़ता है।
1: चलिए, मैं इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन करना चाहता, लेकिन आपकी एक टीम है, इसका मतलब है आपके साथी लोग हैं जो आपको ये म्यूजिकल कंसर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं?
0: हाँ वो टीम है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टीम मेरी एक्सक्लूसिव टीम नहीं है, वो लोग बदलते रहते हैं।
1: मैं समझ
0: कभी
1: गया।
0: कोई आ गया, कभी किसी को दूसरा काम मिल गया तो वहां चला गया, इसलिए गड़बड़ हो जाती।
1: तो चलिए, इस अकॉर्डियन प्रेम और मोहब्बत के नाम पे हम एक गाना सुनते हैं, कोई बजाया हुआ अकॉर्डियन की धुन सुनेंगे, और फिर इसके बातचीत को आगे जारी रखेंगे।

0: हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं माइक राणा जी से। तो अब उस शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसने जिसके लिए आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने नाम कर दिया है, देवानंद। अब ये बताइए कि आखिर क्या था उस पर्सनैलिटी में जिसने आपको उनका एक तरह का आजीवन प्रशंसक बना दिया? ऐसी क्या खास बात है उस शख्सियत में?
1: अब वो देवानंद के बारे में क्या बोलें, इतनी हजारों उनके क्वालिटीज थी, बट व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट देवानंद वाज हिज परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन टू परसू हिज गोल्स विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स और द फाइनेंसेस। इन दैट रिस्पेक्ट आई फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिम इन मी। व्हेन एवर आई ऑर्गेनाइज अ म्यूजिकल इवेंट, माई फोकस इज नेवर ऑन द मनी। माई ओनली कंसर्न इज टू क्रिएट an event of the highest possible quality. So his dialogue delivery was another hallmark. It was distinctive, effortless, and impossible to ignore. Recently, as Shatrughan Sinha said on the Indian Idol show, many artists, they say he imitates Devanand's style, and some do it remarkably well, creating an illusion that Devanand himself is on the stage. But there is one specific quality that no one has ever been able to replicate, and that is his grace. Devanand's grace was superb. Devanand was undoubtedly handsome, but in my opinion, good looks fade away with time. His grace, charm, confidence, and effortless screen presence were timeless. Those qualities made him truly unforgettable.
0: Wonderful. नहीं, सही बात है। मैं भी देवानंद का फैन हूँ शुरू से, और ये जो ग्रेस वाला जो पॉइंट है, आप ये कहीं नहीं है। उसने कभी कभी स्क्रीन पे कभी कोई, मतलब दैट रिमाइंड्स मी, हम वैसे ही बात कर रहे हैं अब तक काफ, कि कभी कोई ऐसी हल्की हरकत नहीं की कभी।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: आपने भी उसकी सारी पिक्चर देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, तो ऐसी कि हल्की हरकत कभी नहीं की उसने, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, कभी नहीं की, कभी नहीं की,
0: बिल्कुल। ये बात है, ग्रेस था। तो आपने अब ये देवानंद बैंड वैगन जो आपने बुक लिखी है, अब इसमें जो आपका टाइटल है बैंड वैगन, ये भी अपने आप में एक अनोखा ही है। कुछ इस टाइटल के बारे में बताइए, और कैसे इसका दिमाग में कैसे आया आपके ये?
1: अच्छा, तो जो बैंड वैगन है ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब थी एनसाइक्लोपीडिया, उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं
0: जी।
1: तो बैंड वैगन क्या है, इट सेलिब्रेट्स द आइडिया दैट ग्रेट सक्सेस इज नेवर द अचीवमेंट ऑफ वन पर्सन, the result of efforts of many talented individuals. That is how a bandwagon is made. While the encyclopedia is a factual reference book, matlab kitni picture thi, kisne kaun se gaane the, bandwagon goes beyond facts and figures. It explores the creative spirit behind Navketan films and the people who made its success possible.
0: Okay.
1: For example, the book highlights the contribution of Devanand's brothers Chetan Anand and Vijay Anand, legendary music directors like S.D. Burman and R.D. Burman, outstanding lyricists and writers, progressive leading ladies, talented character actors, and many other creative minds who worked together to build the Navketan legacy.
0: Okay.
1: So Bandwagon is the story of teamwork, creativity, friendship, trust, and shared vision. It shows how the combined talent of many individuals transformed Navketan films into one of the most respected banners in Indian cinema, and how the collective effort became a worthy part of Devanand's legacy.
0: Okay, wonderful sir. So, अच्छा मैं आप थोड़ा सा फिर एक आपको एक देवानंद की जिंदगी में ले चलता हूं, और बहुत ही ऑफ द कफ सवाल है। उसकी जो लीडिंग लेडीज थी, खासतौर से सुरैया के बारे में कुछ इसमें है क्या?
1: बहुत कुछ लिखा है सुरैया के बारे में, तो चार पांच पन्ने। सुरैया तो ऐसी चीज थी कि मतलब वो तो देवानंद तो जब कुछ भी नहीं था तो सुरैया
0: हाँ
1: तो फिल्म स्टार बहुत बड़ी थी उसको,
0: बहुत
1: जब वो
0: बड़ी।
1: घर से निकलती थी तो बाहर उसे लाइन लगी होती थी लोगों की, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन के घर के सामने लाइन लगती है, उसी तरह सुरैया के घर के लाइन सामने लाइन लगती थी।
0: डॉक्टर विद्या
1: हाँ
0: या विद्या या ऐसी कौन सी पिक्चर थी
1: हाँ बहुत
0: या
1: अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी
0: बहुत।
1: पिक्चर थी।
0: तो अच्छा, जब आपने रिसर्च की इसके बारे में, तो कोई ऐसी खास बात देवानंद की लाइफ से निकल के तो नहीं आई जो आपको भी नहीं पता थी देवानंद के बारे में, जब आपने पूरा लोगों से बातचीत की होगी या जो भी रिसर्च की होगी?
1: नहीं, इसने कई बातें की, लेकिन एक मुझे सबसे सरप्राइजिंग एस्पेक्ट उसका ये लगा कि ही हैड द एबिलिटी टू रिमेन यंग इन स्पिरिट थ्रू आउट हिज लाइफ व्हाइल मेनी स्टार्स रिलाइड ऑन देयर पास्ट ग्लोरी, मतलब पहले मैंने क्या कर गया, लेकिन ही लुक्ड अहेड एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज, न्यू फेसेस एंड न्यू स्टाइल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। इक्वली रिमार्केबल वॉज हिज ऑप्टिमिज्म। Even when some of his later films failed commercially, he never lost his belief in the next project. He viewed every setback as a stepping stone rather than a defeat.
0: चलिए, तो आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, जिसे आजकल के यंगस्टर्स हैं उन्होंने देवान की कोई फिल्म अगर नहीं देखी हो मान लो, तो आप कौन सी तीन फिल्में उनको कहेंगे कि ये देख लो यार, आप मजा आ जाएगा आपको?
1: अब ये तो ऐसी बात है कि अगर एक औरत के 15 बच्चे हैं तो पूछे कौन सा बच्चा आपका सबसे अच्छा है तो वो बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काफी जोर लगा के हम सोचते हैं। तो सबसे पहली फिल्म तो जो सारी दुनिया में मशहूर है वो गाइड है, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पिक्चर थी वो। एक पिक्चर थी काला पानी, वो उसमें उसकी एक्टिंग बहुत ड्रामेटिक थी। उसके बाद एक पिक्चर आई थी ज्वेल थीफ, द अल्टीमेट स्टाइलिश थ्रिलर, मतलब इसमें मतलब जो जो आदमी थ्रिलर देखते हैं उनके लिए पिक्चर है। फिर एक पिक्चर आई थी जॉनी मेरा नाम, हिज बिगेस्ट कमर्शियल एंटरटेनर, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी ये पिक्चर। फिर एक बड़ी रोमांटिक सी पिक्चर थी हम दोनों, ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रोमांस म्यूजिक पेट्रियोटिज्म एंड परफॉर्मेंस। लेकिन इनके साथ साथ दो तीन पिक्चरें और भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक थी तीन देवियां और एक थी फंटूश। तीन देवियां के बारे में तो काफी लोग लिखते हैं कि ही वाज तीन देवियां शो कास्ट, देवानंद एफर्टलेस चार्म अपोजिट थ्री लीडिंग लेडीज। लेकिन फंटूश जो थी, फंटूश ऐसी पिक्चर थी जो जब ये यंग था तब इसने बनाई थी, एंड ही वाज विलिंग टू बिकम ए मैड मैन। He became a madman to show his how a mad person can behave. ये फंटूश पिक्चर की कहानी है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मुझे याद है फंटूश, मैंने भी देखी है। आए मेरी टोपी पलट के आज, इसमें गाना था
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: तो चलिए इसी है मेरी टोपी पलट के आज पे एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ सर, वेलकम बैक। तो अब मैं आपसे बस एक छोटा सा ही सवाल करता हूं, आपकी दूसरी जो बुक है देवानंद एनसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में। मैं आपसे बस एक छोटा सा ही सवाल करता हूं, आपकी दूसरी जो बुक है देवानंद एनसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप ही बताइए कि इसमें क्या क्या कवरेज है और क्या खास बात है इस बुक के बारे में।
1: इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ऑथेंटिसिटी।

0: कि दिस बुक इज इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स एक्यूरेसी. वो कैसे हुई? ड्रॉइंग ऑन माई नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड माई कीन लिसनिंग स्किल्स, आई यूज ए माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड डेटा बेस प्रोग्राम कॉल्ड स्ट्रिंग्स, STRINGS, स्ट्रिंग्स, टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन. इन द प्रोसेस आई वेरीफाइड एंड करेक्टेड मेनी इनकरेक्ट क्रेडिट्स एंड कंफ्लिक्टिंग डेट्स ऑफन फाउंड ऑन विकीपीडिया एंड यूट्यूब रिकॉर्ड्स. द एनसाइक्लोपीडिया कवर्स 129 फिल्म्स फ्रॉम देवानंद डेब्यू इन हम एक हैं वॉज हिज फर्स्ट पिक्चर एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल पिक्चर दिव्या भारती के बारे में जो उसने चार्जशीट वगैरह बनाई थी तब तक. इट ऑल्सो डॉक्यूमेंट मोर देन 500 मेमोरेबल सॉन्ग्स फ्रॉम हिज करियर. और मजेदार बात, एनसाइक्लोपीडिया इज लाइक ए ट्रू एनसाइक्लोपीडिया. एवरी फिल्म एंट्री, अगर दो दो पन्ने या तीन पन्ने का वो पेज है, उसमें कास्ट है, क्रू है, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन है, सॉन्ग टाइटल्स हैं, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी रही, नोट्स नवकेतन फिल्म के थे. मोर देन जस्ट ए फिल्मोग्राफी, दिस बुक इज अ डिपेंडेबल रिकॉर्ड ऑफ देवानंद एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. अगर आपने ये बुक कभी पढ़ी, डू नॉट इग्नोर और बाईपास द ट्रिविया विच कंसिस्ट ऑफ मेनी एनेक्डोट्स कनेक्टेड एवरी फिल्म इन द एनसाइक्लोपीडिया. You will surely like it.
1: Okay, wonderful. तो कोई फिर मैं ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, कोई कोई एनिक्डोट देवानंद के बारे में आप सुनाना चाहें उस बुक से या वैसे ही कोई?
0: नहीं, वो तो बड़ी लंबी लंबी एनिक्डोट्स हैं, पर फॉर एग्जाम्पल मुझे इमिडिएटली एक याद आ रहा है कि जैसे कई गाने हैं SD बर्मन के बजाए हुए बजाए बनवाए हुए, लेकिन असल में वो गाने उसकी वाइफ ने बनाए हैं.
1: ओके, अच्छा.
0: हाँ, ये एक बड़ी कमाल की चीज है जो मैंने नोटिस की थी. और भी बहुत हजारों चीजें हैं कि देवानंद कहाँ था, उसने क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ जो लोग थे उनके साथ क्या क्या, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी. बहुत ज्यादा उसमें कहानियां.
1: वेरी गुड. तो चलिए, SD बर्मन साहब त्रिपुरा के शायद रॉयल फैमिली से थे और उनकी पत्नी भी बहुत संगीतकार थी, ये आपने आज हमें बता दिया. तो इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आपके जिंदगी के एक दूसरे रुख की तरफ बातचीत करते हैं.
0: थैंक यू सर, थैंक यू.

हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं माइक राणा जी से, जो देवानंद साहब के, सदाबहार देवानंद साहब के एक खास प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं, और उनपे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं। तो आपने देवानंद के ऊपर

0: बुक्स लिखी है। अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताइए कि इसके अलावा जो आपने बुक्स लिखी है कुछ उनके बारे में हल्का सा हमें बताइए, फिर हम आपकी जिंदगी के एक दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में भी बात करना चाहेंगे।
1: मैंने जो दो तीन किताबें मैंने आपको बताया, एक डिसेप्शन, एक देवानंद की बैंड वैगन और देवानंद का एनसाइक्लोपीडिया।
0: जी
1: इन एडिशन टू दोज बुक्स आई एम नाउ कमिंग आउट विद ए मिस्ट्री सीरीज, ड्रेक क्रॉस। ड्रेक इज ए जेंटलमैन, क्रॉस इज ए लेडी। ड्रेक एंड
0: ओके
1: क्रॉस की मिस्ट्रीज, द फर्स्ट फर्स्ट बुक इज द ओकवुड ओकवुड मैनर कॉन्स्पिरेसीज। ये
0: ओके
1: जैसे आएगा था किसी और शर्लक होम्स में एक्ट वो होते थे, डिटेक्टिव होते थे, उसी टाइप की किताब है। एंड आई वॉन्ट टू टू टेक अवे द द क्रेडिट ऑफ शर्लक होम्स एंड अगाथा क्रिस्टी, हरक्यूल पायरो, यूजिंग दिस बुक। एक किताब मैंने लिखी है द क्राउनिंग सिंड्रोम, वो कोरोना वायरस के टाइम जब हुआ था तो किताब लिखी थी। लोग मुझसे पूछते थे आप क्या मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए हो, मैंने कहा नहीं जी, मैंने मेडिकल से तो नहीं पढ़ा, पर जो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी बायोलॉजी के बारे में सब कुछ था। फिर एक कहानी थी मैंने लिखी द हिमालयन स्वामी, इट्स ए मिस्ट्री इन हिमालयस। इट्स हिमालय में एक स्वामी था, ही वॉज इन कंट्रोल ऑफ स्पिरिट्स। तो उसने स्पिरिट्स का एक स्टोर हाउस बना रखा था, जब भी कहीं भेजना था हाँ वो स्पिरिट्स को भेजता था और स्पिरिट्स वहां जाके काम करके आ जाती थी। जैसे चेचनिया में लड़ाई हुई तो उसने वहां से बंदे भेजे, स्पिरिट्स को भेजा तो वहां पे उनको हरा के आए। फिर
0: बड़ा
1: दो
0: इंटरेस्टिंग
1: तीन
0: लग रहा है।
1: हाँ, बहुत अच्छी किताब है। द सिटीजन मैनिफेस्टो एंड द वंडरफुल वर्ल्ड, दीज आर नॉर्मल पोलिटिकल बुक्स कि आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज है पॉलिटिक्स, उस टाइप की किताबें हैं। तो
0: लेकिन आपको ये शार्लक होम वाटसन की जोड़ी और इस तरह से अगाथा क्रिस्टी के जो हरकुल पोरिया है वो उसकी जोड़ी, इसको लिख के आपने तो एक तरह का ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिसको हम कहते हैं वो आप हमारी जिंदगी में ले आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तो बहुत पहले अर्नेस्ट स्टेनले गार्डनर और इनकी बुक्स पढ़ा करते थे हम, पेरी मेसन और ये सारा पढ़ते थे। उसमें भी एक लेफ्टिनेंट ड्रेक होता था, मुझे पूरा नाम भी याद नहीं है उसका।
1: हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये जो पहली किताब है द ओकवुड मैनर कॉन्स्पिरेसी, जो ओकवुड मैनर है, इट इज लाइक, अगर आपने पढ़ी हो किताब रिबेका, रिबेका
0: पढ़ी है
1: में
0: सर। हाँ वो
1: उसमें
0: उसकी है,
1: हाँ,
0: वो बहुत वो मिस्टीरियस सी कहानी है, मुझे याद है।
1: तो
0: डेफिनेटली
1: उसकी
0: मॉरियर की है, डेफिनेटली मॉरियर की है
1: हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट
0: सर।
1: करेक्ट।
0: डेफिनेटली मॉरियर
1: तो
0: की,
1: जो
0: राइट।
1: उसमें जो जो उसका पैलेस है मैंडरले पैलेस, उस पैलेस को मैंने ओकवुड मैनर बनाया,
0: हाँ
1: उस
0: मैं समझ
1: टाइप
0: गया, मैनर नाम आते ही मैं समझ गया कुछ इसमें मिस्ट्री
1: का।
0: है।
1: हाँ काफी
0: बिल्कुल। तो चलिए अब एक गाने के शॉर्ट ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर हम मैडम ज्योत्सना राणा जी के बारे में बात करना चाहेंगे।

0: बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका इसका जवाब देते मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हमने
1: जी
0: जो हमारी जो शादी हुई थी, ये हम मैं चंडीगढ़ में था और उनकी मेरी वाइफ ही चंडीगढ़ में एक सेक्रेटरी साहब थे हरियाणा गवर्नमेंट के, उनकी बेटी है।
1: जी
0: और हमने एक दूसरे से जब मिला है तो हमें पता लगा एक दूसरे की खासियत क्या थी, वो अपना म्यूजिक और मेरा अकॉर्डियन। तो मुझे ये ध्यान में आया कि एयरफोर्स में हम अकॉर्डियन बजाते हैं, तो अगर कोई मेरे साथ गाने वाला भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो
1: जी
0: इसलिए हमने अकॉर्डियन को अकॉर्डियन के साथ गाने का कॉम्बिनेशन बनाया। सबसे पहला हमने किया काम, कसौली गए थे, कसौली में पेड़ों पे चढ़ के अकॉर्डियन बजाया, पेड़ों पर चढ़
1: अच्छा
0: के और हमारी मैडम वहां आ गए।
1: अच्छा
0: तो शी इज एक्चुअली ट्रेंड म्यूजिशियन, वो उनका उन्होंने एमटेक, मतलब एमटेक तो नहीं, एमए म्यूजिक का किया हुआ है।
1: म्यूजिक के। हाँ
0: शी
1: हाँ
0: हैज बिन टीचिंग इन द कॉलेज एज ए
1: ओके
0: प्रोफेसर,
1: हाँ
0: एंड आफ्टर शी रिटायर्ड शी इज नाउ टेकिंग क्लासेस फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक। और हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी उनका काम है काफी, कम से कम दो तीन गाने उनके जरूर होते हैं। और लोगों की हमेशा फरमाइश आती है कि वो गाना सुनाइए, अभी तो मैं जवान हूं, तो वो ये कहती हैं अभी हमें गागा अभी हम गागा के ही बताते हैं हम जवान हैं, क्योंकि अब वैसे तो उम्र चली गई हमारी तो ऐसा ही है।
1: आप 79 ईयर्स की एज में क्या गजब काम कर रहे हैं सर। और ये मलिका पुखराज का गाना अगर वो गाती है तो मजा ही आ जाएगा सुनने में उसका।
0: बहुत,
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो अच्छा ये बताइए, जब घर में म्यूजिक की महफिल सजाते हैं तो पहले अकॉर्डियन पहले बजाते हैं या पहले ज्योत्सना जी की आवाज आती है, और किस तरह के गीत उनको बहुत ज्यादा पसंद है? गजल वगैरह गाती हैं, क्या गाती हैं?
0: हाँ वो गजल्स गाती हैं, और हम जब जब भी कोई बैठक करते हैं, उसको हम बैठक कहते हैं, उसमें कम 40-50 लोग होते हैं, उसमें कम से कम एक दो और सिंगर्स भी होते हैं जो भी बहुत अच्छे गाने वाले हैं, कई
1: अच्छा
0: बार तो उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं। और अकॉर्डियन का नंबर मुश्किल से बाद में ही आता है, बाद में चार पांच गाने बोलते हैं अकॉर्डियन पे बजाओ, फिर कभी कोई डांस भी कर लेते हैं, कभी कोई उसके साथ गाते भी हैं, तो मजा बहुत आता है। लेकिन ये तो दौर चलता ही रहता है दिन जिंदगी का।
1: बहुत बड़ी बात है, म्यूजिक जिंदगी है। तो ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, तो हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और कोशिश करते हैं अगर ज्योत्सना जी का कोई गाना हमें मिल जाएगा तो हम वही बजाएंगे। यहाँ रुक जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात।

0: हाँ, वेलकम बैक टू माइक सर। तो अब ये देखिए कि आप 79 इयर्स के इस दौर में भी अकॉर्डियन भी बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा सवाल इससे पहले आपसे पूछा, तो अभी बताइए, आपके पास वही इटालियन में अकॉर्डियन अभी चल रहा है या बदल चुके हैं उसको?
1: हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेरा तीसरा अकॉर्डियन है। पहला अकॉर्डियन मैंने रिपेयर के लिए दिया था बेंगलोर में, तो जिसको रिपेयर के लिए दिया उसको वो मर गया। डायस डायस उसका नाम था, डायस डायस कितने दुकान थी, वो दुकान ही बंद हो गई, तो मेरा अकॉर्डियन गायब हो गया। फिर मैं गया कलकत्ता, कलकत्ता में मैंने एक नया अकॉर्डियन खरीदा। मैंने कहा चलो दूसरा अकॉर्डियन लेते हैं, तो उस अकॉर्डियन को बजाते बजाते मैं शुरू हो गया, लेकिन वो भी उसको भी हम कुछ कर नहीं पाए अच्छी तरह से। फिर ये तीसरा अकॉर्डियन मुझे जब मैं रशिया गया था, तो मुझे वहां रशिया में वहां गिफ्ट मिला था। दे वर सो हैप्पी विद माई अकॉर्डियन प्लेइंग कि उन्होंने मुझे अकॉर्डियन गिफ्ट दिया था। ये वेल्ट माइस्टर एक जर्मन कंपनी है, उसका अकॉर्डियन है जो आजकल मैं बजाता हूँ।
0: अच्छा, वैसे ही एक और सवाल, जनरली अकॉर्डियन अब इस जमाने में सबसे अच्छे किस कंट्री में बनते हैं?
1: जर्मनी एंड
0: जर्मनी,
1: इटली।
0: इटली। ओके, हाँ, इटली में तो जब भी कोई उनकी पुरानी पिक्चर देखते हैं तो अकॉर्डियन बजाते दिख जाते हैं वो लोग, राइट?
1: फर्क ये है कि जर्मन जो है अकॉर्डियन, वो ज्यादातर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसमें ज्यादा हैं, और
0: ओके।
1: जो जो जो जो इटालियन है उसमें मेलेडी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं।
0: तो चलिए सर, एक कोई ब्रीफ छोटा सा संदेश आजकल के यंगस्टर्स के लिए आप देना चाहें।
1: भाई हम तो यही कहेंगे जो जो देवानंद कहता था, अपने गोल के तरफ जाइए और बड़ी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से काम कीजिए। ये अब भूल जाइए कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो किया उसके आगे उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाइए।
0: क्या बात है। दोस्तों, माइक सर, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि जीवन की ऊंचाइयां केवल पदों और पुरस्कारों से नहीं नापी जाती, बल्कि उन सपनों से नापी जाती हैं जिन्हें इंसान उम्र भर जीता रहता है। आपकी यह
1: बिल्कुल
0: जर्नी हमें विश्वास दिलाती है कि अनुशासन, संवेदनशीलता एक साथ चल सकते हैं, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और आपने देवानंद जी को केवल चाहा नहीं है, बल्कि उनके सिनेमा, उनके व्यक्तित्व, उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक दायित्व निभाया है। रेडियो SN परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपने अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, हम हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं इसी तरह निरंतर सृजनशीलता और दीर्घायु की आपकी हम कामना करते हैं।
1: थैंक यू सर आलोक जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टेकिंग द टाइम टू मीट मी टुडे। आई सिंसियरली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई प्रोफेशन एंड लर्न मोर अबाउट एक्साइटिंग वर्क बींग डन एट योर एंड। आई एंजॉयड लर्निंग अबाउट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद माई रोल एंड करियर, एंड आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू योर टीम। आई अप्रिशिएट द इनसाइट्स you shared and the welcoming atmosphere that you created for the interview.
0: थैंक यू सर, और फिर मिलेंगे हम किसी नई प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ किसी और दिन किसी नए प्रोग्राम में। नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक और बात बताता हूं, इधर उधर की लेकिन बहुत ही जोश भर देने वाली। जापान ने पहली बार सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। स्वीडन में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान ने अपने दो एथलीट याहिको मिशिमा और शिजो कानाकुरी को भेजा था, लेकिन उनके लिए जापान से स्वीडन तक का सफर आसान नहीं था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 18 दिन लगे। वो सबसे पहले पानी के जहाज से रूस पहुंचे, इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा का रेल यात्रा सफर उन्होंने किया, लिहाजा दोनों ही खिलाड़ियों को तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता के दिन शिजो कानाकुरी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब जोर लगाकर मैराथन की शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश हो गए। मैराथन देख रहे कुछ स्थानीय लोग उन्हें अपने घर ले गए, जहां अगली सुबह उन्हें होश आया। शिजो अपने प्रदर्शन से बहुत दुखी थे। दुख से डूबे हुए वो बगैर स्टॉकहोम के ओलंपिक अधिकारियों को बताए जापान वापस लौट गए, इसलिए एसोसिएशन ने उनके नाम के आगे मिसिंग यानी कि गुमशुदा लिख दिया। स्वीडन नेशनल ओलंपिक खेलों की किताबों में वो कई सालों तक गुमशुदा रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने साल 1920 और 1924 में जो ओलंपिक्स गेम आयोजित किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। साल 1967 में स्वीडिश नेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने शिजो कानाकुरी से स्टॉकहोम वापस आकर अपनी अधूरी मैराथन पूरी करने का आग्रह किया। है ना आश्चर्यजनक बात दोस्तों, कौन याद रखता है इतने सालों तक कि उन्होंने अपनी मैराथन पूरी नहीं की थी, वो मिसिंग थे। 75 साल के उम्र में वो वापस आए और अपनी अधूरी रेस पूरी की। मैराथन पूरी करने का समय था 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकेंड्स। ये इतिहास की सबसे लंबी मैराथन दौड़ थी दोस्तों। है ना आश्चर्यजनक बात, लेकिन मैराथन दौड़ को पूरा करने का जोश लगातार कायम रहा खिलाड़ी के अंदर भी, और जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित किया था उन अधिकारियों में भी। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

आइए दोस्तों, आपको आज बताते हैं मोहताज अजय झा जी के बारे में। जब चारों तरफ अपनों की लाशें बिखरी हों, अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ खानदान का कोई बुजुर्ग मलबे के नीचे से बचा लेने के लिए पुकार रहा हो और संज्ञा शून्य नन्नी भांजी या भतीजी एक सवाल अपनी हिचकी में दबाए आपके हाथों में दम तोड़ देती हो कि मैंने तो दुनिया अभी

एक ही नहीं थी तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी दोस्तों? इससे ज्यादा त्रासद मंजर कोई दूसरा नहीं हो सकता, मगर युद्धग्रस्त इलाकों के बाशिंदों की नियति ऐसे दृश्यों से उनकी मुठभेड़ कराती ही रहती है। गजब यह है कि इस कोहराम के बीच भी लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे हालात में एक पत्रकार किस साहस से अपने फर्ज को अंजाम देता है, फिलिस्तीनी पत्रकार मोटाज अजैजा इसकी मिसाल हैं। शांत इलाकों के नौजवान जिस उम्र में रोमानी दुनिया के हसीन ख्वाब बुना करते हैं, मोटाज ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिलिस्तीन की जमींदोज हुई बस्तियों और बमबारी के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरों से एक तारीखी दस्तावेज तैयार किया है। इस काम के लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही है और अब प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने 2024 की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में उनको शुमार किया है। गाजा पट्टी के दीर अल बलाह शरणार्थी शिविर में नवंबर 1999 में मोटाज पैदा हुए। जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ तनाव ही पसरा पाया। सुकून और बेफिक्री से शायद फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों का कम ही साबका पड़ता है। मोटाज जब 6 साल के थे, अपनी बस्ती की सड़कों पर उन्होंने इजरायली टैंकों को दौड़ते देखा। जब वो 8 साल के हुए तो गाजा पट्टी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए फिलिस्तीन के हमास और फतेह गुटों के लड़ाकों को एक दूसरे का खून बहाते देखा, और उसके बाद तो हर दूसरे साल इसराइल हमास बकायदी से लड़ते भिड़ते ही रहे। इन भिड़ंतों ने ही वहां के बच्चों के भीतर खौफ को खत्म कर दिया। इंसान होने की सिफत बस इतनी ही बची रही कि तनाव और हिंसा के बीच भी इन इलाकों के शिक्षकों ने अपना धर्म निभाना नहीं छोड़ा और ना ही डॉक्टरों ने इलाज करने की अपनी सेवा को छोड़ा। इसके कारण मोटाज जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दाखिला लिया। यहां पढ़ते हुए मोटाज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी से जुड़ गए, ताकि रेड क्रॉस के जरिए वो बेबस लोगों की कुछ मदद कर सकें। साल 2018 की बात है। गाजा इसराइल सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते देखते लड़ाई में बदल दिया गया। मोटाज तब 19 साल के रहे होंगे। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बैनर तले राहत कार्य करते समय एक इसराइली स्नाइपर ने उनकी जांग को गोलियों से जख्मी कर दिया। मोटाज का जख्म कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन हिंसा जारी रही। इस दारुण अनुभव को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं और इस तरह उनके अंदर एक पत्रकार पैदा हुआ। साल 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद मोटाज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी से जुड़ गए। बहुत ही जल्द उनका नया ठिकाना एक अमेरिकी संगठन बना, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की खातिर संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करता था। मोटाज बहुत खुश थे। उन्हें इस संगठन में फोटो और वीडियो प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। वो अपने गाजा के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिरकार वो उनका घर है। वहां की जिंदगी के विविध रूपों और दुश्वारियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। मगर दुर्योग से वो वहशी सुबह जल्द ही आ गई, जिसके प्रतिशोध ने गाजा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल पर अपने बर्बर हमले से हमास ने असंख्य दुखों को न्योता दे दिया। हमास ने जब इसराइल पर रॉकेट दागे, तब मोटाज को यह लग रहा था कि इस बार जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। कुछ घंटों बाद ही इसराइली हमले शुरू हो गए, भयानक वेग और बर्बरता को समेटे हुए। मोटाज के कैमरे ने उनको फिल्माना शुरू किया। आम फिलिस्तीनी की पीड़ा, बेबसी और युद्ध की विडंबना उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। मगर 12 अक्टूबर को उन्होंने जो वीडियो और तस्वीरें डाली, वो लाखों लोगों को मर्माहत कर गई। इसराइल के हवाई हमले में उनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। अगले 107 दिनों तक

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल है। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है, कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था, कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया, सामने रेलवे स्टेशन था, यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी। देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की, उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है। वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा। देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है।

आइए दोस्तों एक और काम की बात बताता हूं। एक मंत्र है, एक जुगाड़ है, एक योजना है, एक युक्ति है, अपना लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम सभी अपनी जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाना चाहते हैं ना, हर वक्त हर चीज में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अपने आप आएंगी। अब देखिए कितना आसान तरीका है ना ये। तो जिंदगी में ज्यादा पाने का आसान तरीका है धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना। आदत डालिए दोस्तों, जिससे भी मिलिए, जहां पर भी मौका मिले, शुक्रिया अदा करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। शुक्रिया करते चलिए, जिंदगी में ज्यादा ज्यादा ज्यादा पाते चलिए।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाख में बल पा

0: दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुई, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

देवरन जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

कटारी।

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: मस्ती के सिन है यही दिन है, मस्ती के सिन है किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा।
1: ओ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, तो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जाए।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
1: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से।
2: एक शजर की तरह रह गुजर में ठहरा हूँ मैं, एक शजर की तरह रह गुजर में ठहरा हूँ। थकन उतार के तू किस तरफ रवाना हुआ, ये हवा सारे चिरागों को उड़ा ले जाएगी, ये हवा सारे चिरागों को उड़ा ले जाएगी। रात ढलने तक यहाँ सब कुछ धुआं हो जाएगा। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ। मैं हूं आपकी हमनवर, आपकी रेडियो दोस्त भारती रॉय। दोस्तों, शो अल्फाज से एहसास तक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका एक पैर तो लेबोरेटरी के माइक्रोस्कोप पर रहा, तो दूसरा पैर कथक के घुंघरुओं और संगीत के सुरों पर। कैंसर बायोलॉजी जैसे बहुत गंभीर विषयों पर रिसर्च करने वाले मशहूर बायोटेक्नोलॉजिस्ट और कालीकट यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के मनीष जी आज हमारे मेहमान हैं। गाजियाबाद की गलियों से शुरू हुआ उनका बचपन, केरल का खूबसूरत माहौल, IISc बेंगलोर की रिसर्च और दिल में बसती पेंटिंग व संगीत की दुनिया। मनीष जी की जिंदगी किसी दिलचस्प किताब जैसी है जिसके पन्ने आज हम आपके साथ मिलकर धीरे धीरे खोलेंगे। तो आइए मनीष जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है, आइए तशरीफ लाइए।
3: धन्यवाद धन्यवाद आरती जी, बहुत खुशी हुई आपसे जुड़ने की, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए मैं सभी श्रोताओं को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। बताइए।
2: बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, हम दोनों दोस्त हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं है मनीष। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, पहला मेरा जो सवाल है वो ये है मनीष कि आपका जन्म और बचपन जो है आपने बताया था कि यूपी के गाजियाबाद में बीता, जहाँ आपके फादर एक इंजीनियर थे और आपकी शुरुआती स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल में हुई, राइट? फिर अचानक 11th के बाद आपकी पूरी फैमिली केरल शिफ्ट हो गई। फिर आपने बताया था कि ना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्थ इंडिया के माहौल से निकलकर जब आप साउथ इंडिया के उस नए कल्चर और माहौल में गए तो खुद को एडजस्ट करने का, मतलब आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको कोई मुश्किल हुई, क्या हुआ, आप वो हमारे साथ शेयर करिए हमारे दोस्तों के साथ।
3: जरूर जरूर आरती जी, ऐसा क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पर मदर टंग तो मेरी हिंदी हो गई थी, घर में भी हम हिंदी बोल लिया करते थे, और जो हमारी केरल की भाषा जो है मलयालम, वो माता जी और पिताजी से सुन के थोड़ी कुछ आती थी, लेकिन जब केरल शिफ्ट हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉलेज जाना पड़ता था तो बसें पकड़नी पड़ती थी, तो उसमें हिंदी में तो नहीं मलयालम में लिखा हुआ होता था तो टाइटल तो वो मुझे पढ़ना भी नहीं आता था और मुश्किल हो गई मुझे। हाँ, फिर मैंने घर में बैठ के मम्मी जी थी और मेरी कजिन सिस्टर थी, उन्होंने मेरे को मतलब मलयालम के अक्षर सिखाए, मतलब एक दो महीने में मैंने मलयालम पढ़ना भी सीख लिया और लिखना भी सीख लिया, थोड़ी गलतियां तो होती थी। तो ये पहला जो ये क्या कहते हैं, एक एक्सपीरियंस था अपनी ही मदर टंग को सीखना, घर में बैठ कर सीखना, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
2: पर आपने बहुत जल्दी सीख लिया, लाइक दो महीने में मलयालम, तो कहते हैं ना कि इसके अल्फाबेट्स भी ज्यादा हैं बाकी हिंदी के ग्रामर से और इंग्लिश के 26 हैं, तो जैसे मलयालम में कहते हैं 46 होते हैं,
3: 56
2: गुड गॉड,
3: बहुत ज्यादा है, बहुत
2: दो महीने में सीख ली, क्या जीनियस है।
3: दो महीने में नहीं, ऐसा है था कि क्रैश कोर्स की तरह मेरी जो कजिन थी उन्होंने सिखाया मुझे। हाँ। और मैंने थोड़ा कुछ सीख भी लिया, मतलब इतना सीख लिया कि बस के वो टाइटल्स पढ़ लूं। हाँ, ये बस
2: कि कहीं बरेली जाते जाते झुमरी तलैया तो नहीं पहुंच जाएंगे इतना तो आपने सीख लिया, बहुत खूब बहुत खूब, वाह मनीष जी, उत्तर से दक्षिण का ये सफर आपके मतलब पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी और आपकी भाषा की मिठास सब कुछ घोल गया, जिसने आपको हर माहौल में ढलने का हुनर सिखा दिया। मतलब अब मनीष अगर यहाँ गाजियाबाद और वहाँ का कल्चर कितना डिफरेंट है, और आपका बचपन ही वहाँ से बीता और फिर आप वहाँ गए, इंटायरली डिफरेंट कल्चर साउथ का, मगर फिर भी आप उसमें अपने आप को आपने ढाला, तो आप में दोनों चीजें आ गई ना, यहाँ की भी मिठास आ गई और वहाँ की भी आ गई, तो
3: ये तो है।
2: अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि आपका, आपने बताया कि कालीकट यूनिवर्सिटी के उस पीएचडी रिसर्च लैब से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक पहलू भी आपकी लाइफ का हिस्सा है, जहाँ आपको अपने रिसर्च गाइड के अंडर में ही अपनी सोलमेट डॉक्टर जयश्री जी भी मिल गई। रिसर्च और पढ़ाई की उस बिजी लैब में ये तो बताओ मनीष, ये दोस्ती और प्यार का रिश्ता कैसे शुरू हो गया?
3: ये तो भाई इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मतलब वो मेरी जूनियर थी और धीरे धीरे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, वो बिल्कुल चुप रहा करती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बहुत बहुत रिजर्व मिजाज की थी, और मुझे मतलब अपनी तरफ से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि दोस्ती बढ़ानी पड़ी, और वो मुझे हेल्प भी करती थी एक्सपेरिमेंट्स में, और मैं भी उनको काफी रिसर्च के आर्टिकल समझा दिया करता था, तो 3-4 साल जरूर लगे मुझे। और फिर मन कहता है ना कि जब पता चल जाता है कि हाँ यही है बंदा, यही है बंदी जो आपके लिए बनी है ऊपर से है, तो जब ये एहसास हुआ तो हमने एक दिन उनको प्रपोज कर दिया, तो वो कहने लगी आपने तो बड़ी देरी कर दी, हम तो कब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप प्रपोज करोगे, और वो तो इतनी मतलब वो शर्मीली टाइप की है, वो तो खुद कभी ना कर पाती, तो फिर मैंने तो मैंने पता नहीं लगा इस दिन तो मैंने कहा
2: आप तो करती थी ना वो भी आपसे,
3: नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो तो करती थी, लेकिन वो ना इतनी रिजर्व है कि वो बता भी नहीं सकती थी, लेकिन

0: आंखों में थोड़ा झलकता तो जरूर था। तो
1: हाँ
0: मैंने एक दिन बाद में कह दिया कि अच्छा या तो मैं आपसे शादी करूँ या फिर आप मुझसे शादी कीजिए, एक एक ये कुछ होना जरूर चाहिए ये। तो वो हंसने लगी और फिर उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कभी ना जरूर इसको बात को बढ़ाएंगे, किसी ना किसी पर मुझे इत्तला जरूर देंगे। तो ये हो गया, मतलब पता नहीं नेचुरली।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। साइंस लैब में जन्मी आपकी ये मोहब्बत और एक साथ IISc तक का ये सफर, ऐसे लगता है जैसे किसी सुंदर फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो, ठीक है ना? तो आइए दोस्तों इसी खूबसूरत एहसास और मोहब्बत की ताजगी के साथ सुनते हैं मनीष की अपनी आवाज में गाई हुई ये गजल। तो है कौन सी, पंकज उदास जी की आपने गजल ये गाई है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। चलो गजल थोड़ी सीरियस है, कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों फिर सुनते हैं मनीष की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: बहुत कमाल की गजल थी मनीष, बहुत सुंदर गाई आपने, मजा आ गया, हमारे दोस्तों को भी बहुत पसंद आई होगी। ये बताइए मनीष जी के IISc बेंगलोर में रिसर्च के बाद आपने कालीकट यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपने अपनी सर्विस दी, राइट? तो आपके मेन फोकस जो थे वो कैंसर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रहा आपका, जहां इतनी गंभीर इतनी सीरियस बीमारी पर दिन रात रिसर्च चल रही हो, वहां पर मेंटली खुद को शांत रखना और पॉजिटिव बने रहना, मतलब कैसे आप ये सब कुछ कर पाते थे?
1: ओके, आपकी जी एक छोटा सा करेक्शन ये है कि मैं जब बायोटेक्नोलॉजी में ज्वाइन किया था तो लेक्चरर पोजीशन में ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ, एसोसिएट प्रोफेसर बना, उसके बाद फाइनली प्रोफेसर बना और एचओडी बना। तो ये छोटा सा मतलब ये है नॉर्मल जो उसका। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये जो रिसर्च करते समय टेंशन और स्ट्रेस, वैसे पता है क्या है, ऊपर वाले की ऐसी दुआ है मुझ पे कि मेरा जो प्रोफेशन जो है लेक्चरिंग मुझे बहुत पसंद है।
0: Okay.
1: और प्रोफेशन, और कहते हैं कि अगर आपका पैशन जो एक हो जाए, जैसे इफ यू बोथ ऑफ योर प्रोफेशन एज वेल एज योर पैशन गेट रोल्ड इनटू वन, देन यू आर सपोज टू बी अ वेरी लकी चैप। और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ इस मामले में कि मेरे को वही प्रोफेशन मिला जो मुझे बहुत पसंद है। और सच मानो तो ये 3 साल ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला, लेक्चर दे के बच्चों को पढ़ा के, बायोटेक्नोलॉजी ही नहीं बाकी काफी चीजें भी उन्हें पढ़ाता था मैं, मतलब कि कैसे फोकस करना है, कैसे एनर्जी को चैनलाइज करना है, व्यायाम की जरूरत, योगा की जरूरत, मेडिटेशन की जरूरत, माइंड को साफ रखना, ये सब मैं सिखाता था। तो ये पता नहीं ये सफर इतना सिंपल सा और बहुत ही मजेदार सफर रहा है मेरा, मतलब रिटायरमेंट तक। तो ये तो भाई बहुत ही किस्मत की बात है।
0: वही बहुत अच्छी बात है, मतलब इंसानियत को बीमारियों से बचाने के लिए लैब में बिताई गई आपकी ये रातों की मेहनत वाकई पूरे समाज के लिए आपका एक महान योगदान ही है। आप जैसे लोग ही तो ये सब कुछ करते हैं, तभी तो बाकी लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मनीष ये बताइए कि साइंस जैसे सीरियस सब्जेक्ट के साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट भी बसता है। बचपन से ही आपने बताया कि आपको सिंगिंग, पेंटिंग और यहाँ तक कि कथक डांस की भी ट्रेनिंग मिली है, तो साइंस के लॉजिक और आर्ट्स के एहसासों के बीच ये बैलेंस आप कैसे बना के रखते थे?
1: ये पता नहीं, ये ना थोड़ा सा जेनेटिक्स से मेरे घर में, मेरे फादर मदर सब ब्रदर सब गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और फादर मदर तो बहुत अच्छा चेस भी खेलते हैं, मतलब घर का माहौल इस तरह का था कि आर्टिस्ट्री काफी थी। तो मतलब गाना बजाना हम लोग घर में ही, मतलब मेरे ब्रदर्स बॉन्गोस उनसे बजाते थे भैया, और जो दूसरे भैया हैं मेरे वो फ्लूट वगैरह अच्छा बजाते थे और सिंथेसाइजर वगैरह भी मैंने सीख रखा था। तो हमने घर में ना हम लोग एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा की तरह ही था बचपन में, कॉलेज तक हम लोग गाते बजाते बहुत थे। और बचपन में क्या हुआ कि पता नहीं डांस भी कर लेता था, तो मैं रिकॉर्ड पर डांस करता था स्कूल में, तो टीचर वगैरह अच्छा लगता था, तो वहां पर एक कथक के मास्टर जी थे और एक टीचर भी थी, उन्होंने कहा मेरा जब डांस देखा तो उन्होंने कहा इसको तो सिखाना, इसीलिए तो बहुत अच्छा करता है डांस, सिखा देते हैं। तो फिर मैंने अभी साल कथक भी सीखा उनसे, और इसी तरह मतलब ये जो आर्ट का जो का ये जो चक्कर जो है बचपन से ही चला और आज तक रहा है मेरे साथ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये आपने कथक वगैरह सब केरला, मतलब वहाँ जाके ही सीखी ना?
1: गाजियाबाद तक तो नहीं?

0: गाजियाबाद में ही सीखा था, गाजियाबाद में
1: हाँ
0: होली चैट स्कूल में, वहां पर एक मास्टर जी
1: अच्छा
0: पढ़ाने आते थे। हाँ
1: ओ
0: हाँ तो वहीं सीखा।
1: ओके ओके ओके वेरी नाइस। माइंड तो दिमाग को बहुत वो करता है, जैसे कि डिसिप्लिन रखता है, और आर्ट्स जो है
0: हाँ
1: वो हमारी रूह को सुकून देती है। तो कितना
0: बिल्कुल
1: कितना ब्यूटीफुल फलसफा है ना आपका। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं मनीष जी की रूहानी आवाज में ये बहुत सुंदर सी गजल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जगजीत सिंह की आवाज में हमारे मनीष जी ने ये गजल गाई है, और आइए फिर देखते हैं और सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर गजल आपने गाई मनीष। इसका तो ये नगमा तो वैसे भी बिल्कुल सुकून दे जाता है। मनीष ये बताइए, आप सिर्फ पढ़ाई और लैब तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आप स्पोर्ट्स में भी आपका जज्बा जो था वो भी कमाल का रहा। आपने बताया कि आप कैरम, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी आपका बहुत इंटरेस्ट रहा। स्पोर्ट्स की इस हैबिट ने आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कितना फायदा पहुंचाया?
1: हाँ ये तो है, क्योंकि ना जैसे आपने कहा कि एक संपूर्ण ह्यूमन बीइंग के लिए जो हमारा जो प्रोफेशन है, पढ़ाई लिखाई है, उसके अलावा आर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह मेरे को लगता है स्पोर्ट्स का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। मैं स्कूल में कैरम्स का चैंपियन था और फिर केरल आने के बाद मैंने टेबल टेनिस वगैरह यहाँ पर हॉस्टल में सीखा था टेबल टेनिस वगैरह। और बैडमिंटन तो बचपन में खेलते थे, पापा भी बहुत अच्छा खेलते थे, बड़े भैया भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो यहाँ पर फिर केरला में आने के बाद फिर मैंने बैडमिंटन हमारे घर में ही बड़ा सा काफी मतलब जमीन हमारे जो घर के सामने काफी स्पेस था, तो हमने वहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट डाला था मैंने और ब्रदर्स ने, और हम लोग रेगुलरली खेलते थे। तो उससे फायदा ये है कि भाई शरीर भी मतलब व्यायाम भी मिल जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और पढ़ाई से पहले हम लोग शाम को खेला करते थे और उसके बाद नहा धो के फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते थे। तो मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बन जाता था उससे, क्योंकि गाना बजाना भी है, खेलना कूदना भी है और पढ़ाई लिखाई भी है। तो ये मतलब मुझे लगा कि बहुत ही बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बन गया था कॉलेज के जमाने में, बचपन से ही था और वो अभी भी है। अभी भी मैं योगा करता हूँ, फिटनेस करता हूँ।
0: अच्छा।
1: इस उम्र में भी मतलब मैं जिम जाता हूँ, तो वो अभी भी चल रही है वो हैबिट्स, जो अच्छी हैबिट्स हैं।
0: बहुत खूब, बिल्कुल सही। वो सब कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और रचनात्मक दिमाग का निवास होता है। आपकी अगर आपकी बॉडी अगर फिट है तो बाकी सारी चीजें अपने आप फिर फिट ही होती हैं, माइंड भी सेट होता है उसी तरीके का।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो मनीष जी, अब आप ये बताइए कि कोविड आ गया अब जैसे, तो आप कोविड लॉकडाउन से ठीक पहले आप यूनिवर्सिटी से, आपने बताया कि आप रिटायर हो गए थे, ठीक है ना?
1: हाँ,
0: इतने लंबे कैरियर के बाद आपका अचानक काम से फुर्सत मिल गई और फिर ऊपर से लॉकडाउन का वो टाइम, तो फिर आपने उस समय को, उस वक्त को आपने अपनी पेंटिंग्स, म्यूजिक और शौक के साथ कैसे स्पेंड किया? आप क्या क्या करते थे उस टाइम का?
1: बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आरती जी। क्या हुआ कि ये सही बात है कि काम से भी फुर्सत मिल गई तो थोड़ा सा गैप सा बन जाता है कि भाई इतनी साल काम कर रहे हैं, सडनली एक सुबह देखो कि आपसे कोई काम नहीं है। तो मुझे काफी मतलब विजिटिंग प्रोफेसरशिप वगैरह इधर उधर मिली थी, लेकिन कोविड का टाइम था तो जाना आना मुश्किल हो गया था। मैंने क्या किया, थोड़ा सा गाने पर ध्यान देना शुरू किया और थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह की मैंने, और थोड़ा सा वाइफ के साथ मतलब गार्डनिंग उनको बहुत पसंद है तो उनको भी हेल्प कर लेता था, और रसोई में भी मतलब जैसे मैं कुकिंग कर लेता हूँ रसोई में भी उनका हाथ बता दिया करता था। तो और मतलब रीडिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत मतलब साइकोलॉजी, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब सीखने के लिए और कॉन्शियसनेस के ऊपर भी मतलब मेडिटेशन वगैरह या टेक्निक्स वगैरह प्रैक्टिस करना ये सब किया करता था। तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो लॉकडाउन क्या हुआ कि अंदर की ओर जो जो जर्नी होती है ना, तब हम लोग बाहर की ओर की जो जर्नी जो है भौतिक लेवल पे सभी लोग करते हैं, लेकिन अंदर की तरफ अपने अंदर झांकना, अपने माइंड को क्लियर करना, आंख से मुक्त होना और फ्यूचर की एंग्जाइटी से मुक्त होना, ये सब चीजें जो है अभी लॉकडाउन में मैंने उसको फोकस करना चालू किया था। तो अच्छा टाइम स्पेंड फॉर वेल स्पेंड।
0: क्या बात है, मतलब आपने कितना अच्छा मतलब उस टाइम का कैसे इस्तेमाल किया, आप अपनी कला की तरफ वापस लौट गए और आपने वक्त का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया, और ये भी अपने आप में किसी कला से कम नहीं, क्योंकि हर आदमी नहीं टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर पाता, और आपने कितना एप्टली उस टाइम को यूज किया आपने, तो बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा मनीष, अब हम सुनेंगे आपकी पसंद की तीसरी गजल, ठीक है? तो अब आपने ये गजल हमारे को जो गा के भेजी है, ये है मेहदी हसन साहब की गजल। मतलब आपने पहले पंकज उदास की गजल गाई, फिर आपने जेएस की गजल गाई, और अब आप मेहदी हसन साहब की गजल सुना रहे हैं, और वो भी मेरी फेवरेट। कौन सी है, जरा एक लाइन गा के बताइए।

0: भुला ना सकोगे। ये गजल मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, इतनी सिंपल है लेकिन बहुत टचिंग है।
1: बहुत
0: तो मुझे लगता है हाँ
1: बहुत
0: उसको पसंद आएगी जरूर।
1: बहुत सुंदर गाई आपने, अनप्लग्ड वर्जन भी बहुत जबरदस्त था। तो आइए दोस्तों, फिर मनीष ने अगर अनप्लग्ड वर्जन इतना अच्छा गाया, सोचो म्यूजिक के साथ कितना अच्छा गाया होगा। तो चलिए हम सब सुनते हैं मनीष की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: आपकी बेहद बेहद खूबसूरत आवाज में गाई हुई ये तीसरी गजल भी बहुत ही मनमोहक थी मनीष। अब आप ये बताइए, मजा आ गया सुन के। आप ये बताइए मनीष कि आपकी बेटी का नाम है अनन्या, ठीक है, और आपने बताया कि आपके जो दामाद हैं उनका नाम है इंद्रजीत, और वो दोनों ही मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, और वो गोवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं दोनों बच्चे। तो एक साइंटिस्ट और फादर के रूप में नेक्स्ट जनरेशन को अपने ही नक्शे कदम पर मानवता की सेवा करते देखना आपको कितना खुशी का एहसास देता है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये क्या फीलिंग होती है? हाउ डू यू फील इट?
1: ओह, दैट इज ए हेवनली फीलिंग आरती जी, क्योंकि ना ये तो पता नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो यहाँ पर सीबीएसई में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट थी साइंस की, और मतलब वो काफी अच्छे, मतलब 96-97% मार्क्स थे उसके सीबीएसई में, और उसको इंस्पायर का स्कॉलरशिप भी मिला था उसको, और लेकिन उसने अपने आप ही चुना है, मैंने उसको फोर्स नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी थी, तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया, तो उसने कहा पापा मैं एनीवे मेडिसिन ही लेना चाहती, तो मैंने कहा अच्छी तो फिर भाई पढ़ाई करो और आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, तो उसने केरला का एंट्रेंस क्रैक किया, ऑल इंडिया क्रैक किया, फिर कॉमर्स को ही करके कर्नाटका में वो टॉप 15 के अंदर आ गई थी, तो मतलब उसने हमें प्राउड ही फील करवाया है, और हम बहुत खुश थे उसकी, मतलब स्कॉलास्टिक जो उसकी जो जो जो जो कर्व जो था उसका ऊपर की तरफ बहुत ही बढ़िया था, फिर उसके अपने आप ही मिल गया, तो मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है, हम बहुत ही खुश थे। और मैंने ये एक बात कही है कि जब अपना क्लिनिक डालोगे तो ये देखना कि 10 पेशेंट्स में कम से कम 3 या 4 ऐसे पेशेंट्स हों जो गरीब हों, जो जो जो मेडिसिन का वो नहीं दे सकते इतना खर्चा वगैरह, तो हो सके तो उनकी मदद जरूर करना फिनेंशियली, मतलब या तो उनसे फीस देना है या उनको दवाइयां फ्री देनी है, कुछ तो कुछ करना जरूर है, तो उसने मेरी प्रॉमिस मान ली है, कहती पापा मैं ऐसा ही करूंगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया।
0: तो डॉक्टर लोगों को ओथ दिलवाते हैं ना, शपथ दिलवाते हैं, जो कि हार्डली ही बाद में डॉक्टर बनने के बाद लोग उसको फॉलो कर पाते हैं ट्रू सेंस में, बट आपने कितने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को, जो मतलब आप बीइंग फादर आप उसको इस तरीके से गाइड कर रहे हो, और वाकई बहुत बहुत काबिले तारीफ बात है ये। पेरेंट्स की तपस्या से जब बच्चों की सफलता बनकर चमकती है, बच्चे जब सफल बन के मतलब वो अपना उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, तो नेचुरली पूरी फैमिली का जो सर है वो गर्व से लाइक मस्तक ना ऊंचा हो जाता है, तो सारी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होता है, नॉट ओनली योर फैमिली, आपके सारे रिलेटिव्स, आपके मम्मी डैडी, आपके भाई, सारी बिरादरी में मतलब बंदे का सर ऊंचा हो जाता है, तो ये वाकई बड़ी खुशी और गर्व का एहसास होता है। तो अब इसी के साथ अब हम आपके हमारे सुनने वालों को सुनाते हैं आपकी एक और बड़ी खूबसूरत सी गजल, ये है झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, यही है ना, दबा दबा सही सही दिल में प्यार है कि नहीं, तो गाइए ना एक लाइन इसकी भी आप।
1: हाँ, ये बहुत पसंद है मुझे ये गजल दिलजीत सिंह जी की।
0: हाँ बोलिए।
1: हाँ, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, इनको उनकी आवाज ना एक स्पेशल क्वालिटी है उनकी आवाज में, मतलब वैसे काफी सारे गजल सिंगर्स हैं लेकिन पता नहीं मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद है, तो ये मेरी पसंदीदा एक गजल है जो मैंने गाया है, सबको पसंद आया जाएगा मेरे ख्याल से।
0: ठीक है ठीक है, तो फिर आइए सुनते हैं आपकी गाई हुई ये गजल दोस्तों, चलिए फिर

0: वाह, क्या नफासत और गहराई है इस गजल के शेरों में मनीष। वाकई बहुत
1: थैंक
0: खूबसूरत,
1: यू
0: आपने
1: थैंक
0: गाए भी बहुत बाकमाल है। तो मनीष, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एक बिल्कुल फोकस्ड साइंटिस्ट रहे, समर्पित जिसको बोलते हैं, टीचर रहे, आर्टिस्ट रहे, और एक कामयाब फादर के रूप में आपके 67 से सालों के इस लंबे और एक्सपीरियंस सफर को देखने के बाद आज हमारे दोस्तों को और खास करके यंग जनरेशन को आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे?
1: अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है आरती जी। देखिए, ये जनरेशन जी से मैं ये कहूंगा कि जो भी डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू डू, द थिंग इज दैट लव व्हाट यू डू। जो कुछ भी आप चुन के प्रोफेशन लेना चाहते हो उसमें अपना हार्ट एंड सोल डालिए, सारी एनर्जी डालिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप सोसाइटी के कोई काम आए, अपने ही नहीं। यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी तो हमें हेल्प करती है हर चीज में। तो हमारी लाइफ सोसाइटी के थ्रू, फादर मदर के फैमिली से और बाहर सभी से तो मिलता है, स्नेह भी मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे कुछ सिटीजन हम अपने सोसाइटी को बैक कुछ ना कुछ तो दें, ऐसा कुछ दें जो दूसरों के लिए उसका कोई गुड इफेक्ट हो, उसके ऊपर दूसरों की सहायता हो, मदद हो, कोई किसी को अच्छी नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो ये बहुत जरूरी है कि वी शुड ऑल गिव बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट द सोसाइटी, वी कैन नॉट सेपरेट आवरसेल्फ्स फ्रॉम द सोसाइटी, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी।
0: सुना दोस्तों आपने, मनीष जी के कितने खूबसूरत ख्यालात हैं। नॉर्मली ऐसे ख्यालात सब लोग नहीं रखते। वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई मनीष आपके इस जवाब से। साइंस और आर्ट्स के इतने सुरीले तालमेल को हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतना इंस्पायरिंग पैगाम देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष, अब जाते जाते आप हमारे दोस्तों से भी उनको भी बाय बाय कर दीजिए और फिर हम उसके बाद आपकी गजल सुनाएंगे, पांचवी।
1: ओके, सब सुनने वालों साथियों को मेरी बाय जरूर। मुझे ये, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये गाए हुई गजल चंद गजलें जरूर पसंद आएंगी, तो इसी आशा से सबसे विदा लेता हूँ मैं, बाय बाय।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, और आपने बहुत खूबसूरत गजलें गाई हैं, सबको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, मनीष की इस इंस्पायरिंग विदाई के साथ आइए अब सुनते हैं उनके दिल के सबसे करीब रहने वाली उनकी पांचवी और प्रोग्राम की आखिरी गजल। और ये क्या गजल है, ये भी जगजीत सिंह जी ने गाई है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम की आखिरी गजल।

0: दोस्तों, सुना आपने कितनी खूबसूरत गजल थी और कितनी खूबसूरती से गाई हमारे मनीष जी ने। तो आज प्रोफेसर मनीष जी से बातें करते हुए एक बात बहुत गहराई से समझ में आई, वो ये कि इंसान अपने प्रोफेशन से बड़ा तब बनता है जब वो अपने अंदर के पैशन को कभी मरने नहीं देता और इंसानियत को मरने नहीं देता। साइंस ने उनके दिमाग को दिशा दी तो आर्ट्स ने उनके रूह को जिंदा रखा। तभी तो आपने उनकी बातें सुनी, कितनी खूबसूरत थी। ये सिर्फ ये एक साइंटिस्ट और इतनी खुश्क पढ़ाई करने वाला इंसान तभी कर सकता है जब वो उसके उसका पैशन जिंदा है और वो आर्ट्स में भी उनकी उतनी ही रुचि थी। तो अगर आज के शो से हम एक बात भी अपने साथ घर ले जा सकें तो वो ये है कि काम चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपने शौक और अपनों के लिए वक्त हमेशा निकालिए, क्योंकि यही चीजें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी सिर्फ पन्नों और दफ्तरों का नाम नहीं है। दिल में अगर कोई हुनर है तो उसे आवाज दीजिए। काम तो उम्र भर चलता ही रहेगा साहब। कभी फुर्सत में बैठकर खुद से भी मुलाकात कीजिए जनाब। तो इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अब आपकी दोस्त रेडियो दोस्त आरती रॉय आपसे लेती है इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज और कुछ खूबसूरत एहसासों के साथ। तो आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा, अपनों से मोहब्बत जरूर कीजिएगा। तो शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिलते

0: उद्यानिक विभाग राभा में प्रभारी वरिष्ठ उद्यान अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। मैं संरक्षित खेती के ऊपर आज चर्चा करना चाहूंगा। तो संरक्षित खेती क्या होती है? संरक्षित खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको अपन बाहरी वातावरण, धूप, छाव, पानी, इन सबसे प्रोटेक्ट करके, सुरक्षित करके अपन अच्छा उत्पादन ले। इस तरह से जो खेती की जाती है उसको संरक्षित खेती के अंतर्गत माना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से शेडनेट हाउस और पोली हाउस इंक्लूडिंग है, इनके अंदर जो खेती होती है वो संरक्षित खेती के अंदर गिना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बाहरी वातावरण के से फसल को जो नुकसान होता है, कीट पतंगों से, धूप से, छाँव से ज्यादा, या आपका बर्फबारी से, धुंध से, इन सबसे अपन फसल को बचा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। शेडनेट हाउस एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंतर्गत आप हमारे उद्यानिकी विभाग से अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर में किसान को अनुदान पर ये स्कीम का लाभ दिया जाता है। इसमें अपन बात करें 4000 स्क्वायर मीटर की, तो इसकी लागत आती है 28,40,000 की, और उस पर शासन की तरफ से अनुदान मिलता है 14,20,000 रुपये। अर्थात 14,20,000 किसान को भरना रहेगा और 14,20,000 उसको अनुदान मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो किसान जो नेट हाउस लगाते हैं और प्रथम बार जो उसमें खीरा जो उद्यान की फसलों की खेती करते हैं, जिसको अपन अंडर कल्टीवेशन बोलते हैं, उसमें भी शासन की तरफ से 50% का अनुदान दे देता है। इसके अगर आगे हम बात करना चाहेंगे कि शेड नेट हाउस या पोली हाउस जो लगाते हैं, जो संरक्षित खेती की अपन बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं?
1: हाँ सर,
0: तो इसमें मुख्य रूप से खीरा है, शिमला मिर्ची है, जो कलर शिमला आती वो है, चेरी टमाटर है, और अन्य फसल भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं जो कि स्वपरागित होती है
1: जी।
0: दूसरा अपन बात कर ली जाए कि शेडनेट हाउस और बाहर की जो खेती होती है उसमें अंतर क्या है। देखो, शेडनेट हाउस की जो खेती होती है इसके अंदर आपको उत्पादन में, गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में बहुत अंतर मिलता है।
2: सर एक बात ये बताओ कि इसमें क्या जैसे समय नहीं है, बेमौसम भी सब्जी खेती हो जाती है?
0: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बात करी है संरक्षित खेती, मतलब बाहरी जो वातावरण है उसको अपन मेंटेन करके अपन खेती करना ही संरक्षित खेती होती है। तो चूंकि बे सीजन, जैसे अब ठंड है तो ठंड में बाहर जो फसल अपन लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपर रूप से हो नहीं पाएगी, तो उसको अपन अंदर करेंगे शेड नेट या पोली हाउस के अंदर, तो वो अच्छी तरह से अपना उत्पादन भी दे पाएगी, अपनी वृद्धि विकास भी कर पाएगी, जिससे अपने को कहीं ना कहीं रूप से अच्छा बेनिफिट मिले
1: जी।
0: तो जनरली अपने झाबुआ जिले की बात करें या रामा विकास खंड की बात करें, तो हमने पिछले वर्षों में, एक दो वर्षों में लगभग 10 हमारे यहाँ शेड नेट हाउस लगे हैं, और इस वित्तीय वर्ष में भी हमारे यहाँ पर लगभग 4 से 5 किसानों के नाम आए जो भी अभी शेडनेट हाउस का काम उनमें भी चालू होने वाला है
1: जी।
0: क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फसल लेने वाली, तो जैसे हम अपने यहाँ पर अधिकांश जो किसान है जो शेडनेट हाउस वाले हैं वो खीरा की फसल को लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं। इसका कारण ये है कि खीरा क्या होता है, कम समय में जल्दी आ जाता है और जल्दी उत्पादन भी आपका मिल जाता है, और किसान को क्या तुरंत उसका रिटर्न
2: प्राप्त हो जाता है।
0: क्योंकि खीरा जो है, खीरा एक सलाद की फसल है, जनरली साल भर इसका उत्पादन होता रहता है और सलाद के रूप में उपयोग होती रहती है, तो इससे ज्यादातर लोग अपनी जो चाइना वाली जो खीरा होती है
1: जी जी,
0: वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि उत्पादन का, तो उत्पादन में जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रामा विकास खंड में जो अच्छे किसान है जिन्होंने लगाए हैं, अभी 2 साल से खेती कर रहे हैं, तो आधे एकड़ में लगभग 150 से 200 क्विंटल खीरा का उत्पादन हुआ है
1: जी जी।
0: और उसमें लगभग उन्होंने जो अगर एवरेज रेट बात करें, अगर वैसे तो उन्होंने अच्छी रेट भी बेची, कोई 35-36 रुपए तक भी बिका है, लेकिन अपन एवरेज भी बात करेंगे तो 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग उनका 3 लाख का उनका लगभग 2.5 से 4-3 महीने के अंतर्गत उनको उत्पादन आय मिली है
1: जी।
0: और इसमें लगभग आधे एकड़ में बीज है, दवाई, खाद, इनका लगभग अपन खर्चा माने तो लगभग 50 से 75 हजार रुपए का खर्चा एवरेज कैलकुलेट होता है
1: जी।
0: तो इस प्रकार अपन बात करें उत्पादन और खर्च को के दृष्टिकोण में, अगर शुद्ध लाभ की, तो इसमें 3 महीने के आसपास लगभग किसान को 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है।
2: सर ये बताइए कि अगर संरक्षित खेती के लिए अगर नेट शेट अगर किसान भाई लगाना चाहता है तो उसको कहाँ, किस प्रकार से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है?
0: देखो, हमारे उद्यानिकी विभाग में कोई सी भी योजना होती है उस को लाभ लेने का या उस किसान को लाभ लेना है तो उसके लिए हमारे उद्यानिकी विभाग में उसको पंजीयन कराना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, जिसके नाम से जमीन है उसको आपका बैंक की पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, खाता नकल चाहिए और मोबाइल नंबर के माध्यम से, अगर एसटी वर्ग के किसान है तो उनको जाति प्रमाण पत्र उसका अनिवार्य होता है।
2: जी जी,
0: इन चीजों के माध्यम से उद्यानिकी विभाग में एक बार पंजीयन कराना पड़ता है,
2: ऑनलाइन होता है।
0: हाँ, ऑनलाइन होता है। उसके लिए अगर कोई किसान अगर करना चाहता है तो हमारे रामा विकास खंड में मैं स्वयं करता हूँ, निःशुल्क पंजीयन है, कोई पैसा भी उसमें नहीं चार्ज करते हूँ। तो इस तरह से अपन पंजीयन करा के, हाँ। एक बार पंजीयन कराने के बाद किसान के आईडी पासवर्ड हमारे डिपार्टमेंट के बन जाते हैं तो उसमें जो भी इच्छित योजनाएं लेना चाहता है आदमी वो सभी योजनाओं को अपन यहाँ से ऐड करते चलते हैं।
2: हाँ, हाँ।
0: और उसका फायदा किसान को मिलता जाता
2: मिलता जाता है। सर ये बताइए कि इसमें जैसे खीरा है, मिर्ची है और भी अन्य सब्जियां करी जा सकती है, तो उसमें क्या जो अनुदान मिलता है वो किसी विशेष सब्जी के ऊपर मिलता है या अलग?
0: देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जो खेती की जाती है शेडनेट हाउस के अंतर्गत, उसके अंदर प्रथम बार जो किसान खेती करता है
2: जी जी,
0: इसको अपन हमारे विभाग से एक अंडर कल्टीवेशन के टारगेट आते हैं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती के लिए
2: जी जी,
0: तो उसके अंतर्गत सब्जी की अनिवार्यता है
2: जी जी।
0: जैसे आप अभी खीरा की बात करें तो खीरा हमारे वेजिटेबल के अंतर्गत आता है।
2: हाँ।
0: तो उसमें अगर प्रथम बार जो खेती करोगे तो उसमें आपको 50% का अनुदान दे रहे
2: जी जी।
0: जैसे मान लो उदाहरण के रूप में आधे एकड़ की बात करेंगे तो 2,80,000 रुपए के आपको बिल देने पड़ेंगे।
2: हाँ।
0: आपके खीरा मल्चिंग तार हुक जो भी अपने डालते हैं लगते हुए में उन चीजों के, तो उसमें हम 1,40,000 रुपए का आपको अनुदान देते हैं किसान को।
2: तो सर इसमें एक तो संरक्षित खेती जैसे पॉलीहाउस में अगर होता है तो एक तो उसमें धूप से बचाया जा सकता है और दूसरा उसमें किसान भाई को क्या क्या और फायदे मिलते हैं?
0: देखो संरक्षित खेती में फायदे तो इसका जैसा नाम ही संरक्षित है तो क्या, हाँ। है संरक्षित करने का मतलब सुरक्षित या संरक्षित,
2: हाँ।
0: मतलब सुरक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य
2: है।
0: देखो किसान भले एक आधा एकड़ की बात कर रहे हैं, ओपन ले आप कितनी भी करेगी, एक तो ओपन में करने से क्या होगा, एक तो नुकसान उसका ये हो रहा है कि उसमें बाहरी जो कीट आते हैं बीमारी आती ज्यादा अटैक आता है, और अंदर की बात करें तो इसमें सुरक्षित रहता
2: है,
0: कीट बीमारी नहीं लगती उसमें।
2: हाँ।
0: दूसरी बात अगर आपका अनुकूल वातावरण नहीं रहा, ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा ठंड हो गई, बारिश हो गई, तो बाहर की फसल को नुकसान होने
2: की सुविधा
0: रहती है, लेकिन अंदर की अंदर क्या रहता है फसल
2: सुरक्षित
0: रहता। दूसरी बात अगर बात करें कि फसल को क्या बाहर ओपन क्लाइमेट मिलता है, अंदर का क्लाइमेट नियंत्रित क्लाइमेट मिलता है, नियमित जल वातावरण मिलता है, तो उसका उत्पादन भी बढ़ता है
2: जी।
0: और बाहर का उत्पादन और अंदर के उत्पादन में काफी अंतर लगभग लगभग जो हमारे एक अगर आप खीरा की खेती बाहर करेंगे और खीरा की खेती अंदर
2: करेंगे
0: तो उसमें लगभग लगभग 2 गुना उत्पादन का प्रभाव पड़ता है, मतलब अंदर की खेती में आपको लगभग डबल उत्पादन मिलता है
2: जी जी। तो सर इसमें खीरा की खेती के अलावा मिर्ची की अगर खेती करना हो तो किसान भाई इनको इसके अंदर इसका रोप कहाँ से कैसे तैयार करेगा और उसमें कैसे लगाएगा?
0: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो शुरू में जब किसान शेडनेट हाउस लगाता है तो फर्स्ट प्राथमिकता उसकी रहती है कि जो पैसा उसने लगाया है उसका उसको बेनिफिट मिल गया है
2: जी।
0: तो शुरू के 1-2 साल 3 साल तो क्या किसान जनरली खीरा की ही खेती करता है, तो उसको क्या है कम समय में कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसका जो लगता है जो इन्वेस्टमेंट वो करता है उसका फायदा वो बराबर कर लेता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है किसान, अब क्या होता है जैसे शेडनेट हाउस की बात करें अपन, तो फसल को लगाने का जो तरीका है या सिस्टम जो है उसका, वो किसान के 1-2 साल खेती करता है तो उसको पूरा समझ में आ जाता है कि मैं किस समय में फसल लूं, कौन सा समय चयन करूं ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा उसका रिटर्न मिले। अब क्या होता है

0: जैसे जनरली बारिश में, जैसे अभी बात करें कि जनरली जो खेती करते हैं खीरा
1: हाँ
0: की, वो जनरली मार्च अप्रैल या मई तक वो उनका लास्ट रहता है, क्योंकि
1: हाँ
0: बारिश के बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो बारिश भी होती है वो समय खीरा के अंदर, क्या है तो डाउनी मिल्ड्यू है और
1: हाँ
0: उनमें ज्यादा संभावना बनी रहती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: किसान जुलाई के आसपास
1: हाँ
0: या जून एंड तक उसमें

0: जो कलर वाली शिमला थी
1: जी जी,
0: तो लगभग लगभग उस किसान से हमारी चर्चा भी हुई थी, तो 7 लाख के आसपास उनको शुद्ध मुनाफा
1: हुआ था।
0: और इसके अतिरिक्त
1: जी
0: जो एक और नया कंसेप्ट अभी हमने चर्चा और चली, क्योंकि हमारे किसान अभी क्या 1 साल हुआ, तो थोड़ा उनको 1 साल लगेगा उसको समझने में कि कैसे अपन उसको हाईटेक और किया जा सकता
1: जी जी।
0: अभी जो चेरी टमाटर आता है,
1: चेरी
0: टमाटर आता है तो छोटा टमाटर होता है चेरी मतलब, तो उसका क्या है जो महानगर है उनमें उनकी बहुत डिमांड ज्यादा है
1: जी जी।
0: क्योंकि अच्छी जो VIP होटल्स रहती है, जो रेस्टोरेंट रहते हैं उसमें उसको सलाद या पर्पज से उपयोग किया जाता है
1: जी।
0: तो वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे

0: अपनी क्षमता में जो अपनी आप उस पर रिस्क बेरिंग कर सकते हो, कितना पैसा लगाने में सक्षम हो, तो आप संरक्षित खेती या नेट हाउस पोली हाउस की तरफ आइए, जिससे आपको कम समय में कम क्षेत्रफल में ज्यादा ज्यादा उत्पादन मिले और ज्यादा ज्यादा आपको आय होगी, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: હું છે આરજે રાકેશ
3: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
2: તમું સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર।

0: हमने आपको बताया कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से भी ऐसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एफपीओ से भी इसे जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राव जी मौजूद हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम इस मोटे अनाज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर तो हम जानते ही हैं बाजरा वगैरह जो हम पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पर इसका सेवन किया जाता था, लेकिन आज के दौर में धीरे धीरे हमारी खान पीन के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और ये धीरे धीरे जो मोटा अनाज जिसे हम कह रहे हैं आजकल मल्टीग्रेन के तौर पर कई जगह हम देखते हैं कि इसको मार्केट किया जा रहा है, तो ये किस तरीके से आज के समय महत्वपूर्ण है और इसे अगर हम सरल भाषा में किसानों की भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या है?
1: ये प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन खास करके पोषक अनाज के बारे में आपके सामने प्रस्ताव लाने के लिए पिछले 10 साल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के द्वारा हम ये काम लगातार करते गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पुराना जमाने में जब बाजरा, रागी, ज्वार जो कहते हैं, इनका जो लेने की तरीका है उसमें कुछ सुविधा नहीं था, क्योंकि अभी आप रोटी खाना जैसे सोचते हैं, रोटी खाना, रोटी बनाना बहुत मुश्किल है। ये जो पोषक अनाज के जो भी आपका जो भी फ्लोर मिलते हैं, आटा जो मिलते हैं, उसमें से गर्म पानी मिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको एक पूरा स्मॉल बॉल्स करके उसको हाथ से पीट पीट के उसको रोटी बनाना। ये पुराने जमाने में वो तो अपने औरत लोग काम निभाने में घर में रहने के आदत थी, अभी आजकल के जमाने में ये सारे नहीं चलेगा, क्योंकि कन्वीनियंस जो सुविधा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब पति पत्नी सभी अपने काम में लगे रहते हैं, जॉब करते रहते, तो इस सिलसिले में ये इसका खाना बहुत कम होते जा रहा है और इसका अंत होने वाले स्थिति में हम ये जो भी है प्रसंस्करण लाने के लिए हम उपस्थित करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में इसको डाइवर्सिफाइड काफी प्रोसेस प्रसंस्करण टेक्नोलॉजीज बनाते हुए, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन करते हुए इसका डिमांड बढ़ाने की कोशिश की है। उसमें से खास करके अभी हम क्यों काली ये मोटी अनाज जैसे चावल और गेहूं में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, मगर अभी जब हम मोटे अनाज या पोषक अनाज देखते हैं खाली केवल हमारे को सूजी मिलती है, नहीं तो आटा मिलती है, बस ये दो ही है। तो इससे हटकर हम अगर प्रसंस्करण करते गया तो हाँ उसमें डाइवर्सिफाई करते, जैसे हम बोलने लग गए तो आप इसको सूजी बनाए तो उसमें से इडली बन सकता है, रोटी में जो कमियां हैं जो रोटी में, क्योंकि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं कि इसमें ग्लूटेन बोल के एक प्रोटीन नहीं रहती है जिसमें गेहूं में रहती है, उससे क्या होता है चिकटपन आता है और चिकटपन नहीं रहता इसमें, सो इसलिए तो आपको अभी थोड़ा विवरण देना है तो इसमें स्टार्च को मैनिपुलेट करते हैं, तो इसलिए गर्म पानी मिला के, गर्म पानी मिलने से इसका चिकटपन बढ़ती है, जब चिकटपन आते हैं तब रोटी बनाने में मुश्किल आसानी हो जाता है, तो तभी बनती है, मगर ये इतना काम, इतना टाइम, इतना स्किल मॉडर्न वुमेन के पास, औरतों के पास नहीं है, क्योंकि वो भूल चुके हैं, तो इसलिए तो क्यों कंज्यूमर को, विनियोगदार को, वाई वी शुड उनको क्यों इतना तकलीफ देना है, तो इसको अगर प्रसंस्करण के द्वारा हम इसको डाइवर्सिफाई करें, जैसे आपको सूजी बन गए तो उसमें से सूजी के साथ दलिया भी बन सकता है, खिचड़ी बन सकता है, या इडली बन सकता है, या कोई और कई तरह से डोसा बन सकती है, कई चीज बन सकता है, उसके अलावा अगर फ्लेकिंग है और एक तकनीक है तो उससे भी फ्लेक पोहा बन गए तो उससे ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी बन सकता है, ब्रेकफास्ट फूड्स, बेकिंग जैसे बिस्किट बनती है, केक बनती है, तो ऐसे डाइवर्सिफाई करके एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स है जैसे कुरकुरे बोलते हैं, उस टाइप के वर्मिसेली होगा, पास्ता होगा, ये सारे चीज इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इसलिए किया।
0: जैसे कि आपने बताया कि जिस पोषक अनाज की हम बात करें मोटे अनाज के बारे में, तो पूर्वज तो हमारे इस्तेमाल करते थे उस वक्त, तब हमारे यहाँ चावल और गेहूं का इस स्तर का प्रचलन नहीं था या फिर स्तर पर उसका उत्पाद नहीं हो पाता था और इतने अधिक विकल्प नहीं थे, लेकिन आज के समय में हम ये समझ रहे हैं कि भले ही हम निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है गेहूं और चावल पर, लेकिन अगर हम पोषण की बात करते हैं तो मोटे अनाज का कोई सानी नहीं हो सकता, होता है, इसीलिए इसमें किस तरह से संवर्धन किया जा सकता है, किस तरीके से इसे वैसा बनाया जाए जो कि आम लोग इसे इस्तेमाल कर सके, आसानी हो और अलग अलग रूप में इसे हम अपने किचन में रख सके और इसका इस्तेमाल कर सके, उपभोक्ता इसके पोषक तत्वों का लाभ ले सके। विनीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि एक ये भी चीज बहुत बड़ी है कि ये तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमारे यहाँ तो खान पान का हिस्सा था, लेकिन आज के समय में हम वहां पहुंच गए हैं जब हमें इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से सोचना पड़ रहा है, फिर से कदम उठाने पड़ रहे हैं सरकार को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है। जैसे आपने बताया कि हाँ, हमारे शुरू के पुराने समय की जब हम अपने पूर्व बुजुर्गों की बात करते हैं तो उस टाइम मिलेट्स हमारे खाने, जो मोटा अनाज था, हमारे खाने पीने का एक बहुत अहम हिस्सा था। और इससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जो भारतवर्ष है संसार वर्ल्ड में, हम विश्व में नंबर वन है इसका प्रोडक्शन। और अगर मैं इसकी एक्सपोर्ट की बात करती हूँ, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ना केवल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, बल्कि हम इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लेके जा रहे हैं जहां पर इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। और इसका एक रीजन जो मैं बताना चाहूंगी, जो इसकी गुणवत्ता और जो इसकी क्वालिटीज है, जो इसमें न्यूट्रिशंस है, वो इसको बहुत पॉपुलर बना रहा है, स्पेशली आज के समय में, कोविड के दौरान के समय में, जब लोगों में अब ये एक
0: समझ आ गई है
2: कि हमें किस तरह के अनाज का चयन करना है। तो उसी हिसाब से इस तरह से ये मिलेट्स जो है वो बहुत आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और जो इसकी जो डिमांड है, अगर मैं कहूं तो आज के दिन में अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से भी बात करते हैं तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लास्ट ईयर के हिसाब से हमने 15% की ग्रोथ भी ली है। और इसका और इस कोविड के दौरान में इस इन प्रोडक्ट्स की तरफ जो ना केवल भारत के उपभोक्ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उपभोक्ताओं ने इसकी डिमांड को, इसकी वैल्यू को समझा है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर हम किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम चीजें रहते हैं, इसमें जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि जो इसकी प्रोसेसिंग की बात करी कि इजी टू कुक अगर हम बात करते हैं, तो आज के जमाने में हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात इसका कर रहे हैं, तो ना केवल हम उसको एज ए कमोडिटी कर रहे हैं, एक मतलब इन सीधा अगर हमें बाजरा या ज्वार एक्सपोर्ट करना, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके R&D के एफर्ट्स से हम आज के दिन में हम लोग रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, और बिस्किट्स हैं और केक्स हैं, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं,
0: केक वगैरह भी बना सकते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि जब रागी का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, रागी जिसे हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उससे हमारा डोसा भी बन रहा है, इडली भी बन रही है, नमकीन भी बनती है, पापड़ भी बनता है, और केक्स भी बन रहे हैं, बिस्किट्स भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से मीन्स जो ये लोगों की जब जैसे जैसे इसके अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बढ़
0: बिल्कुल
2: रही है।
0: यानी विनीता जी, आप ये कह सकते हैं कि आज के समय में जरूरत यह है कि हम अपने स्वाद के अनुसार या फिर जो हमारी जीभ को भाए उसे ही हम खाएं, उसी का सेवन करें, वो समय जा चुका है। अब आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है और ऐसी चीजों का आप सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और इस बात को न सिर्फ हमारे देश में समझा जा रहा है बल्कि विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में जो मोटे अनाज की पैदावार थी उसे बढ़ाने पर भी फोकस दिया जा रहा है और इनकी मांग भी बीते कुछ समय में बढ़ी है। लेकिन और कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन से सेगमेंट है जहां पर इसकी मांग को और बढ़ाया जा सकता है, जहां पर अभी हमारी पहुंच नहीं हुई है, तो इसे किसानों के लाभ से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, उस पर भी मैं विनीता जी आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं दयाकर जी से। दयाकर जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मोटे अनाज की गुणवत्ता क्या है ये तो हम सब समझ रहे हैं और इसके बारे में जागरूकता भी काफी फैल रही है, लेकिन ये भी एक व्यवहारिक समस्या आती है कि इसका सेवन कर पाना और इससे बनी चीज़ें बना पाना बहुत आसान नहीं होता है रसोई घर में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई और चुनौती रहती है। तो किस तरह के प्रसंस्करण किए जा रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि अगर आप अलग अलग फसलों के अनुसार बताएं, अलग अलग अनाज के बारे में बताएं कि किस तरह के चरण इसमें अपनाए जा रहे हैं।
1: अभी मैडम जो बताए हैं अलग तरह से, कभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा हम केवल प्रसंस्करण का डाइवर्सिफिकेशन ही कराए, मगर उसके अलावा रेसिपी बनाने में भी हम बहुत ही प्राप्त हुआ है। अभी लगभग 500 रेसिपीज जैसे चावल और गेहूं में जो बनती है वो सारे अभी मिलेट्स में बन सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो गुण नहीं है, ग्लूटेन प्रोटीन नहीं है, तो भी उसमें स्टार्च मैनिपुलेशन करके इसका इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया। अभी जैसे रोटी बनती है, अभी आजकल रोटी भी मल्टीग्रेन के रूप में आती है, फिर बिस्किट्स बनती है, कुकीज बन सकते हैं, या आपको केक्स बन सकता है, या कई तरह से बेकिंग टेक्नोलॉजीज में भी हम उपलब्ध होके आगे आ रहे हैं। काफी स्टार्टअप कंपनीज इसका कमर्शलाइज करके आगे ले चल रहे हैं ताकि कंज्यूमर को इसको उपलब्ध करने में, तो ना केवल ये अर्बन एरियाज में जैसे कुरकुरे या कई और तरह से पोहा या पफिंग पॉपिंग, ये सारे तकनीकियां आगे अभी उसमें उसका टेक्नोलॉजी से उपलब्ध है, मगर इसके अलावा हम ये सोचते हैं ये अर्बन प्रोडक्ट ना रहे, ये रूरल प्रोडक्ट भी रहे, ताकि अपने किसान भाई लोग, अपने घरेलू संस्थाएं सारे लोग इसको खाएं, और इसका जो भी है हेल्थ मीट्स टेस्ट, ये दोनों को मिलाकर इसका जो भी इंटरवेंशन कर चुके हैं उसको, उससे कि ये लगता है कि इसका कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी भी अच्छा बढ़ चुके हैं, और इसका न्यूट्रिशन भी, हम न्यूट्रिशन के तरफ भी पोषक गुण भी इसमें लॉसेस मिनिमाइज कर चुके हैं, ताकि आपको हेल्थ भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ टेस्ट भी बढ़ सकता है।
0: जी,
1: तो जैसे तो अभी जो चावल और गेहूं में जो बनती है सारे चीज, या कोई ब्रेकफास्ट सीरियल हो सकता है, या मेन कोर्स हो सकता है, या बेवरेज हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, या कोई लस्सी बन सकती है, ऐसे आप बोलो प्रोडक्ट उपलब्ध है अभी। तो इसका प्रयास हम ये कर रहे हैं सभी दुनिया के कोने कोने में ले चले इसका। अभी भारत देश का जो भी आधुनिक या ट्रेडिशनल फूड है उसको दुनिया को परिचय करने का समय आ चुकी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी ताकत को समझना है, अपनी अहमियत, अपनी खासियत को, और ये जो जिन पोषक अनाजों की बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों की, ये हमारी अपने आप में खासियत है, और इस खासियत को और उभारने के लिए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि किस तरीके से विश्व स्तर पर इसके महत्व को समझते हुए 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी दयाकर जी, कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसका मूल्य संवर्धन या और साथ ही प्रोसेसिंग, इससे किसानों को किस तरह से लाभ होगा, क्योंकि अभी भी किसान जो हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ने में थोड़ा पीछे हैं, या फिर प्रसंस्करण किस तरीके से किया जाए, अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है, जो मेजॉरिटी है वो वही है कि अनाज पैदा किया और मंडियों में बेच दिया, लेकिन इसमें भी एक बदलाव किस तरीके से लाने का प्रयास हो सकता है।
1: बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछा है कि क्योंकि हम जो भी करते हैं किसानों का क्या फायदा है, इससे पहले जो किसान जो इसको बोते हैं वो अपने खाने के लिए तो उसका ध्यान नहीं देते थे, मगर अब आजकल के जमाने में अभी किसान भाई ने अभी अर्बन एरियाज के लिए या जस्ट दूसरों के लिए ये ग्रो करना पड़ता है, कमर्शियलाइजेशन के लिए ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंच के बहुत आगे पढ़ते हुए यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो गया, तो इसका कमर्शियलाइजेशन शुरुआत हो गया। तो जब ये शुरुआत हो गया तो फार्मर्स को क्या मिल रहा है इसके साथ, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। आप जो अच्छी बात पूछे है, अभी फार्मर जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हार्वेस्ट कर लेता फिर उसमें मार्केट में मंडी में बेच देता था
0: जी,
1: मगर अभी आजकल के जमाने में इसको फार्म गेट वैल्यू एडिशन की जरूरत है। फार्म गेट का मतलब है अपने फार्मर का जो भी जैसे जो हार्वेस्टिंग कर लिया और उसके बाद दो तीन स्टेप आगे ले चलने के लिए अपना प्रोड्यूस का कुछ उसका फायदा भी लेना है, उसका इनकम भी बढ़ना है, तो उसके लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राथमिक प्रसंस्करण की बहुत जरूरी है। जैसे क्लीनिंग हो या ग्रेडिंग हो, स्टोन उसमें पत्थर निकालने हो, और खास करके स्मॉल मिलेट्स में डीहलिंग भी जरूरत है, क्योंकि ज्वार बाजरा और मक्के में वो नेकेड ग्रेन है, तो

0: वैल्यू से प्रसंस्करण के साथ फार्म गेट के लेवल पे इशारे करके ये भी कर सकता है कि मिलिंग भी कर सकता है, जैसे आटा भी बन सकता है, सूजी भी बन सकता है। इसका फार्मर को कुछ करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती है, मशीनरी प्रोवाइड करने की भी पड़ती है।
1: ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा, ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा डॉक्टर राव, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगी आगे कि वो किसान जो कि इसमें मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण के माध्यम से और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग वो कहां से ले सकते हैं और ये किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर मैं आपके पास आऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनीता जी समझना चाहूंगी, जैसा कि अभी राव साहब ने कहा कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि फटाफट चीजें उसे उपलब्ध हो और उसका जल्दी से जल्दी उसे वो कंज्यूम कर सके, तो ऐसे में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं और वहां पर तो हम जानते हैं कि विदेशों में प्रोसेसिंग किस स्तर पर है, तो ऐसे में मोटे अनाज को सीधे ऐसे ना बेच करके उसमें वैल्यू एड करके प्रोसेसिंग करके बेचा जाए, तो जाहिर सी बात है बेचा जा भी रहा है तो और अधिक हमारे किसानों तक लाभ पहुंच सकता है, तो इसके किस तरह के मानक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, उन स्टैंडर्ड्स को आप पीछे नहीं रह सकते।
2: नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली, जो कि हमें जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और मोटे अनाज में जब वैल्यू एडेड के प्रोडक्ट हैं, तो पहला चैलेंज ये है कि हमें वहां पर प्रमोट करना है, और प्रमोट करना है तो उस एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखना जो बहुत जरूरी है और जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो आज के समय में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मोटा अनाज और जो मिलेट्स जिनको हम कहते हैं, आज के दिन में कोई एक्सपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्टर्स किसी भी कंट्री में किसी भी देश में अगर उसका निर्यात कर रहे हैं तो उनको हम ये समझाते हैं कि हमें पहले उस आयातक कंपनी जो देश है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए उनको वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करें जो उनके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करके तभी वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि तभी वो एक्सेप्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह का जो हमें हम इसके लिए उनको डिफरेंट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, अगर कभी भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि इम्पोर्टिंग कंट्री में पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को भेजने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहां पर कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी लेनी होती है, जो कि इसके लिए
1: ये कहां से मिलता है, मतलब
2: ये मैं बताना चाहूंगी कि इसके लिए उन्होंने, मैं सऊदी अरेबिया का ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूं आगे, तो उन्होंने ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड एजेंसीज बनाई हैं जिनके थ्रू हमें लेना होता है। तो हमारा रोल एपेडा का ये रहता है कि हम अपने एक्सपोर्टर को सेंसिटाइज करते हैं कि आपको इन इन पैरामीटर्स की ये नई रिक्वायरमेंट इम्पोर्टिंग कंट्री की आई है, आप इसको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस को वहां पर एक्सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सर, क्वालिटी इज द मेन चैलेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट।
1: जी बिल्कुल, और क्वालिटी जैसा कि आपने बताया कि बड़ी चुनौती रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर आप जाना चाहते हैं और वहां पर और विकल्प तलाशना चाहते हैं और अवसर चाहते हैं, तो क्वालिटी के साथ यानी गुणवत्ता के साथ आप किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोटे अनाज की बात करें तो इसमें इसकी आयु कैसे बढ़ाई जाए, यानी जो इसकी शेल्फ लाइफ है उस पर भी काम लगातार किया जा रहा है, ये भी एक समस्या आती है, तो इस पर भी मैं विस्तार से जानना चाहूंगी डॉक्टर राव से। और साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह के हैं, कैसे इनसे किसान या फिर वो नए युवा जो कि मोटे अनाज के दिशा में अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं और मोटे अनाज से भी जुड़ा रहना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के विकल्प है?
3: मोटे अनाज की खेती में संभावनाएं अपार है। जी हाँ किसान साथियों, मोटे अनाज जो कि पौष्टिक अनाज के नाम से भी अभी जाना जाने लगा है, उसमें भरपूर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो किसान साथियों, मोटे अनाज की इस खेती में और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, आने वाले समय में यह मोटा अनाज कैसे फायदेमंद हो सकता है, इनसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज पर।
4: आप सुन रहे हैं छावा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार मोटे अनाज की खेती को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं किसान साथियों, किस तरीके से मोटा अनाज आने वाले समय में हमें एक अच्छी आमदनी दे सकता है, अच्छी उपज के साथ कैसे हम हमारी आजीविका को सशक्त बना सकते हैं। तो किसान साथियों आइए शुरू करते हैं।
2: पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार इसीलिए इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है और साथ ही न सिर्फ उपभोक्ताओं को बल्कि किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो मोटे अनाज की खेती करें और उपभोक्ता ऐसे जो प्रोडक्ट है, जैसे उत्पाद है, उनका सेवन करें। हमारे साथ डॉक्टर राव जी हैं। ब्रेक से पहले सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी प्रशिक्षण प्रोग्राम किस तरह के मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर के भी, और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जो युवा है, जो स्टार्टअप आज के समय में नए नए आ रहे हैं और कृषि स्टार्टअप को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या इसमें भी किसी तरह की संभावना है?
3: बिल्कुल मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जबकि जो ज्ञान पाते हैं उसको ज्ञान किसानों बाइक को पहुंचना और कई और स्टेक होल्डर्स रहते हैं इसमें, उन लोगों को भी पहुंचना बहुत जरूरी है। पिछले लगातार 12 साल से जो काम किया है और ये प्रसंस्करण के ऊपर और ये मूल्यवर्धन करते हुए आगे चलते हुए ये जो स्केलिंग या पायलटिंग करके उसको अपस्केलिंग कर रहे हैं, मगर इसका पूरा ज्ञान के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए काफी हम लगभग पूरे स्टेट वाले स्टेट से काफी स्टेक होल्डर्स हमारे पास आते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में हम इसका प्रोविजन कर चुके हैं ताकि लोगों को तक पहुंच गए तो जो भी ज्ञान है जिसको जरूरत है, जैसे SHG ग्रुप हो या फार्मर्स हो या रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो या अर्बन स्टार्टअप्स हो, इन सब स्टेक होल्डर्स को अलग अलग से अलग तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर लगातार 14 स्टेटों को इसको अभी तक कम से कम 25,000 लोगों का ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी 2023 आने वाले अंतर्राष्ट्रीय का जो मिलेट ईयर साल घोषित किया गया है उसके उन सिलसिले में हम इसको स्केल अप करके कर रहे हैं, ना ही बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, बट हम ये भी देख रहे हैं कि CFTRI है हमारा, निफ्टम वाले है, बाई लोग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और तंजावुर सोनीपत और तंजावुर में दो स्थान में है और काफी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी उन भी लगातार इसके ऊपर ध्यान देते हुए पूरा ट्रेनिंग का काम चल रहे हैं। खास करके फार्मर्स के लिए फार्म गेट वैल्यू एडिशन के लिए अभी काफी एजेंसीज भी आ रहे हैं, NGOs भी आ रहे हैं, मगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जहाँ कि आप पूरे देख सकते हैं सारे प्रसंस्करण क्या किया है, कैसे इसको डेवलप कर चुका है, कैसे पायलट कर लिया, कैसे स्केल अप कमर्शलाइज कर लिया, इसका ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका मिलेट प्रोसेसिंग जो है वो अलग है, जैसे गेहूं और चावल का नहीं होता है, तो वो क्या है, क्या फर्क है, ये सारे चीज उनको बताना है। और इसके अलावा आप ये भी पूछा है हमें शेल्फ लाइफ, इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी अभी उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए उपलब्ध है। तो महिलाओं के लिए या गांव वालों के लिए या किसान भाई लोगों के लिए हम अलग तरह से, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करते हैं मगर उनको ये ज्ञान नहीं है कि जैसे करते टाइम पे इसका न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम है अनाज, पोषक अनाज है। जैसे करें अभी पर राइस को या चावल को पॉलिश करते हैं वैसे ही ये मोटे अनाज को कर लिए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कैसे क्या करने से इसका वो जो मूल्य वर्धन बढ़ती है या न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट रिटेन कर सकते हैं और किस तरह से प्रोसेसिंग से उसका न्यूट्रिशन बढ़ सकता है और उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, उसका ब्रांडिंग कैसे करना है, अपना प्रोडक्ट्स को क्या क्या क्या किसका मार्केट अच्छा है गांव क्या शहर वालों के लिए, सो इसका पैकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज में एंटायर वैल्यू एडिशन के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों के लिए, तो ये चीज है। दूसरी चीज है, आप शेल्फ लाइफ के बारे में बोला था, ग्रेन्स का शेल्फ लाइफ है, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है आजकल, अभी उसका ज्यादा स्केल अप हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा, उनका कॉल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी लगातार करते हैं। अभी इससे पहले चावल, गेहूं है, अभी ये मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
2: जी।
3: रागी खास करके आपको 9 महीने तक रहता है, ज्वार बाजरा कम से कम 6 महीने तक रहता है ग्रेन, तो ये शेल्फ लाइफ। मगर हम उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई, हम रिसर्च ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, और वो तो ग्रेन के बारे में बोल रहा था, मगर अभी फ्लोर है, फ्लोर का मतलब है आटा है,
2: आटा जी,
3: ज्वार का आटा ये 1 महीने में भी नहीं रहता है, उससे कम ही रहता है क्योंकि उसके ज्यादा फैट रहता है, रैंसिड बन जाता है जल्दी, तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इंटीग्रेटेड शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट के द्वारा पूरा मिला के पूरा तकनीकियां मैनेजमेंट करके, इंक्लूडिंग पैकेजिंग का भी, कैसे कौन सी पैकेजिंग में कर दी, तो कम से कम 3 महीने तो आने के लिए कोशिश जारी है।
2: जी जी।
3: मगर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वैक्यूम पैकेजिंग करने से एक्सपोर्ट उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है 6 महीने से ज्यादा, 1 साल तक रह सकता है। तो ये सारे चीज मन में रखते हुए हम हमारा प्रोग्राम चालू कर लिया, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए ले जाने के लिए अगर आपका 3 महीने का शेल्फ लाइफ रहे तो ले जाना मुश्किल है, तो आप कैसे ले जाएंगे, तो
2: जी, उसका शेल्फ लाइफ बिल्कुल बिल्कुल मैं
3: और कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा शेल्फ लाइफ है उसका पूरा हम अपीडा के साथ काम कर रहे हैं। अपीडा ने बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट्स पूरा डेवलप करें।
2: बिल्कुल, मैं विनीता जी से बात करती हूँ, जैसा कि राव ने अभी बताया,
3: ले जाने के लिए तैयारियां।
2: बिल्कुल डॉक्टर राव, जैसा कि आपने बताया कि एपिडा के साथ मिलकर और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मैं विनीता जी आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि थोड़ा किसान भी इसीलिए इसे संकोच कर जाता है या फिर सोचता है कि उसे नुकसान ना हो जाए अगर इस तरह की मोटे अनाज की वो खेती करता है, क्योंकि बहुत समय तक आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, उसकी गुणवत्ता में असर पड़ जाता है, तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जैसा कि अभी सर ने कहा?
4: जैसे जो आपने इसके स्टोरेज की बात की है, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए अपनी कोशिशों को जारी किए हुए हैं, तो अपेडा की कुछ वित्तीय सहायताएं हैं जो स्कीम्स हैं जिसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम उनको वित्तीय सहायता देते हैं, ताकि वो उस वित्तीय सहायता के सहायता से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उसके लिए हम जैसे प्रोसेसिंग लाइन की बात कर लें, ताकि एक्सपोर्टर का प्रोसेसिंग लाइन और उसकी पैकेजिंग, जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि वैक्यूम पैकेजिंग अगर हम करते हैं तो हमारे प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इस तरह के लिए हम पेडा हमेशा हमारे एक्सपोर्टर्स को हेल्प दे रहे हैं और उनको सहायता दे रहे हैं, और स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटीज, चाहे साइलोज की बात कर लें या और स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोगों की स्कीम्स के तहत में एक प्रोविजन है जिसके तहत हम उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि ये इंश्योर कर सके कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्वालिटी प्रोड्यूस पहुंच सके।
2: जी।
4: और दूसरा, जैसे किसानों से हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे किसानों को हम कैसे हम हमारे एक्सपोर्टर्स के जोड़ रहे हैं, अपेडा ने अभी तक डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जब उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो हमें एक ये गैप पता चला कि हमारे जो सोर्सिंग है, हमारे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कहां से हमें क्वालिटी प्रोड्यूस मिल सकेगा। तो जितने भी FPOs हैं, तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम उन FPOs को अपने एक्सपोर्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन करें, सो दैट उनका जो मेहनत की हुई है, जैसे किसानों को की बात करें कि किसानों को आय कैसे मिलेगी, ज्यादा किसानों को ये नहीं मालूम है कि मैं अगर ये मोटा अनाज उगाता हूं तो मुझे बेचना किसको है, तो उस तरीके से फिर हम लोगों ने जिस उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, जैसे वर्चुअल बायसेलर मीट कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने FPOs उसको जो हमारे मिलेट्स वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स जिनको कि उस रॉ मटेरियल की जरूरत है उनके साथ हमने इंट्रैक्शन कराया है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एक सोर्सिंग भी पता चल पा रही है कि किस जगह से उनको एक पर्टिकुलर वेराइटी का मिलेट या जो मोटा अनाज है वो मिल सकेगा। इस तरीके की हम लोगों ने पहल की है और ताकि और साथ में फिर हमारे एक्सपोर्टर्स को हम ये समझाते हैं कि आपको अपने किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह की क्वालिटी का प्रोड्यूस हमें उनको उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए किस तरह का प्रोड्यूस है। तो ये एक जो टाइप होता है दोनों किसानों के बीच में और एक्सपोर्टर के बीच में, वो एपडा उसको करने की कोशिश करता है ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके और अल्टीमेटली जो किसान भाइयों को है उनकी जो उनकी पैदावार है उसका उचित मूल्य मिल सके।
2: जी बिल्कुल दयाकर जी, जैसे कि अभी निंदा जी ने बताया कि एक ये चेन पूरी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें काफी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं कि किसान और एक्सपोर्टर दोनों के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए किस तरह की चीजें चाहिए, किस तरह की गुणवत्ता चाहिए, ये बात एबुडा के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है और किसान उसी के अनुसार खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो उपलब्धता को बढ़ाने के साथ साथ जो एक मांग है उसको क्रिएट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो मोटे अनाज या पोषक अनाज है इनकी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है बाजार में और उसी के अनुसार उसकी मांग भी बनी रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है।
3: ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है मैडम। अभी जो ये जो फार्मर जो होता है किसान भाई, इससे पहले उगाता है कि अपने खाने के लिए, मगर अभी ऐसे अपने खाने के लिए छोटे छोटे लैंड होल्डिंग रहता है, एक एकड़ या हाफ एकड़ में इसको बोते थे, तो अभी हाफ हाफ एकड़ लोगों को एग्रीगेट करना है, बल्किंग करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब इसको कमर्शलाइज करना है और आगे ले चलते हुए अंतर एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे सामने एक अच्छा है, प्रधानमंत्री दी एक 10,000 FPOs क्रिएट करने का जो प्रयास कर रहा है, उससे काफी फायदा होने वाला है क्योंकि अभी अलग अलग फार्मर्स उसका बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब ये मिलकर आते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको ज्ञान भी इजी तरह से, जब ट्रेनिंग भी देना है अलग अलग फार्मर के वजह से FPO को दिए, तो वो ट्रेनर्स बन जाएंगे, वो अपने इंडिविजुअल किसान भाई लोगों को वो ज्ञान प्राप्त पास ऑन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी मेंटेनेंस राइट जो अभी फार्म लेवल करते हुए गए, तो जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस का क्या महत्वपूर्ण होगा, उससे उनका आमदनी कितने आय कैसे बढ़ेगा, ये सारे पहलू लेकर आगे चलने में बहुत ही हम इसका कुछ टाइम लगेगा जरूर, बट एक अच्छी दिशा में अभी चल रहा है क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कई राष्ट्रों में मिलेट फोकस होके जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कुछ FPOs बनाने के उसको मॉडल करने के लिए दिया है ताकि वैल्यू चेन बिल्डअप करे, ताकि एक्सपोर्ट मार्केट डोमेस्टिक मार्केट्स को इसको कनेक्ट करे, ब्रांडिंग लेबलिंग इसका ट्रेनिंग भी दे। तो अभी ये प्रयास में लगभग 7 राज्यों में हम शुरुआत किया है और इसको स्केल अप करने वाले हैं ताकि ये एपिडा के साथ भी जोड़ लिए ताकि इसको आगे ले जाता है, क्योंकि हम अगर कमर्शियलाइजेशन करने के बाद एक्सपोर्ट मार्केट कंटिन्यूस रहना है, अब कंटिन्यूस रहना कमर्शियलाइज करना, कभी क्रॉप फेल हुआ एक राज्य में तो हमारे लिए पूरा वो इन्फॉर्मेशन जारी रहना चाहिए, कौन सी राज्य है, दूसरा प्लान बी क्या हो सकता है, कहाँ से वो सोर्स करेंगे, कहाँ से स्टार्टअप कंपनी। इस बीच में स्टार्टअप लोगों को लाके लेके आया हमें मैडम, अभी लगभग 500 स्टार्टअप है मिलेट्स में, तो ये स्टार्टअप्स लोग एग्रीगेटेड प्रोसेस उनको फार्मर कनेक्ट देते हुए ताकि उनको आय बढ़े, तो अच्छा प्राइस करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हुए, तो मैडम जो बोल रही है वो दैट इज इवन ए बिगर प्लेटफॉर्म, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्ज करते हुए लेके जाना डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करें तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ जाएगा।
2: जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने घरेलू बाजार की बात की यहाँ पर डॉक्टर राव, तो मैं विनीता जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि मोटे अनाज और पोषक अनाज के विपणन को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
4: नहीं, मोटे अनाज के उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से ही बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे कि अभी आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमारा कहीं पर भी फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था, तो इस तहत एपेडा ने अपने इंडियन मिशन्स जो हमारे अलग अलग देशों में हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने तकरीबन 37 से 38 वर्चुअल बायोसेलर मीट्स किए, जहां पर कि हम जो ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे जो इम्पोर्टर्स हमारे इंडियन मिशन के साथ जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनको हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट कराया, एक दूसरे के साथ मीटिंग की, उन लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी रिक्वायरमेंट रखी, और जहां पर मिलेट्स को भी बहुत अच्छी एक सहायता मिली, हेल्प मिली कि मिलेट को भी कैसे इन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने एक पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर, जैसा कि आपने सुना होगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अलग अलग तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, तो वही हमारा जो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहा कोविड के दौरान कि हम लोग फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें मेले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेड फेयर हमने ऑन कमोडिटीज हम लोगों एपेडा ने किया, जिसमें कि हमारे मिलेट के एक्सपोर्टर्स ने भी काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उससे उन लोगों को काफी फायदा भी मिला, काफी ट्रेड लीड्स मिली, और उन लोगों ने अपना उन देशों में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया। दूसरा, जैसे कि अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं कि इंडिया से हम किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें नेपाल है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, लीबिया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम आंकड़े देखते हैं कि और जो कौन से देश हैं जहां पर हमें अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, जहां पर की पोटेंशियल है, जैसे कि मलेशिया है, जापान है, ईयू कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज हैं, तो यहां पर अब जो हमारी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम जिसकी बात कर रहे हैं 2023 वाली, उसके दौरान हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम डिफरेंट जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हमारे मेले हैं वहां पर हम मिलेट को प्रमोट करें, उनको वहां पर रोड शोज करें, वहां पर वर्चुअल बायोसेलर मीट करें, इसी के साथ नॉट ओनली वर्चुअल बायोसेलर मीट इन उन कंट्रीज में, बल्कि हम लोग रिवर्स बायोसेलर मीट भी यहां पर करना चाहते हैं, ताकि हम वहां के बाहर के देशों के बायर्स को यहां पर बुला पाएं और उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स की हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिलेट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमोट कर सकें।
2: जी बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाज या पोषक अनाज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, विनीता जी ने बहुत विस्तार से हमें बताया, और हमारे साथ डॉक्टर राव भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर राव से मैं समझने की कोशिश करूंगी कि जिस हम तकनीक की बात कर रहे हैं कि कई तरह की तकनीकों पर काम किया जा रहा है ताकि मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण किया जा सके और जो उसकी पोषक तत्व है मोटे अनाज की वो भी बरकरार रहे, उनके शेल्फ लाइफ भी बढ़े।
1: मोटे अनाज की खेती हमारा झाबुआ का किसान जो है सदियों से करते आ रहा है। मुख्यतः फसलों में हमारा जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुरी है, बाउटो है, इन सारी जो हमारे मोटे अनाज है इसकी खेती हमारा झाबुआ किसान है वो करता आ रहा है। लेकिन जो समय के अनुसार हमारा जो किसान ने अपना रुख मोड़ लिया था, अधिकतर मक्का और गेहूं ही मुख्यतः फसलें बनकर रह गई थी, लेकिन अगर अभी हम देखें तो हमारी जो सरकार है वो भी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो झाबुआ का किसान है उसके लिए यह बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। अभी उस अनाज को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं और इस मोटे अनाज में काफी पौष्टिकता है, तो इस अनाज की खेती करके हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और जानकारियों का यह सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम के साथ झाबुआ की आवाज पर।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेकिन अगर हम गांव की बात करें, किसानों की बात करें जो बहुत दूर सुदूर रहते हैं, जिनका शहरों से या डिजिटल वर्ल्ड से इतना ज्यादा रापता नहीं रहता है, तो क्या लगता है कि अभी उन तक उतनी पहुंच या उनको इस चीज को समझा पाना इतना आसान है, या फिर ये भी बहुत बड़ी चुनौती है जो कि रास्ते में आ रही है कि मोटे अनाज की खेती को प्रमोट किया जाए?
2: किसान भाई लोगों के लिए वो ये देखता है या कौन सी क्रॉप वो बोना है नहीं बोना है, ये उनका अपना जिससे ज्यादा आय मिलेगा, जैसे इनकम मिलेगा उसके उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं बोल रहा था कि पहले वो अपने खाने के लिए या अपने पशु के चारा के लिए उसको बोता था, मगर अभी विषय बढ़ गया है, ये कमर्शलाइज हो रहा है, इसका धीरे धीरे ये न्यूज उनके पास भी बढ़ रहा है। मगर जब तक किसान भाइयों का वो जो भी लाभ ये मिलेट्स के द्वारा या पोषक अनाज के द्वारा जा नहीं बढ़ती है, तब तक इसका एरिया नहीं बढ़ेंगे। मगर अभी हम देख रहे हैं कि काफी लगभग 60 साल इसका ग्रो करते हुए इसका क्या या एरिया घटती गई, मगर अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, तो इसका मतलब है थोड़ा नया न्यू एरिया सारे न्यू कल्टीवेशन एरियाज और इरिगेटेड एरिया में भी ये पोषक अनाज ग्रो करने लायक हो गया, ताकि कुछ इंटेंसिव कल्टीवेशन भी चल रहा, तो इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन का जो भी है और इसका डिमांड बढ़ने का बहुत ही बड़ी संभावना है, खास करके गवर्नमेंट पॉलिसी के दिशा जब इसको बढ़त दे रहे हैं, इसका प्रोक्योरमेंट करने के लिए देख रहे हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने के लिए देख रहे हैं, और इसके अलावा ये पब्लिक फंडेड प्रोग्राम जैसे ICDS मिड डे मील प्रोग्राम, इनमें भी पायलटिंग चालू हो गया है। ये सारे डिमांड का संभावना बढ़ने का दिखाई देता है, तो फार्मर को ये पूरे फार्मर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये पूरा वो वेट करते देखते जा रहा है। कई जगह जो अर्ली अडॉप्टर्स है वो एरिया बढ़ते जा रहे, देख के वो कर रहे हैं और एक्सपोर्ट मार्केट के भी देख रहे हैं, ताकि उनका जो भी फार्मर जब ग्रो करता है, सबसे मार्जिनल लैंड्स में मिलेट ग्रो करता था, मगर अभी मैं देख रहा हूँ मेरे अभी जा इधर उधर गए तो देख के तो वो ही वो जो भूमि जो लैंड एलोकेट करता है मिलेट्स के लिए, वो अच्छी लैंड पे एलोकेट कर रहा, ताकि उससे कुछ आमदनी भी बढ़े, उससे कुछ वो प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि आमदनी भी बढ़े। तो ये सारे चीज मुझे लगता है इसका प्राइस मिनिमम सपोर्ट भी है, और कई स्टेट्स है जैसे आप उड़ीसा हो, कर्नाटका हो
1: जी,
2: और कई राज्य हो, उनको प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी भी दे रहा ना, और प्रोक्योरमेंट भी चालू कर दिया
1: जी।
2: तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि इंसेंटिवाइजेशन हर जो मिलेट ग्रो करता है उसके लिए 10,000 तक कर्नाटका गवर्नमेंट दे रहा, 9,000 तक अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस किया है
1: जी, बिल्कुल। यानी एक तरह से प्रोत्साहन
2: पॉलिसी से भी बढ़ जाता है फार्मर का, इसका ज्ञान बढ़ता है और क्रॉप एरिया भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ता है
1: जी। यानी डॉक्टर राव, आपके कहने का मतलब है कि एक तरह से किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, ताकि वो इस तरह की फसलों को ले। विनीता जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगी कि चलिए ये तो बात हुई कि कैसे पैदावार इसकी बढ़े, रकबा कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बाजार भी बढ़े, बाजार किस तरीके से बढ़े, क्या इसको लेकर के भी किसी तरह की मदद ऐसे किसानों के लिए है जो मुख्य फसल के तौर पर, अब हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे किसान मुख्य फसल के तौर पर मोटे अनाज उगाएंगे, तो क्या उनको किसी तरह की मदद की कोशिश की जा रही है, और अगर है तो क्या है?
3: नहीं, किसानों के लिए जैसे अभी आपने बात करी कि हम किसानों को कैसे हम मदद कर सकते हैं कि ताकि उनका जो प्रोड्यूस है जो क्योंकि उनका रुझान भी अब उस तरफ आ गया है कि हमें इस तरह के उनको समझ आ चुकी है कि इसकी इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अहमियत जो है वो काफी बढ़ रही है, ना केवल भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। तो मैं साथ में बड़े ये मेरे को बड़ा हर्ष है ये बताने में कि जैसे जो बात मैंने अभी पहले बोली कि FPO के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, तो एफपीओ का इंटरेक्शन जो सिर्फ है वो एक्सपोर्टर्स तक ही सीमित नहीं रहा है, आज के दिन में हमारे कई एफपीओ खुद एक्सपोर्टर बन गए हैं।
1: जी जी।
3: तो ताकि क्योंकि उन्होंने इसमें एक पोटेंशियल देखा है और तभी वो एक्सपोर्टर बन के उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। तो इस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म्स हम मैंने बताया आपको, तो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के तहत उन लोगों को आगे लेके जाते हैं और जो भी हमारे को जरूरत होती है, अगर वहां के किसी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंटरवेंशन चाहिए या किसी वैल्यू प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, तो हम जैसा कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि हम लोगों ने आईएमआर के साथ एक एमओयू भी साइन किया है, सो दैट जो हमारी इसका सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का स्ट्रेंथन करने के लिए, और जितने भी हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके इन इश्यूज को टेकअप करने के लिए, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको एक तो ये एश्योरेंस मिल जाए कि वो जो प्रोड्यूस उगा रहे हैं अगर वो क्वालिटी प्रोड्यूस में मेहनत कर रहे हैं तो उनके उनके चीजों का उचित दाम मिल सके, और साथ में किस तरीके से कि सिर्फ एक एज ए प्रिंसिपल कमोडिटी ना बेचकर क्या हम उसमें कर सकते हैं, तो इस तरीके के जो
1: मैं अगर किसानों की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो आपने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इसके और एपिडा के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से किसानों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि वो अपने उपज को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो पूरा रास्ता है, जो एक जो चेन है वो किस तरीके से और व्यवस्थित की जाए, वो कैसे और सुगम बनाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि किसानों के सामने यही समस्या भी आती है कि उगा तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहां और कहां उन्हें अच्छे दाम मिले, किस जगह ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, तो इस पर भी काम किया जा रहा है।
4: न केवल मोटे अनाज की खेती पर, परंतु मोटे अनाज की खेती करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, साथ ही हमारा जो किसान है वो उपज तो कर लेता है लेकिन उसे निर्यात कहाँ करे, उस हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है, जो भी किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना चाहता है वह इस मोटे अनाज में अपना मोटे अनाज की खेती की तरफ अपना रुख कर सकता है। किसान साथियों, हम जानते हैं कि मोटे अनाज में काफ़ी पौष्टिकता होती है, यह हमारे जो पूर्वज कहते थे कि जो कोदो है उसमें अगर किसी भी जो बैल है अगर उसका पेट टूट जाए तो उसे 7 दिन के अंदर हम उसको खिलाकर उसे फिर से एकदम तंदुरुस्त बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना गया है कोदो को है जो है, तो बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को है। लेकिन जो अभी निर्यात की समस्या को देखते हुए हमारे किसान भाई जो है वो इसमें अपना रुख नहीं करते हैं, तो अभी यहाँ पर हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जो भी किसान भाई मोटे अनाज की तरफ अपना रुख करना चाहता है वह अपना रुख कर सकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटियापिल 90.8 FM के साथ छबा की आवाज़ पर।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आइए दोस्तों, एक और नए एपिसोड में एक और नए कलाकार के साथ, एक और नई गायिका के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हमारे साथ जो मेहमान हाजिर हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, वो हैं लीला नायर जी। बाकी मैं गुजारिश करूंगा लीला नायर जी से कि वो आपसे मुखातिब हों, अपने बारे में हमें बताएं वो कहाँ हैं, क्या करती हैं। लीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार समीर जी और हमारे सभी प्यारे श्रोता को। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे इस अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सुनहरा अवसर है ये, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ। मेरा नाम है लीला नायर और मैं चेंबूर में रहती हूँ, जो मुंबई शहर में है। इट इज वन ऑफ द सबर्ब्स इन मुंबई। तो जन्म तो मेरा चेन्नई का है, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। तो स्कूल, कॉलेज, जॉब सब कुछ मुंबई में ही है। मैंने एमकॉम किया है और उसके बाद ICW इंटर तक किया था मैंने। इतने में मेरा ग्रेजुएशन भी खत्म हुआ और मुझे नौकरी भी लग गई तुरंत। तो कोई भी गैप नहीं था मेरे कॉलेज खत्म होने और नौकरी मिलने में। मैं LIC में काम करती हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हमारे जो कॉरपोरेट ऑफिस है योगक्षेमा बिल्डिंग में, नरीमन पॉइंट में, मैं वहाँ काफी सालों से काम कर रही हूँ। तो बस यही मेरा परिचय है। और हालांकि गाना जो है ये मेरा सबसे बड़ा पैशन है। सो मेरा परिचय यही है
0: जी। बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना लीला जी मुंबई में हैं और वो क्या करती हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो गायिका हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और सुनते हैं ये प्यारा प्यारा सा गीत लीला जी की ही आवाज में।

0: बहुत ही सुंदर गायकी और बहुत ही सुंदर शुरुआत। लीला जी प्लीज मुझे बताइए, हमारे सुनने वालों को बताइए कि गाना गाने का शौक या संगीत का शौक आपको कब से हुआ?
1: तो मेरी माँ जो है वो कहती है कि मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी जब मैंने उनसे खुद कहा कि मुझे संगीत सीखना है। तो मतलब अराउंड 7 to 8 years ऑफ एज होंगी मैं तभी। तो मैंने खुद ही उनको कहा तो उनको समझ में आया कि मुझे इस चीज में रुचि है। तो उन्होंने ऑब्वियसली, हम लोग साउथ इंडियंस है तो हम लोग केरलाइट्स है, तो उन्होंने ये समझा कि कर्नाटक म्यूजिक में मुझे ज्वाइन कराना चाहिए। तो मैं कर्नाटक म्यूजिक क्लास जाना शुरू किया और मैंने एक 4-5 साल तो सीखा। बाद में एज यूजुअल जैसे सब बच्चे 10th में पहुंचते हैं तो बाकी सभी चीजें सेकेंडरी हो जाती है, तो मैंने भी वैसे ही किया। और मैंने तभी तो मैंने डिसकंटिन्यू किया, लेकिन बाद में बहुत सालों के बाद नौकरी और ये सब शुरू था, मतलब जस्ट सेटल हो गए और चल रहा था, तो मुझे लगा कि अभी मुझे दोबारा शुरुआत करना चाहिए। तो मैंने सुगम संगीत सीखना शुरू किया, मैंने 2-3 जन के साथ ट्रेनिंग की। तो मेरा ये अब तक का ऐसा रहा है कि मैंने कभी गाना सीखना नहीं छोड़ा, यानी फॉर्मल ट्रेनिंग जो हम कहते हैं वो मैंने कभी डिसकंटिन्यू नहीं किया। हालांकि ब्रेक हुआ बीच बीच में सालों का या महीनों का, पर मुझे हमेशा मन में ये था कि मुझे कंटिन्यू करना है। तो अलग अलग टीचर्स के साथ मैंने ट्रेनिंग की और अभी भी मैं ट्रेन कर रही हूँ, हिंदुस्तानी सीख रही हूँ, लाइट म्यूजिक सीख रही हूँ। तो मेरा ये जर्नी जो है बचपन में जो शुरू हुआ वो अभी भी चल रहा है और इसे मैं आखिरी सांस तक इस सीखने को कायम रखना चाहती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात। दोस्तों आपने सुना किस तरीके से लीला जी अपनी गायकी को लेकर सीरियस हैं और पैशनेट हैं। लीजिए मैं पेश करता हूं लीला जी की ही आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: लीला मैम, मुझे ये बताइए कि आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी, तो पहला स्टेज शो जो आपने किया उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको कैसा फील हुआ?
1: तो पहला स्टेज परफॉर्मेंस ऐसे मुझे सचमुच याद नहीं आ रहा है, बट जैसे मैंने कहा बचपन से मैं सीख रही हूं, तो तभी हम लोग सभी बच्चे ग्रुप परफॉर्मेंसेस करते थे। मेरा एक्चुअली जो परफॉर्मेंस जो शुरू हुआ ये LIC में आने के बाद हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ काफी ओकेजन्स होते हैं जहाँ हमको परफॉर्म करने मिलता है। हिंदी दिवस है, या फिर इंश्योरेंस वीक है, या फिर महाराष्ट्र मंडल के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं साल भर में। तो मेरी जो एक्चुअल शुरुआत स्टेज परफॉर्मेंस ये ऑफिस में ज्वाइन होने के बाद ही हुआ है, और उसके बाद फिर मैं कोई ग्रुप्स के साथ गाती हूँ, या फिर मेरा डिवोशनल सिंगिंग भी बहुत होता है, भजन सिंगिंग भी होता है। तो एज सच मुझे फर्स्ट परफॉर्मेंस याद नहीं है, बट जो भी मौका मुझे मिलता गया मैं उसको हमेशा उसका मैंने अच्छा उपयोग किया और मैं आगे बढ़ती गई, और अभी भी मैं जैसे मुझे अवसर मिलता है मैं परफॉर्म करती हूँ।
0: अमेजिंग, बिल्कुल ठीक कहा मैम, आपने बिल्कुल सच बात बताई, बहुत सुंदर बात। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं आप ही की आवाज में गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही सुंदर गायकी। तो लीला मैम, प्लीज मुझे ये बताइए, आपको किस तरह का संगीत सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब गजल, भजन, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, बॉलीवुड, फोक, क्या?
1: तो म्यूजिक तो हर प्रकार का जो है वो बहुत प्रिय है मेरे लिए, लेकिन उसमें अगर मेरा प्रेफरेंस या फिर मेरा जो लाइकिंग है वो फिल्मी तो है ही, और लाइट म्यूजिक मैं ज्यादा पसंद करती हूँ क्लासिकल से भी। मुझे लगता है कि मेरा फोर्टे जो है वो लाइट म्यूजिक में है। ऑफ कोर्स मैं डिवोशनल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं डिवोशनल काफी गाती हूँ, भजन्स भी गाती हूँ, और गजल वगैरह जो भी है, मतलब लाइट के कैटेगरी में जो कुछ भी आता है मैं उस सबको एक्सपेरिमेंट करती हूँ, सीखती हूँ और गाने का प्रयास करती हूँ।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, लाइट म्यूजिक हम सभी को बहुत पसंद आता है और एक्चुअली हम उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यूं देखा जाए तो क्लासिकल म्यूजिक भी बिना उसको समझे भी बड़ा प्यारा लगता है। चलिए दोस्तों, ये लीजिए, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं लीला मैम की ही आवाज में।

0: लीला मैम, आगे बढ़ते हुए मुझे बताइए ना, कभी किसी गायक या गायिका के साथ आपको गाना गाने का मौका मिला है?
1: नहीं समीर जी, ये तो मुझे नहीं मिला है मौका। शायद आगे चल के मिले, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिला है मुझे।
0: चलिए, तो किस गायक या किस गायिका के साथ आप गाना चाहेंगे?
1: अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, ऑब्वियसली लता जी, जिनको हम सभी पूजते हैं। हर हर भारतीय जो है वो यही कहेगा कि लता जी और आशा जी, ये दोनों भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। और हम जो गाते हैं, मतलब गायक जो है हम लोगों के लिए, तो वो दोनों जैसे कहते हैं सरस्वती और, मतलब दोनों ही देवियां हैं। उसमें दोनों की खूबियां अलग है और दोनों की गायकी भी अलग है, लेकिन मैं दोनों को ही बहुत ही पैशनेटली फॉलो करती हूँ, करती हूँ, करती थी। लेकिन अभी जो नए सिंगर्स हैं उनको भी मैं काफी फॉलो करती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे गायक और गायिका हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, पसंद करती हूँ और सीखती भी हूँ उनका गाना सुन के। लेकिन लता जी और आशा जी फर्स्ट लव है
0: जी, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अभी हम सुनते हैं लीला जी की ही आवाज में उनका गीत।

0: बहुत सुंदर। लीला मैम मुझे बताइए ना, आपका म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट, आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा आपको पसंद है?
1: तो जब इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो मुझे एक मतलब ये बहुत कहना मैं जरूरी समझती हूँ कि गायक के साथ जो बजाने वाले जो म्यूजिशियंस हैं इनका इतना योगदान है हमारे गाने को अच्छा करने की या निखारने की। जो अकम्पनिस्ट जो है, जो गाना और गायक दोनों को समझ के जो बजाते हैं, इनका तो कमाल है। और ये गाने को बहुत ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो इसमें अभी वाद्य यंत्र तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस अगर पूछेंगे आप तो मुझे हारमोनियम, तबला और फ्लूट, ये तीनों वाद्य यंत्र से बहुत लगाव है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये गाने को बहुत एनहेंस करते हैं। और ये तीन यंत्र, एटलीस्ट ये तीन वाद्य यंत्र भी होंगे तो गाना बड़ा अच्छा सुनने को लगता है।
0: बड़ी प्यारी बात, बिल्कुल सही बात है। और ये तीनों जो वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी भी संगीत के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये धरातल
1: जी
0: हैं जिसके ऊपर म्यूजिक खड़ा होता है। बहुत बढ़िया। चलिए तो चलिए अगला गीत हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं आप ही की आवाज में।

0: लीला मैम, आपके हिसाब से जितना भी आपने संगीत को समझा है और आपने बताया पीछे कि आप सीखते रहे लगातार, तो किसी भी एक अच्छे गायिका की या गायक की सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से?
1: तो कोई भी गायक या गायिका को ये मन में सोचना चाहिए कि वो कोई भी गाना जो भी गाए, मतलब वो लाइट हो या फोक हो या गजल हो, उस गाने को समझ के उसे अपना बना के उसमें अपने आप को भी उसमें होके गाने से जो गाना सुनने में जो मजा आता है, फिर ये सबसे बड़ी पहचान है उस गायक या गायिका की, गाने को समझना और उसमें लीन हो जाना। और फिर जो गाने में जो जो एक फिनेस या फिर जो एक मेलोडी आती है वो श्रोता तक जरूर पहुंचती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: आपने
1: तो गाने को अपना बना लो और गाने में खो जाओ।
0: जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से पर्दे के ऊपर जो एक्टर्स होते हैं वो उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालते हैं, उसके जैसा ही बिहेव करने लगते हैं और तभी एक्टिंग अच्छी होकर सामने आती है। उसी तरीके से गायक भी गायिका भी जब गाने के अंदर अपने आप को डालते हैं, जैसा अभी अभी लीला मैम ने बताया, तभी वो गाना सजता है और बनता है। लीजिए इसी बात पर अगला गीत सुनते हैं लीला मैम की ही आवाज में।

0: लीला मैम, आपको किसी भी गीत में मुखड़ा ज्यादा पसंद आता है या अंतरा?
1: ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुखड़ा अंतरा दोनों ही बड़े प्यारे हैं, लेकिन जैसा द नेम सजेस्ट, मुखड़ा जो ये है, ये गाने का ही मुखड़ा, मतलब वो इट इज द फेस ऑफ द सॉन्ग। तो मुखड़ा मतलब मुखड़ा गुनगुनाने से पूरा गाना हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने, कानों में सब गूंजता है। तो मुखड़ा ज्यादा जरूरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। जैसे कहते हैं ना, लिफाफे को देखकर मजबून भाप लेते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा होगा। उसी तरीके से
1: बिल्कुल
0: लीला मैम ने कहा कि जब हम मुखड़ा सुनते हैं तो वो शुरुआत होती है गीत की, और मुखड़ा जो है गीत की गति को डिसाइड करता है, उसकी आत्मा को डिसाइड कर देता है। बड़ी प्यारी बात कही आपने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये गीत सुनते हैं लीला मैम की ही आवाज में।

0: लीला मैम, हमें अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बताइए, कौन है वो और वो आपके सबसे अच्छे दोस्त भला क्यों हैं?
1: तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अभी मैं जिन से सीख रही हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग, म्यूजिकल ट्रेनिंग जिनके साथ मैं कर रही हूँ, वो मेरे गुरु ही नहीं है लेकिन बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो इसीलिए एक एडवांटेज ऐसा है कि उस दोस्त से सीखने में जो एक कंफर्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो मेरा वीकनेस, मेरा स्ट्रेंथ सब कुछ जान के मुझे उस तरह से गाइड करता है। मेरे गुरु हैं मनोज गोविंदराज, वो भी चेंबूर में ही रहते हैं, वो भी केरलाइट है, लेकिन वो भी बड़े अच्छे मराठी बोल लेते हैं जैसे मैं बोल लेती हूँ। वो गाते भी हैं मराठी में और उनका म्यूजिक करियर के तौर पे वो परस्यू कर रहे हैं, तो उनका नॉलेज भी काफी है। तो फिलहाल मैं उनके साथ ट्रेन कर रही हूँ और उसका एडवांटेज ये है कि वो बहुत अच्छी तरह से फीडबैक देते हैं पॉजिटिवली और बड़े एनकरेजिंगली और सपोर्टिव है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब तक मैंने जितने लोगों से सीखा, मुझे अब बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छे और सच्चे दोस्त से सीख रही हूँ और उससे बड़ा मुझे फर्क पड़ा है और बहुत पॉजिटिव एक फीलिंग है, क्योंकि दोस्ती और गायकी दोनों एक साथ मिलने में जो मजा आता है वो मैं अभी महसूस कर रही हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये गीत हम लीला जी के ही गुरु और मित्र को डेडिकेट करते हैं।

0: लीला मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है आपका, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: मेरा जैसे मानना है कि मेरे लिए, मैं सोचती हूँ कि म्यूजिक इज लाइफ, और मुझे पता है कि बहुत लोगों के लिए भी यही एक स्ट्रेस बस्टर है। बहुत लोग इसको सीरियसली करियर के तौर पे भी परस्यू कर रहे हैं, या फिर शौकिया गाते हैं, या फिर जस्ट सुनने के लिए भी बहुत लोग है जो अच्छा सुनना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि हर किसी ने भी म्यूजिक को एंजॉय करना चाहिए, और उनको जो स्टाइल पसंद है वो सुनना चाहिए, और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज विदाउट म्यूजिक लाइफ इज अ बिग बिग वैक्यूम।
0: बिल्कुल ठीक कहा लीना मैम ने। दोस्तों इस मैसेज को, इस संदेश को हमें अपने दिल में उतारना चाहिए। लीला मैम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच समीर जी, और सभी श्रोता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन थैंक्स मेरे मुझे इस अवसर के लिए। थैंक यू वंस अगेन।
0: तो दोस्तों हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा, और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पवित्र, पायस, ब्यूटीफुल एपिसोड लेकर मैं आपका रेडियो दोस्त समीर हाजिर हैं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ है, आप उनकी बातचीत सुनेंगे दोस्तों, उनके गीतों का लुत्फ उठाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मैं वेलकम करूंगा मनस्वी का। बाकी मनस्वी अपने बारे में खुद बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना सा जरूर बताना चाहूंगा मैं दोस्तों कि मनस्वी एक बिल्कुल यंग लेडी है। शी इज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एंड वी सिंसियरली वेलकम मनस्वी इन अवर आज के कलाकार फैमिली एज द यंगेस्ट सिंगर, यंगेस्ट टैलेंट, यंगेस्ट प्रतिभा। तो मनस्वी, आपका स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। और सभी लोगों से बात कीजिए ना, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
1: जी सर, नमस्ते, मेरा नाम मनस्वी है और मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग और सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, स्पेशली 90s के गाने हिंदी में। और I am right now studying in 9th grade और मुझे श्रेया घोषाल जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: Okay. Oh God, oh so cute. I understand, Manasvi. You be very very comfortable with our family. हम लोग सब आज के कलाकार एक family हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि मनस्वी को श्रेया घोषाल के गीत बहुत पसंद है। एंड सरप्राइजिंगली बड़ी प्यारी सी बात कही उन्होंने कि उनको 90s के सॉन्ग्स पसंद है। तो मनस्वी, आपने बताया आप 9th में हैं और आपको 90s के सॉन्ग्स पसंद हैं, तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग है, कोई गाना है 90s का, जैसे आपने कहा ना, जो आपको बहुत बहुत पसंद हो, हमको उसके बारे में बताइए ना।
1: सर, मुझे लगता है कि वो फेवरेट गाना बदलता रहता है, क्योंकि कभी कभी मैं एक नया गाना सुनती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे और फिर
0: वो चेंज हो जाता है।
1: लेकिन हाँ,
0: सो क्यूट। ओके, फिर भी चलो ना यार, बताओ ना, दो तीन गाने जो चेंज हो गए होंगे। अच्छा चलो, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है फेवरेट, वो तो बता दो।
1: अभी
0: टेक योर टाइम, आराम से सोचो, बताओ ना।
1: जी सर, अभी थोड़ा और मॉडर्न गाना है ये,
0: चलेगा,
1: सुन साथिया, इसका नाम है सुन साथिया।
0: थोड़ा सा गुनगुना के बताओ ना यार।
1: जी सर, सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया।
0: वाओ, सो ऐसा होता होगा ना मनसी कि आप अपने आप से, जैसे ये वाला गाना अभी आपको आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो दिन भर इधर उधर कहीं आते जाते गुनगुनाते रहते होंगे इसको, है ना।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: या फिर शायद आपके फोन में आपने इसको डाल के रखा होगा, तो आप लगातार इसको सुनते रहते होंगे, करेक्ट।
1: जी सर,
0: ये कौन सी फिल्म का गाना है बेटा
1: ये? ABCD2 यानी
0: एनीबडी कैन डांस 2 मूवी का है। ओके ओके ओके, तो यार एनीबडी कैन डांस तो वही 90s की मूवीज है ना।
1: जी

0: 2000
1: के बाद की है क्या? चलो वाओ। तो दोस्तों आपने सुन भी लिया, मनस्वी ने गुनगुना के बताया भी कि कौन सा गीत अभी उनका फेवरेट चल रहा है। और जाहिर सी बात है गीत संगीत तो सभी अच्छे होते हैं और टाइम टू टाइम हमारे पसंद भी चेंज होती रहती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनस्वी के कुछ सॉन्ग्स फिक्स हो जाएंगे जो उनको हमेशा पसंद रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और ये गीत सुनते हैं मनस्वी जी की ही आवाज में जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए रिकॉर्ड किए। आई विल कम बैक।

0: ब्यूटिफुल सिंगिंग एंड ब्यूटिफुल स्टार्ट। तो चलिए मनस्वी आगे चलते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में और जानते हैं कि आपने सिंगिंग कब से शुरू की, पहले तो मुझको ये बताओ। और दूसरा, यूं तो आपने बता ही दिया कि श्रेया घोषाल आपके फेवरेट सिंगर हैं, करेक्ट? तो साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि 90s के गाने आपको पसंद है। तो चलिए बात यहां पर सिर्फ ये रह जाती है कि आपने सिंगिंग कब से शुरू की और किसने आपको मोटिवेट किया।
1: सर मैं बहुत सालों से मतलब क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हूँ, कर्नाटिक वोकल्स, कर्नाटिक म्यूजिक, उसे मैंने 4 साल सीखा है। और अभी मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ। और
0: टेक इट इजी, टेक योर टाइम, आराम से सोच के बोलो, कोई बात नहीं।
1: मैंने अपना जूनियर्स एग्जामिनेशन दिया है कर्नाटक में। और अभी मैं शंकर महादेवन एकेडमी में हिंदुस्तानी सीख रही हूँ सर।
0: ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। दोस्तों देखिए ना, इतना प्यार से वो अपने म्यूजिक को प्यार करती हैं, लव करती हैं, पैशनेट हैं कि वो अभी शंकर महादेवन एकेडमी से हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रही हैं। बाकी कर्नाटका म्यूजिक वो सीख चुकी हैं। ऑफ कोर्स अब सभी सोच के देखिए ना, अभी से मनस्वी इतना पैशनेट है अपने म्यूजिक को लेकर, लगातार लर्निंग, तो कहां तक वो जाएंगी। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट। ऑन ऑफ कोर्स अब तो हम मनस्वी से जुड़ गए हैं, पूरी फैमिली हमारी, ऑल 350 सिंगर्स आर देयर विद मनस्वी, और हम उसको देखेंगे कि वो कितना दूर तक जाती हैं। अमेजिंग मनस्वी, अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू सर।
0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मनस्वी के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद ले। और जब आपको ये पता चल चुका है कि मनस्वी कितना मेहनत कर रही हैं, तो आपको इन गीतों को सुनने में और भी मजा आएगा। सुनिए ना।

0: ब्यूटिफुल। मनस्वी चलिए अपने बारे में थोड़ा सा और बताते हुए मुझे ये बताइए, म्यूजिक के अलावा, एक्सेप्ट म्यूजिक, म्यूजिक को छोड़ दीजिए, म्यूजिक तो आपका फर्स्ट लव है, फर्स्ट पैशन है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। लेकिन म्यूजिक के अलावा आप किस चीज को लेकर पैशनेट हैं? मेरा कहने का मतलब है मे बी सम स्पोर्ट्स, मे बी ड्रामा एक्टिंग, मे बी बुक्स, मे बी राइटिंग, मे बी पोएट्री, मे बी पेंटिंग, आई डोंट नो, आप किस चीज को लेकर पैशनेट हो?
1: सर मैं बैडमिंटन काफी खेलती हूँ।
0: सो क्यूट, ओके।
1: और मतलब जब भी हो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूब।
1: और एक और पैशन है मेरी कि मैं गानों को विजल कर सकती हूँ, तो वो कॉमनली करती रहती हूँ।
0: Oh my God, that is yet another very hard skill. आप गानों को विसिल करने के लिए कितना ब्रेथ चाहिए होता है, कितना सांस आपको भर के रखना पड़ेगा तब आप विसिल कर पाएंगे, करेक्ट?
1: Yes, sir.
0: So it is not that easy. I understand. और जो आपने पहले कहा बैडमिंटन, तो मैं तेरे को सच बताऊ मनसी बेटा, मैं स्पोर्ट्स में कभी भी अच्छा नहीं था, मतलब कभी खेला ही नहीं एक्चुअली, बचपन से कभी नहीं खेला, लेकिन सारे के सारे स्पोर्ट्स में, आपकी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को सिर्फ बैडमिंटन ही अच्छा लगता है। आई मीन बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, नाम ले तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मे बी टेबल टेनिस, मे बी टेनिस, मैं क्रिकेट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे क्रिकेट अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन इन सब चीजों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद बैडमिंटन रहा। तो अभी आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या आप अपने स्कूल वगैरह में भी खेलते हैं?
1: जी सर, मतलब कोई कंपटीशन हो तो बिल्कुल खेलती हूँ, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी खेलती हूँ।
0: That's very nice. तो आपके जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके पास आसपास कोर्ट्स होंगे कोई, या तो सीमेंटेड कोर्ट होगा या वुडन कोर्ट होगा, कैसा कोर्ट है?
1: दोनों है सर,
0: वुडन कोर्ट भी है।
1: That's
0: very nice. क्योंकि एक्चुअली बैडमिंटन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ना वुडन कोर्ट पर ही आता है।
1: जी सर।
0: आपको मालूम है क्यों? क्योंकि लकड़ी के ऊपर खेलने से ना, लकड़ी से आपको पुश मिलता है जंप लेने के लिए या फौरन रिस्पॉन्ड करने के लिए, ज्यादा अच्छा पुश मिलता है और आपके नीज वगैरह को भी चोट नहीं लगती, इसलिए।
1: जी सर, मुझे पता नहीं था।
0: ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों चलिए, येट अनदर बैडमिंटन स्टार इज इन मेकिंग हमारी आज के कलाकार फैमिली में। I am so happy about that. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी तो मनस्वी के गीतों का मजा लें जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए, आइए सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मनस्वी, दैट वॉज सीरियसली अमेजिंग. ओके, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या शायद रिलेटिव्स, कोई कजिन, कोई यू नो अंकल आंटी चाचा जिनको बोलते हैं, या ताऊजी जिनको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं है, तो या फिर फ्रेंड्स होंगे जो आपकी सिंगिंग को मोटिवेट करते होंगे कि नहीं यार मनस्वी गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, इसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि ऑलरेडी आप कर्नाटक म्यूजिक सीख चुके हो, अब हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रहे हो. सो माई क्वेश्चन इज, कौन कौन लोग हैं वो जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं, मे बी योर मॉम डैड, कोई भी, उनका नाम लीजिए, क्योंकि अगले सॉन्ग्स हम उनको ही डेडिकेट करेंगे.
1: जी सर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरी मम्मी करती है.
0: आहा, ओके.
1: और पापा भी बहुत मोटिवेट करते हैं. और उनके अलावा स्कूल में मेरे दोस्त बहुत बार कहते रहते हैं कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, गाते रहो, तुम कोई गाना गाओ वैसे.
0: ऑलराइट, ओके. तो ये लोग हैं जो लगा, एक दो फ्रेंड्स के नाम लो ना यार, उनको भी अच्छा लगेगा अगर वो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा कि मनस्वी ने हमारा नाम लिया. मतलब आप सभी दोस्तों को प्यार करते होंगे, आप सभी दोस्त अच्छे होंगे आपके, फिर भी 2-4-5 जितने भी नाम आप लेना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम.
1: यस सर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम धन्विता है, वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे. और मेरी मतलब और बहुत फ्रेंड्स है, जैसे सानविका है उसका नाम, वो सबसे ज्यादा कहती रहती है कि तुम्हारा मतलब आवाज बहुत बहुत ही अच्छा है.
0: ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल. चलिए फिर दोस्तों, किस बात की देर, हम लोग ये गीत सुनते हैं जो मनस्वी के मम्मी पापा और उनकी ये दो बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं. ये लीजिए मनस्वी की फ्रेंड्स, ये गीत मनस्वी ने आपके लिए प्रिपेयर किया, सुनते हैं.

0: ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। चलिए मनस्वी जी, अब ये बताओ आपके म्यूजिक का पैशन और बैडमिंटन, चलिए ये दो चीजें तो हैं ही, आप अपने म्यूजिक के पैशन को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो? अभी तो देखिए आप 14 इयर्स के हो, लेट्स से एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 10 साल के बाद, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन म्यूजिक? व्हाट आर योर प्लान्स?
1: सर, मैं पहले साउंड इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ।
0: ओके।
1: और फिर आईड लाइक टू डू प्लेबैक सिंगिंग, मतलब कोई रियलिटी शो में जाकर उससे कोई स्टार्ट मिल सकता है मुझे। तो वैसे, और फिर मैं अपनी ही स्टूडियो को खोलकर मैं ही खुद गाना बना के से गाना चाहती हूँ सर।
0: ओके, तो इस चीज के लिए आपको, यू आर राइट, साउंड इंजीनियरिंग पहले आपको सीखनी होगी। द सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न द कंपोजिशंस, राइट?
1: यस सर।
0: तो वो ऑलरेडी आप कर्नाटक म्यूजिक कर चुके हैं और आप हिंदुस्तानी म्यूजिक कर रहे हैं, तो राग और जो भी क्लासिकल चीजें हैं वो आपको आ जाएंगी, सरगम आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी, तो आप कंपोज करना शुरू कर सकते हैं। मजेदार वाली बात यह है दोस्तों कि मनस्वी उस एरा में है जहां पर ऑडियो इंजीनियरिंग या कॉम्पोजिशंस करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एआई, कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल है। एनीबडी हूसोएवर इज पैशनेट एंड इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कैन डू इट एट होम। दो मनस्वी हमारे साथ है, मुझे लगता है बहुत जल्द, मे बी अ ईयर और टू, हमें मनस्वी के कंपोज किए हुए और गाए हुए गीत सुनने को मिलेंगे। सेकेंडली, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि वी हैव अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इन अवर फैमिली, कैजाद पटेल मुंबई में है, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं। ही कैन ऑलवेज ऑलवेज हेल्प मनस्वी इन लर्निंग। अब क्योंकि वो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हैं, इज अ सिंगर ऑल्सो, तो ही कैन वेरी वेल हेल्प मनस्वी इन क्रिएटिंग हिज हर ओन ड्रीम कमिंग इन टू रियलिटी। ब्यूटिफुल, ऑल द वेरी बेस्ट मनस्वी, हम इंतजार करेंगे आपके साथ, आपके इस सपने को बनते हुए देखेंगे। चलिए ना, तब तक ये गीत हम सुनते हैं आपके इन सपनों के नाम।

0: ब्यूटिफुल सिंगिंग अगेन। मनस्वी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने बोला बहुत कम, ज्यादा तो मैं ही बोलता रहा लेकिन बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। तो बस अब सारा आज के कलाकार की फैमिली मेंबर को आपके दिल में जो बात है ना, सच्ची सच्ची कह दीजिए।
1: थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए कि मेरे गाए हुए गाने ऐसे दूसरों को सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहती
0: हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, आप लगातार हमारे साथ टच में रहेंगे, हमारे ग्रुप में रहेंगे, और जितने भी गीत आप गाएंगे प्लीज हमारे साथ शेयर करते चलना, सो दैट वी कैन नो कि मनस्वी किस स्पीड से अपने विजन की तरफ बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच मनस्वी अबाउट फॉर योर टाइम, फॉर योर थॉट्स, फॉर योर पोलाइटनेस।